FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 7 जून वर्ष 2026, प्रातः की 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल

0: विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM सौदेशमलव 8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज के विचार का विषय है सुभाषित।
4: जीवन में सुभाषित अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुभाषित भारतवर्ष के समाज में सभी स्तर पर मनुष्यों के द्वारा अपने ढंग से उपयोग किए जाते हैं। सुभाषित अनादिकाल से साहित्य द्वारा, समाज द्वारा, काव्य द्वारा, नाटक, दर्शन, इतिहास, पुराण, धर्म आदि के द्वारा प्रयुक्त होते रहे हैं। कथ्य और तथ्य दोनों को सुंदर बनाने का काम सुभाषित ही करते हैं। पुराण, इतिहास और रामायण में जो सारभूत वचन है वे सभी सुभाषित हैं। सुभाषित में मानव हृदय को

0: नाटक, दर्शन, इतिहास, पुराण, धर्म आदि के द्वारा प्रयुक्त होते रहे हैं। कथ्य और तथ्य दोनों को सुंदर बनाने का काम सुभाषित ही करते हैं। पुराण, इतिहास और रामायण में जो सारभूत वचन है वे सभी सुभाषित हैं। सुभाषित में मानव हृदय को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति होती है। यदि सरस व्यक्ति का ध्यान किसी सुभाषित पर चला जाए तो उसके जीवन में सोचने का आधार ही बदल जाता है। जिन व्यक्तियों का हृदय रमणियों के सौंदर्य में लगा होता है, जो साहित्य रूपी समुद्र में तल्लीन नहीं होते, वे मेरे प्रयासों को उसी प्रकार नहीं समझ सकते जैसे नेत्रहीन व्यक्ति नर्तकी की भाव भंगिमा और सौंदर्य की प्रशंसा नहीं कर सकता। साहित्य में सुभाषित अन्योक्ति की असाधारण क्षमता से युक्त है। अपने इसी गुण के कारण सुभाषित विविध माध्यमों द्वारा मानव के उत्तम गुणों की शिक्षा देता है। यदि नीतपूर्ण बात अन्योक्ति द्वारा कही जाती है तो वो हृदय की गहराई तक पहुंचकर प्रभावित करती है। महर्षि भर्तृहरि ने कहा है कि उस स्वर्ण अथवा सुमेरु पर्वत से क्या लाभ, जबकि वहां स्थित वृक्ष वृक्ष ही बने रहते हैं, उनमें सोने अथवा चांदी जैसा कोई गुण नहीं आता। उस मलय चंदन पर्वत की प्रशंसा मैं करना चाहूंगा जिसके आश्रय में रहने वाले कंकोल, नीम और कुटज जैसे वृक्ष में चंदन के गुण आ जाते हैं। कुपित ब्रह्मा भी हंस के कमलवन में विहार करने के सौंदर्य को ही छीन सकते हैं, परंतु वह भी उसके दूध से जल अलग करने के गुण को नहीं छीन पाते। इसलिए मनुष्य को गुणवान बनना चाहिए, मनुष्य को सुभाषित होना चाहिए। गुणों को धारण करने के लिए केवल आवरण बदलकर गुणवानों की संगति में चले जाने पर दूसरे लोगों को भले आप पहचान न सके, किंतु कार्य समय पर तो स्वतः करना चाहिए। ऐसा करने से आपका कार्य समय पर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। कहते भी हैं कि तुल्य वर्ण छद कृष्ण कोकिलैः सह संगतः केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भासते। यदि कौआ अपने आप को कोयल के वर्ण के समान परिवर्तित करके कोयलों के समूह में सम्मिलित कर ले तो उसे कौन पहचान सकता है? जब तक वह स्वयं न बोले, बोलने पर उसकी स्थिति क्या होगी कल्पना मात्र से ही रोमांच हो जाता है। इसलिए अपने को, अपने बोल चाल को ध्यान में रखना चाहिए। सज्जनों की सभा में नीति और शिष्टाचार के दर्शन होते हैं। वानरों की सभा में वृक्षों की शाखाओं पर कोमल आसन होना, उनकी चीखों का सुभाषित होना, दांत और नाखूनों से नोचना खसोटना ही उनका अतिथि सत्कार होना सर्वथा उचित ही है। सुभाषित जीवन के सभी पहलुओं को उजागर करते हैं। मानव जीवन विविधताओं से परिपूर्ण होता है। उनमें सद्गुणों को स्थापित करने के लिए विद्वानों ने अपनी अन्योक्तिपूर्ण सुभाषितों में अनेक संदेश दिए हैं। वे कहते हैं, हे बादल, जिस सागर के जल कणों को प्राप्त करके तुम ऊंचाई तक पहुंच गए हो, उसी सागर के ऊपर गरजते हो, वह तुम जैसे मलिन वर्ण हृदय वालों के लिए उचित है। अर्थात दूसरों की कृपा से साधन संपन्न होकर उसी पर अहंकार पूर्ण गरजना सर्वथा अनुचित है। विद्वानों के कार्य करने का एक अपना अनूठा तरीका होता है। अपने से श्रेष्ठ के आने पर वे स्वतः ही स्थान रिक्त कर देते हैं। इसलिए सुभाषित का जीवन में हमेशा उपयोग करना चाहिए। जुगनू चंद्रमा की अनुपस्थिति में चंद्रमा सूर्य की अनुपस्थिति में प्रकाश का स्रोत बन जाता है। प्रकाश के स्वामी सूर्य के आते ही ये स्रोत स्थान रिक्त करके क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार विद्वान अपनी स्थिति का निर्धारण स्वयं कर लेते हैं।
1: सुभाषित विषय पर विचार बिंदु में अभी आपने सुने आज के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सर्वप्रथम प्रातः का पहला नमन गणपति के चरणों में, विघ्नहर्ता सुखकर्ता गणपति का आशीष हम सभी पर बना रहे। गणपति जी का सबके सिर पर हाथ हो, उनका सदा हमारा साथ हो। करो शुरुआत अपने दिन की गणपति के गुणगान से, फिर मंगल हम सबके काज हो।

विघ्नहर्ता गणपति के साथ हम सभी अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। सभी देवी देवताओं की कृपा से हमारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न होते हैं। सुबह सुबह शिव का नाम भी अत्यंत सुखदायी है।

हे प्रभु, आपका हर रूप अत्यंत मनमोहक है, आपका हर नाम सुखदाई है। आपके नाम के ढाई अक्षर में ही प्रेम का वास है, चाहे श्याम जपो चाहे जपो घनश्याम। हे कमल नयन, हे कृपा सरोवर, आपने संपूर्ण सृष्टि को प्रेम का संदेश दिया है। आपका सुमिरन सदैव ही हमें आनंद की अनुभूति कराता है। आपके अनंत प्रेम का ही फल है कि सर्वदा संसार कहता है, मिस्री भी फीकी लगी अब फीको गुड़ को स्वाद। श्याम से प्रीत हुई जब से और चखो प्रेम को स्वाद।

ईश्वर से जब भक्ति की लौ लग जाती है, तब संसार की किसी भी शय में वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती जो ईश्वर के सुमिरन में मिलती है। ईश्वर का सुमिरन हमें सदैव सन्मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए सदैव अपने हृदय से भक्ति भाव से प्रभु का सुमिरन करें और फिर देखिए ईश्वर किस प्रकार आपके कष्टों को दूर करेंगे।

कितनी सुंदर तेरी नैन ओ राधा प्यारी, इन नैनों में खो गई मेरी बांके बिहारी। राधे राधे जपने से हो जाएगा प्राणी तेरा उद्धार, क्योंकि यही वो नाम है जिससे है श्री कृष्ण को प्यार।

अनूप जलोटा, सुचित्रा बर्वे, ए हरिहरन, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और साथियों से अभी आपने सुने भक्ति वंदन। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है आज की बात। आज की बात के साथ हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 7 जून है। आइए जानते हैं क्या खास है आज की बात में, क्यों महत्वपूर्ण है आज का दिन। श्रोताओं, आज जयंती है जाने माने फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की। 7 जून वर्ष 1914 को पानीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। अहमद अब्बास उन गिने चुने लेखकों में से एक थे जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया। बॉम्बे क्रॉनिकल में ही लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे। इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबा चलने वाले स्तंभों में गिना जाता है। वर्ष 1941 से वर्ष 1986 तक ये स्तंभ चला। अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्य थे। पुरस्कार और उपाधि की अगर बात की जाए तो इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके अलावा गालिब पुरस्कार, फिल्म नीचा नगर के लिए अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म समारोह में पाल्मे डी और पुरस्कार, और इसके अलावा कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से इन्हें नवाजा जा चुका है। श्रोताओं, 1 जून वर्ष 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। श्रोताओं, आज जन्मदिन है जाने माने टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का। इनका वास्तविक नाम महेश श्रीनिवास भूपति है। 7 जून वर्ष 1974 को बेंगलुरु कर्नाटका में महेश भूपति का जन्म हुआ। ये एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस में लिएंडर पेस के साथ युगल मुकाबलों में शानदार सफलता अर्जित की। इनका पूरा नाम महेश श्रीनिवास है। भूपति को वर्ष 1996 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया तथा 26 मार्च 2001 को लिएंडर पेस के साथ भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है नृत्य गुरु नटराज रामकृष्ण की। 7 जून वर्ष 2011 को हैदराबाद में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म 21 मार्च वर्ष 1923 को इंडोनेशिया में हुआ था। नटराज रामकृष्ण भारत के एक बेहद ही कुशल नृत्य गुरु थे। वे आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे थे। वे एक विद्वान और संगीतज्ञ भी थे। रामकृष्ण नटराज ने आंध्र प्रदेश और दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें भी लिखी जिनमें से कई को अत्यधिक सम्मानित भी किया गया। नृत्य की कला में नटराज रामकृष्ण के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। नटराज रामकृष्ण को 700 साल पुराने नृत्य रूप पेरिनी शिव तांडवम को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुचिपुड़ी को पारंपरिक नृत्य रूप के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है गणित और कंप्यूटर के वैज्ञानिक एलन मैथिसन ट्यूरिंग की। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर के बहुप्रयोग की बात सोची होगी। 23 जून वर्ष 1912 को लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और 7 जून वर्ष 1954 को इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में इनका देहावसान हुआ था। श्रोताओं, ट्यूरिंग ने लोगों को बताया कि कंप्यूटर अलग अलग प्रोग्रामों से चल सकता है। ट्यूरिंग ने वर्ष 1936 में ट्यूरिंग यंत्र का विचार प्रस्तुत किया। ये डिजिटल कंप्यूटर पर काम करने वाले सर्वप्रथम लोगों में से थे। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की बात जिसे आप सुन रहे थे रेखा सिलोरी से। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा के आज के अंक के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का इस प्रोग्राम में बेहद स्वागत, और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, विविधा के आज के अंक में हम आपसे बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी तक का सफर विषय पर। श्रोताओं, रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि ये देश की संस्कृति, शिक्षा और जन जागरण का सशक्त माध्यम भी बना। रेडियो में प्रसारण की शुरुआत भारत में वर्ष 1927 में हुई, जब मुंबई और कोलकाता में निजी रेडियो क्लबों द्वारा प्रसारण आरंभ किया गया। बाद में वर्ष 1936 में बदलकर इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय रेडियो ने लोगों तक समाचार और जागरूकता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विकास का माध्यम बनाया। देश के दूर दराज क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने में रेडियो की भूमिका अतुलनीय रही है। श्रोताओं, आकाशवाणी शब्द संस्कृत से लिया गया, जिसका अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी। प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो भारतीय जनमानस में आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्रोताओं, आकाशवाणी ने संगीत, साहित्य, नाटक, समाचार, ग्रामीण कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया है। पुराने समय में लोग रेडियो के सामने बैठकर समाचार, क्रिकेट कमेंट्री, बिना का गीतमाला और विभिन्न नाट्य कार्यक्रमों का आनंद भी लिया करते थे। लेकिन समय के साथ तकनीक बदलती गई। टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को आधुनिक बनाया। आज एफएम चैनल, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से आकाशवाणी नई पीढ़ी तक अपनी पहुंच बना रही है। श्रोताओं, आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। ये माध्यम आज भी लोगों को जोड़ने, शिक्षित करने और जागरूक बनाने का कार्य कर रहा है। आज समय बदलने के साथ तकनीक बदली है, तो AIR केवल एक रेडियो सेवा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का प्रतीक बन चुका है। ये देश की विविध भाषाओं, परंपराओं और विचारों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। श्रोताओं, आकाशवाणी से AIR तक का सफर भारतीय प्रसारण इतिहास की प्रेरणादायक कहानी रहा है, जो हमें बताती है कि संचार का माध्यम समय के साथ बदल सकता है, लेकिन उसकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों तक पहुंचती रहेगी। श्रोताओं, हम जो भी आवाज सुनते हैं वो ध्वनि तरंगों के कारण ही संभव होती है। जब कोई व्यक्ति बोलता है, गाता है या कोई वस्तु कंपन करती है, तब हवा में तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसे ही ध्वनि तरंग कहा जाता है। ये तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती है और हम आवाज सुन पाते हैं, और बस यही कार्य कर रहा है ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी तक का सफर। तो श्रोताओं, ये था विविधा का आज का अंक। इस अंक के साथ मैं थी आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। श्रोताओं, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कृतवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुम् अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढ़तया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमंत्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रियसीमासु वित्तीयव्यवहारस्य भवननिर्माणस्य सम्पत्तिक्रयविक्रयणस्य च विषये विशेषसमवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः BSF इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरासीमामुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तरराज्यसीमाक्षेत्रविषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमंत्री विगत पंचवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंकसत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अंतिमां तिथिं जून मासस्य सप्तमदिनांकपर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनाङ्कः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन 6th एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ

0: और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विवरण हमारे केंद्र से हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा में विद्वान MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। हमारे ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड की प्रादेशिक समाचार। समाचारों के ये दोनों ही बुलेटिन हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ देर में प्रातः 7:10 पर

सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान पाठ। कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी हम आपको सुनवाएंगे। प्रातः 7:30 पर कलाकार होंगी कमला देवी। प्रातः 7:35 पर आज हम आपको सुनवाएंगे स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विशेष, खेत से थाली तक खाना न बन जाए स्वास्थ्य के लिए भारी विषय पर असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा डॉक्टर उमंग शर्मा से भेंटवार्ता भेंटकर्ता होंगे संजय जोशी। 8:30 पर बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, जिसमें आज की चर्चा का विषय रहेगा महासागर दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस और खेल खिलाड़ी अंक में हॉकी खिलाड़ी के बारे में आप जानेंगे। सबरंग प्रोग्राम का समय रहेगा प्रातः 10:05। शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 10:35 पर। फिल्म संगीत सैनिकों के लिए आप सुनेंगे प्रातः 11:00। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा प्रातः 11:30।

सब रंग प्रोग्राम का समय रहेगा प्रातः 10:05। शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 10:35 पर। फिल्म संगीत सैनिकों के लिए आप सुनेंगे प्रातः 11:00। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा प्रातः 11:30। फिल्म संगीत मेरी पसंद का समय रहेगा दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा अन्न का सम्मान सीखें और सिखाएं, साथ ही घर की रौनक बढ़ाते हस्त निर्मित उत्पाद विषय पर श्रीमती प्रियंका बुलाकोटी से हेमलता नयाल की बातचीत आप घर संसार कार्यक्रम में सुनेंगे। सुगम संगीत का समय रहेगा दोपहर 1:15। दोपहर 1:30 पर हम आपको सुनवाएंगे रूपक एक नई मुस्कान। उत्तराखंड के लोकगीतों का आनंद आप लेंगे दोपहर 2:00। दोपहर 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कृषि में सूक्ष्म जैविकी और उपयोगिता विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे पंकज कुमार मिश्रा। फिल्म संगीत एक ही फनकार का समय रहेगा दोपहर 2:45 पर। और अपराह्न 3:00 हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5:00। शाम 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें आज के कलाकार होंगे विमला बोरा और साथी। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा शाम 5:15, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा अन्न का करें सम्मान। उत्तरायण कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा आपसे होगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। और साथ ही इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पुराश। कुछ भक्ति रचनाएं भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे शाम 6:41 पर। कलाकार होंगे अनुपमा देशपांडे, शर्मा बंधु और साथी। प्रादेशिक संगीत का समय रहेगा शाम 7:00। शाम 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि में आज आप सुनेंगे कंपोस्ट निर्माण की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर अमित कुमार से जानकारी। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्री देवेंद्र सिंह कार्की। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत पुनः फिल्म संगीत आप सुनेंगे। सबरस कार्यक्रम आप सुनते हैं रात्रि 8:00। यदि रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ का 117वां भाग।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

श्री रामचरित मानस गान पाठ का 117वां भाग अभी आपने संवित स्वरों में सुना। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं अब प्रादेशिक समाचार। हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कवि समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त होगी। मूल तैनाती पर लौटेंगे शिक्षक कर्मचारी। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों पर उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बना

0: जाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भी अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कवि केवल शब्दों के सृजनकर्ता नहीं बल्कि समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। उनकी रचनाएं समाज को दिशा देने, जनचेतना जगाने और सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से साहित्य, संस्कृति और सृजन की भूमि रही है। उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल, गिरीश दिवारी गिरदा, शैलेश मटियानी, गौरा पंत शिवानी और मोहन उप्रेती जैसी साहित्यिक विभूतियों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध साहित्यिक परंपरा आज भी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार कुमार विश्वास, अशोक चक्रधर और हरिओम पवार सहित विभिन्न साहित्यकारों तथा कवियों को सम्मानित किया। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रही है। आज की कड़ी में बात करते हैं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना की। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड सहित देश के सीमावर्ती राज्यों के गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कर वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी जिले के सीमांत क्षेत्रों में योजना के तहत सड़क, पेयजल, विद्युत, संचार और पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजारों तक पहुंच आसान हुई है। वहीं मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार से स्थानीय लोग विभिन्न डिजिटल सेवाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के झाला गांव के ग्राम प्रधान अभिषेक रौतेला का कहना है कि वाइब्रेंट विलेज योजना के प्रभाव से सीमावर्ती गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिली है और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं।
1: वाइब्रेंट विलेज योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में जो बुनियादी विकास है उसको गति देना है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से सीमावर्ती गांवों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे कि सड़क, पानी, बिजली और पर्यटन से संबंधित जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका तेजी से विकास हो रहा है, जिससे कि सीमावर्ती गांवों से पलायन रुकने में मदद मिल रही है और लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो है ये वाइब्रेंट विलेज योजना है ये और अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों में शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को की सभी प्रकार की अटैचमेंट व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। साथ ही विभिन्न संस्थानों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की भी चरणबद्ध वापसी सुनिश्चित की जाएगी। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डॉ. रावत ने कहा कि दोनों विभागों में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थलों के बजाय अन्य महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इससे महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी शिक्षण संस्थानों में मानव संसाधनों का संतुलित और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके और संस्थानों की कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी बन सके। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में ACC विंग का 127वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैडेट्स ने अपने सैन्य जीवन के एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। समारोह में भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने कैडेट्स को स्नातक उपाधियां प्रदान की। इस दौरान कुल 73 कैडेट्स को डिग्री प्रदान की गई। इनमें विज्ञान संकाय के 32 और मानविकी संकाय के 41 कैडेट शामिल थे। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल विंग कैडेट कैप्टन नवीन को प्रदान किया गया। सिल्वर मेडल कंपनी कैडेट कैप्टन अवनीश कुमार मिश्रा और ब्रॉन्ज मेडल विंग कैडेट क्वार्टर मास्टर हर्षराज को दिया गया। जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंडर 18 एशिया कप 2026 में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों टीमों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बागेश्वर की औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने जन स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला चिकित्सालय के औषधि भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवाओं के भंडारण, संरक्षण और वितरण व्यवस्था की विस्तृत जांच की गई। औषधियों के सुरक्षित रखरखाव के लिए निर्धारित तापमान और आर्द्रता नियंत्रण व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। इसके अलावा उपलब्ध स्टॉक, बैच विवरण, निर्माण एवं समाप्ति तिथि, स्टॉक रजिस्टर तथा वितरण अभिलेखों की भी जांच की गई। उन्होंने बताया कि औषधि भंडार प्रभारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: नियमित रूप से जनपद बागेश्वर के औषधि वितरण इकाइयों में निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा जिला अस्पताल स्थित केंद्रीय औषधि भंडार का औचक निरीक्षण किया गया। स्टॉक रजिस्टर, ई औषधि पोर्टल एवं औषधियों के वितरण से संबंधित सभी अभिलेखों का हमने सत्यापन किया। इसके साथ साथ जो है हमने 10 औषधियों के सैंपल्स भी लिए हैं, जिन्हें हमारे द्वारा औषधि विश्लेषणशाला भेजा गया है।
0: और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण गैस के दामों में वृद्धि पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपये की बढ़ोतरी। एक अन्य शीर्षक में समाचार पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान में फिर जंग की ज्वाला भड़की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कवि समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त होगी। मूल तैनाती पर लौटेंगे शिक्षक कर्मचारी। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। लोकमंजरी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कमला देवी के स्वर में ये लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में

0: हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए?
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: इसी के साथ आज का कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विशेष खेत से थाली तक खाना ना बन जाए स्वास्थ्य के लिए भारी विषय पर असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा डॉक्टर उमंग शर्मा से भेंटवार्ता। भेंट करता है संजय जोशी।
4: खोज से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, ये विषय है हमारे आज के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का। हम सभी जानते हैं कि खेत से थाली तक यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता तक खाद्य सुरक्षा हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। और हम आपको बता दें कि करीब करीब 6 करोड़ लोग हर वर्ष किसी न किसी प्रकार दूषित भोजन खाने से बीमार होते हैं, यानी कि एक आंकड़े से देखा जाए तो करीब करीब 10 में से 1 व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाता है। बात करें तो करीब करीब 4,20,000 व्यक्ति हर वर्ष अकाल मृत्यु के ग्रास इस दूषित भोजन के कारण हो जाते हैं। तो क्या है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में खास, इस बातचीत के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर उमंग शर्मा जी को, जो कि एनेस्थेसिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
5: नमस्कार जी।
4: अब बात यहीं से शुरू करते हैं पहले कि दूषित भोजन को लेकर के हम देखते हैं कि खेतों में पैदावार होती है, कंज्यूमर अल्टीमेटली हम होते हैं, और किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं दूषित भोजन के शिकार होते चले जाते हैं। या हम बच्चों से शुरुआत करें, एक नन्हे मुन्ने बच्चे से शुरुआत होती है, पहला भोजन उसका अधिकार है मैं कहूँगा माँ का दूध, और माँ का दूध मिल जाता है तो प्योर ही कहेंगे, और जहाँ हम पाउडर मिल्क देते हैं कहीं ना कहीं दूषित भी हो जाता है, लोग अवॉइड करते हैं, क्या कहेंगे आप?
5: जो WHO का हमारा डाटा है वो भी यही कहता है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें बीमारियां 3 गुना ज़्यादा होती हैं बड़े लोगों से या 5 साल से बड़े बच्चों से दूषित भोजन की वजह से। तो हमारा जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे, उनको डायरियल डिजीज से लेके और भी उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिले, उनका सोशल डेवलपमेंट डिले, उनकी लिवर किडनी सब लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और कहीं ना कहीं कई बच्चे तो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। तो इसीलिए WHO हर साल 7 जून को जो यह दिवस मनाता है उसके तहत इस साल उसने अपना उद्देश्य रखा है कि जो हमारा फूड का बर्डन है उसके सॉल्यूशंस से लेके और एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग जो है उसको सेफ फूड मिले, एवरीवेयर हम अच्छा खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकें
4: जी, यानी कि हर किसी का राइट है एक सेफ फूड, सेफ वाटर और न्यूट्रिशियस फूड फॉर हेल्दी डाइट, ये तो चीज़ जरूरी है देखा जाए तो। आज हम जानते हैं कि समय के हिसाब से एडल्ट्रेटेड फूड की बात बहुत आ रही है, खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। खेत से हम शुरू करें तो हम खेतों में देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं अगर एक फूड चेन जो बनता है तो वो खेत से जो पेस्टिसाइड जाता है वो हमारे भोजन की थाली तक आता है।
5: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसका जो पैदावार है वहीं से उसमें एडल्ट्रेशन, मिलावट जो स्टार्ट होती है, क्योंकि अब जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी सॉइल फर्टाइल नहीं रही है, तो उसमें जो पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, जो मेटल्स मिले रहते हैं उनमें जो वो रहते हैं, वो हमारे हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, उसमें एंटर कर जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाके एक्यूमुलेट होते हैं। और ये सिर्फ खाली खाद्य पदार्थ, हैवी मेटल्स इससे सीमित नहीं है, इवन आजकल न्यूअर डाटा में माइक्रो प्लास्टिक का भी बहुत रोल है कि जो खाना हम वहाँ से पैदावार होकर प्लास्टिक्स में पैक होकर आ रहा है वो माइक्रो प्लास्टिक्स खाने में एंटर हो जाता है और वो हमारी बॉडी से इसको रिमूव करने का कोई टेक्निक भी नहीं बनी है, और ओवर टाइम हम इतना प्लास्टिक इकट्ठा कर लेते हैं अपने खाद्य पदार्थों में जो हमारे शरीर में कैंसर से लेके किडनी से लेके हमारे हृदय हर अंग को नुकसान पहुंचाता है
4: जी। तो मोटी बात हम यहीं से शुरू करते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ में कौन कौन सी मिलावटी चीज़ें आ सकती हैं।
5: सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये हमें जानना होगा कि जो मेटल्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक हैं उनमें हमारे 4 मेटल्स हमारे सबसे घातक होते हैं, वो होते हैं आर्सेनिक,

0: लेड, कैडमियम और मरकरी। अब ये मरकरी जो है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर ये खाद्य पदार्थ के थ्रू आपके अंदर एक्यूमुलेट होगा तो ये जो बच्चे की मेंटल ग्रोथ है, जो ब्रेन का विकास होना है, उसमें इंटेलेक्चुअल डिले कर देता है, उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। तो जो हमारा दिमाग का विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं रुक जाता है।
1: जी
0: ऐसे ही जो और अलग हमारे आर्सेनिक हैं, लेड हैं, ये सब हमारे हृदय को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमें बड़े होकर इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें, इवन क्रोनिक किडनी डिजीजेस भी होते हैं, जिससे हमारी किडनी फेलियर अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम जैसे आजकल काफ़ी ये चला हुआ है, ऑर्गेनिक फूड का दौर चला हुआ है, तो उसका कहने का मतलब यही है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो हमारी खाद्य श्रृंखला में एंटर हो, उनको मिनिमाइज कर सकें,
1: जी
0: और मिनिमाइज करने के अलावा जब वो पैकेजिंग हो तो उनकी सेफ पैकेजिंग हो, जो हमारे हाथ तक जब वो पहुंचे, हम जब उनको खाएं तो उसमें मिनिमम से मिनिमम हम मिलावटी का अवॉइड कर पाएं।
1: जी आपने एक खाद्य पदार्थ की बात की, हम तो क्योंकि पानी भी दूषित है। अब जैसे हम नीचे प्लेन्स में जाएंगे तो हैंडपम्प, अब तो पहाड़ में भी हैंडपम्प आ गए हैं, तो उस पर कई बार देखता है कि लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ऐसी स्टडीज भी रही हैं जहाँ पे कि पूरे गांव में ही एक तरह से लोग किसी न किसी भी कार से ग्रसित हो गए थे, तो पाया जाता, तो फिर कंटामिनेटेड वाटर जिसे हम कहते हैं दूषित पानी वो पाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप, जैसे अगर इंडिया की ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे तो कुछ कुछ रीजन्स में, जैसे आपने बताया कि एक तरह की बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे किसी जगह पर जो पानी आ रहा है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है
1: जी
0: तो उनके वो डेंटल कैरीज रहता है, किसी कहीं पर लेड की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर अलग तरह की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि किडनी स्टोन भी, एक जगह पे किडनी स्टोन हुआ, हमारे पित्ते का स्टोन हुआ, ये
1: जी
0: भी कहीं ना कहीं हमारे जो पानी में मिलावट जो हमें प्योर नहीं मिल पा रहा है उसकी वजह से ही हमको देखने को ज्यादा मिलती है।
1: जी देखिए, पानी तो एक बेसिक ज़रूरत है हम कहेंगे, और पानी के लिए देख आमतौर पर पानी, हम कहते हैं नदियों का पानी दूषित हो गया है, पहाड़ों में नौले होते हैं उसका पानी भी दूषित पाया गया, ऐसा क्या पोर्टेबल वाटर नहीं है ऐसी स्टडीज़ में पता चला है। अब बात आती है मिनरल वाटर की। आजकल बोतल बंद पानी मिलता है, लेकिन इधर लोगों का कहना है या साइंटिस्ट का खुद भी कहना है कि ज़्यादा बोतल बंद पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्लास्टिक जो है वो पानी में सम्मिलित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे मैं बोल रहा था कि हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे कि मेटल्स, आर्सेनिक, लेड,
1: जी
0: ये चीज़ों से हटके आजकल जो बड़ा इशू जो देखने को मिल रहा है वो माइक्रोप्लास्टिक्स का ही है। और ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ हमारे पानी से ही नहीं है, हम जो ये सी फूड खाते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है हम उसको, ये ख़त्म नहीं हो पाती है, ये कहीं ना कहीं पानी में ही, नदियों में रहती है, नदियों से समुंदर में जाती है, तो ये हमारी फूड चेन में ही एंटर कर जाती है।
1: जी
0: और जैसे आपने बोला कि पानी को हम जो मिनरल वाटर के नाम पे स्टोर करते हैं मोस्टली प्लास्टिक की बोतल्स में ही करते हैं, और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज हो रही है जिन बोतल्स में,
1: जी
0: वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और वो हमारी पानी के थ्रू हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लिवर फेलियर्स और किडनी के डिजीज देखने को मिलते हैं।
1: कांच की बोतलों में वापस हमको जाना पड़ेगा।
0: सही कहा आपने। कांच की बोतलों के अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ एक सोच होती है कि हम कॉपर में ही पानी रखेंगे,
1: जी
0: या
1: हाँ
0: लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि कॉपर की मात्रा भी अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में जाएगी तो वो भी हमारे लिवर को फेल करती है, काफ़ी बीमारियां करती है, तो इसके लिए हमें हमेशा जो भी हम कॉपर का बर्तन भी यूज़ कर रहे हैं तो अंदर से एटलीस्ट स्टेनलेस स्टील से कोटेड होना चाहिए,
1: अच्छा
0: तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। इसको बोलते हैं हम लीचिंग, जिस कंटेनर में हम अपना खाद्य पदार्थ, अपना पानी रखते हैं, वहां से जो मेटल्स होते हैं वो लीचिंग के थ्रू हमारे खाद्य पदार्थों में एंटर कर जाते हैं,
1: जी
0: तो इसलिए सबसे सेफेस्ट जो है, मतलब फूड स्टोरेज का तरीका जो हमारे पुराने लोग मानते थे मिट्टी के बर्तन, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, वो बेस्ट माना गया है अभी भी, स्टडीज हुई हैं जो जिनके
1: जी
0: अकॉर्डिंग। तो आप अगर दूसरे चीज़ों में भी स्टोर कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील को यूज़ कीजिए, अच्छी क्वालिटी की, जिसमें निकेल की मात्रा कम हो, क्योंकि निकेल भी लीचिंग के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करके हमको नुकसान पहुंचाता है। तो
1: जी
0: सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तन सबसे अच्छे हैं, फिर हम आएंगे तो हमारा स्टेनलेस स्टील, फिर बाकी अगर हम एल्यूमिनियम या कॉपर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो या तो ऑक्सीडाइज्ड ऐसी हो कि उसमें लीचिंग ना हो, या फिर उसमें स्टेनलेस स्टील की कोटिंग रहे, तो
1: जी
0: हम उसी में खाना बनाएं, उसी में पानी को स्टोर करें।
1: जी आदमी अपनी सुविधा के लिए नॉन स्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल करता है। अभी नॉन स्टिकिंग कुकवेयर है वो

0: वो भी पता चला कि कैंसरस हो जाता है।
1: जी हाँ बिल्कुल सही कहा, जैसे कि जब काफी चला था नॉन स्टिक में टेफ्लॉन कोटिंग जो हम देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक सिद्ध हुई है। इसीलिए आजकल जो बेस्ट नॉन स्टिक रहता है वो है सिरेमिक कोटिंग। सिरेमिक कोटिंग काफी सेफ मानी गई है जो नई स्टडीज आई हैं, लेकिन सिरेमिक कोटिंग क्या है कि काफी महंगा पड़ता है, तो सिरेमिक कोटिंग नॉन स्टिक जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है
0: जी,
1: है ना। तो हम एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि जो हम नॉन स्टिक और जो यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो हमारे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई है उसको फॉलो कर रही हो, हम उसको देख के ही खरीदें। उसके अलावा ना ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही बर्तन में स्क्रैचेस दरारें झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं बर्तन हमारे ओवर टाइम, तो उनको हम रिप्लेस जरूर करें। हम दिक्कत ही वो है कि हम उसको रिप्लेस नहीं करते, यूज करते रहते हैं करते रहते हैं, ओवर टाइम वो कार्सिनोजेनिक बनता रहता है। वो जब नया बर्तन लेते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक नहीं रहता है, लेकिन जब हम उसको ओवर हीट करते हैं दिन ब दिन रोज खाना बनाते जाते हैं तो उसकी परतें निकलती जाती है और जो उसका अंदर का मटेरियल है वो एक्सपोज होता है और वो खाने में मिलता है जो कार्सिनोजेनिक
0: कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हम कहते हैं कि यूं तो दूध एक कंप्लीट फूड है, बट इधर देखा गया है कि एक तो एडल्ट्रेटेड दूध जो कि यूरिया से बनाया जा रहा है नंबर एक बात, कभी कभी ऐसा होता है लोग अपनी गाय भैंसों को इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शन, जो हम हार्मोनल इंजेक्शन गाय को दे रहे हैं उसका दूध जो हम पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक खतरनाक होते जा रहा है समय के हिसाब से। और एडल्ट्रेटेड मिल्क की बात कहना क्या?
1: जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि दूध का जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी डिग्रेड हुआ है, ऊपर से जो हमारा दूध है वो काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स मिक्स होकर आजकल थैली वाला दूध हम यूज़ करने लगे हैं। हमें डायरेक्ट गाय से जैसे पहले हम लोग गाय का दूध सुबह लाया करते थे अपनी स्टील की बाल्टी में, वैसे नहीं आता है
0: जी।
1: ये प्लास्टिक्स में पैक होकर प्रिजर्वेटिव्स के साथ, और अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स लोग होते हैं वो उसमें इंजेक्शंस वगैरह लगवा कर उसको क्वांटिटी बढ़ाने का जो कोशिश करते हैं प्रयास करते हैं। तो हमें लेकिन हम जो भी दूध हमें मिल रहा है हम उसमें इतना जरूर कर सकते हैं कि हम उसको अच्छे से पास्चराइज करें, अच्छे से बॉईल करें
0: जी।
1: तो जितना अच्छे से हम बॉईल करके उसको यूज करेंगे तो हमें उसके अंदर जो पदार्थ या कीटाणु जो भी मिक्स हुए हैं ओवर टाइम उसकी हैंडलिंग में जब तक हम तक वो दूध पहुंचा है वो उसको मिनिमाइज करता है, और गर्म करने के बाद जैसे ही वो ठंडा हो जाए उसको जल्दी से जल्दी फ्रिज में रखें जिससे उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए, और जब दोबारा यूज करें तो जो हमारा फ्रिज रहता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, खत्म नहीं करता है। फिर दोबारा हीट करें यूज करने से पहले, उसको जितनी बार यूज करें दोबारा हीट करके उसी 70 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर ले जाके जो पास्चराइज हमारे बनाया हुआ है उसके ऊपर गर्म करके उबाल के फिर दोबारा यूज करें तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं जो उसके खतरे हैं
0: जी। तो अभी तक हम अपनी बातचीत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अधिकतर हमारा खाना किसी न किसी रूप में दूषित हम मिल रहा है, सब्जियां भी दूषित हैं उसके ऊपर केमिकल्स का छिड़काव होता है, ज़्यादा चमकीली सब्जी आती है, अब वो सब्जी या जो भी फूड हमारे थाली तक घर तक आ चुका है, अब उसको बनाना कुकिंग प्रोसेस इसके लिए हम कितनी सेफ्टी और क्या करें एक डॉक्टर के नाते आप बताएं।
1: इसमें मैं कहना चाहूँगा जो हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, तो उसने बेसिक से पॉइंट्स दिए हैं जिनको थ्रू आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि कीप क्लीन, कि आपके पास जो भी खाना आ रहा है उसको सबसे पहले आप एक्सपायरी डेट देख कर लाएं
0: जी।
1: उसके बाद उसमें अगर वो फटा हुआ है उसमें कुछ आपको लगता है कि कलर चेंज है एडल्ट्रेशन जैसा कुछ भी लगता है तो उसको यूज ना करें। फिर उसको जब भी आप बनाएं, आप बाहर से सब्जी लाते हैं कुछ भी लाते हैं, तो जितनी बार हो सकता है हाथ धोइए अपने
0: जी,
1: है ना, कीप क्लीन, जैसे फर्स्ट पहला पॉइंट दिया है उन्होंने। दूसरा उन्होंने दिया है कि सेपरेट रखना है हमको। ये हमारे घरों में बहुत ज्यादा दिक्कत है कि हम जो खाना लाते हैं जैसे हम घर में चिकन भी बनाते हैं सब्जियां भी बनाते हैं
0: जी,
1: तो WHO कहता है कि आप सबके लिए सेपरेट बर्तन रखिए, और आप जैसे कटिंग बोर्ड चॉपिंग बोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें वुडन बोर्ड्स का यूज कीजिए, प्लास्टिक बोर्ड्स का यूज ना कीजिए, तुरंत साफ कीजिए, और आप जो रॉ चिकन वगैरह लाते हैं और सब्जियां लाते हैं उन सब के लिए अलग अलग, जैसे हमारे पुराने लोग
0: जी हाँ हमारे बड़े बड़े कहते जो वेजिटेरियन होते हैं कहते हमारा बर्तन अलग है हाँ। आपका बर्तन अलग है बनाने से लेके खाने तक।
1: हाँ तो WHO भी यही कह रहा है हमारा जो स्टडीज है कि आप सेपरेट रखिए रॉ फूड को अलग बने हुए को अलग, इवन आप जब उनको स्टोर कर रहे हैं फ्रिज में तब भी उनको पूरा पैक कीजिए अच्छे से और अलग अलग रखिए,
0: अच्छा
1: मिक्स ना कीजिए जिससे उसकी जो उसमें बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने की जो क्षमता है वो कम से कम होती है, उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। उसके अलावा जब हम खाना पका रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुक थोरोली, कुक थोरोली मतलब उसको अच्छे से पकाना है। जैसे कि कई बार हम कच्चा जैसे बोलते हैं कि मीट पिंक नहीं दिखना चाहिए, कच्चा नहीं रह जाना चाहिए
0: जी,
1: है ना, सब्जियां जो है वो धोने के बाद बनाते टाइम उसको अच्छे से पक जानी चाहिए धीमी आंच पे, तो वो सब चीजें हमें

0: जो होती हैं वो हमारी फूड की क्वालिटी को बरकरार रखती हैं, तो हमें अच्छे से पकाना चाहिए। और जब पक जाए खाना तो उसको अच्छे टेम्परेचर पे मेंटेन भी रखना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह खाना बना लिया, शाम को खा रहे हैं और वो सुबह शाम तक बाहर ही रखा हुआ है। कभी भी खाना बनाने के बाद मैक्सिमम 4 घंटे बाद उसको फ्रिज में रखना है।
1: जी
0: 4 घंटे बाद उसमें बैक्टीरिया वायरस ग्रो होने की जो क्वांटिटी है बैक्टीरिया की, वो इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो खाने योग्य नहीं है, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है।
1: जी
0: तो उसको हम अच्छे से स्टोर करें। और जो हम खाना बनाने में पानी यूज़ कर रहे हैं, जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो साफ़ सुथरा यूज़ करें, बार बार हाथ धोएं, किचन को क्लीन रखें। किचन में अगर आपके जैसे कॉकरोचेज, मक्खी, मच्छर, ये सब जो है हमारे बहुत सारी बीमारियां लेके उसको दूषित करते हैं हमारे खाने को,
1: जी
0: उसका हम ध्यान रखें। तो बस ये चीज़ जो है, अगर हमने इतना भी ध्यान रख लिया तो हम काफ़ी बीमारियों से जो जानलेवा तक हो सकती है उनसे बच सकते हैं।
1: कुछ स्टडीज ऐसे भी आई है कि जैसे हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में आ गया है। अब जानवरों को भी उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगते हैं, उन्हीं जानवर को अगर हम मार के खाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो साइकिल एंटीबायोटिक जो है हमारी बॉडी में भी कहीं प्रवेश कर रहा है।
0: तो सही कहा आपने, बिल्कुल। इसके लिए तो एक बीच में स्टडी भी हुई थी, जैसे आपको अगर पता है तो हमारे यहाँ एक पारसी समुदाय रहता है,
1: जी
0: जो जो बॉडीज होती है उनको, वो इनका टेंपल रहता है उसकी छत पे छोड़ देते हैं, उनको गिद्ध खाते थे, वल्चर्स,
1: जी
0: है ना। तो इवन थोड़े टाइम बाद देखा गया कि वल्चर्स की डेथ हो रही है। तो फिर ये पाया गया कि कहीं ना कहीं जो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स हम बॉडी में खा रहे हैं, ऐसे हम जो जानवरों को दे रहे हैं, ये सिमिलर तरीका है,
1: जी बिल्कुल
0: वो एक फूड चेन में एंटर करता है, जो हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और हमारी हड्डियों को कमजोर करने की क्षमता, वो सब अगर होती है, हड्डियों को कमजोर कर देता है कहीं ना कहीं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको भी कम कर देता है
1: जी
0: और हमारे ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने जानवरों को हम कम से कम इंजेक्शंस, दवाइयाँ दें, जिससे कि वो हमारे फूड में एंटर ना हो और हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए।
1: जी अब इससे कुछ जुड़ी भ्रांति मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि क्या जो प्लांट बेस्ड फूड है, डाइट है हमारी, वो सेफ है मानी जाती है।
0: जी, डाइट प्लांट बेस्ड सेफ है, लेकिन जब तक आपके पास जो पानी उस प्लांट को ग्रो करने के लिए बनाया गया है, जो मिट्टी हमने उसमें यूज़ किया, उसकी क्वालिटी क्या है,
1: जी
0: ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी फूड तब तक ही सेफ है जब तक उसको जो एनवायरनमेंट ग्रो करने के लिए मिला है वो सेफ है।
1: जी
0: तो अगर हमारे तक पहुंचने तक, चाहे वो वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड हो, चाहे वो जानवरों वाला फूड हो, चिकन, मीट, जो भी है, अगर उसके ग्रोथ के टाइम हमने अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ यूज़ किया है, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किए हैं, इंजेक्शन जानवरों को नहीं लगवाए हैं, तो जो हमें दूध मिल रहा है, जो हमें चिकन मिल रहा है,
1: जी
0: जो हमें प्लांट बेस्ड मिल रहा है, वो सब हमको प्योर मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग हमें बेसिक लेवल से करनी होगी, जहाँ से वो फूड ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है।
1: जी अच्छा कभी कभी होता है खाने का कुछ रखते हैं और जमीन में गिर जाता है, तो ऐसा लोग कहते हैं कि अगर अरे 5 सेकंड के अंदर अगर उठा रहे तो फिर इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा।
0: जी, ये मतलब
1: ये
0: एक,
1: भ्रांति है,
0: हाँ, एक
1: आप
0: भ्रांति है
1: बताएं।
0: लोगों के अंदर, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप खाना बना रहे हो, बीच में सब्जी काटने लग गए तो आपको हाथ धोने हैं,
1: जी
0: तो सोचो कि अगर हम तो नीचे जमीन में टच भी नहीं किया है, हम बस सब्जियां धोने के बाद पका रहे हैं, फिर दूसरी सब्जी उठा रहे हैं, तब भी बीच में हाथ धोने की गाइडलाइंस बोलती हैं हमारी, तो इसका मतलब जो गिर गया वो तो फिर खाने योग्य बिल्कुल ही नहीं है।
1: जी तो बेसिकली देखा जाए तो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। हमारा ब्रेन तभी काम कर सकता है, हम हेल्दी तभी बन सकते हैं जब हम अच्छा रिच फूड लें। एक समस्या ये आती है कि आजकल मॉल के शेल्फ में रेडी टू कुक फूड्स होते हैं, अब उनका कितना इस्तेमाल हमें करना चाहिए, कितना डिटेल उनमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उनको पढ़ना चाहिए तब इस्तेमाल करना चाहिए।
0: जी, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपनी हेल्थ को सच में ही बड़ा मानते हैं और ध्यान देना चाहते हैं, तो जितने से ज़्यादा हो सकता है फ्रेश फूड का यूज़ कीजिए। क्योंकि जो फूड एक बार स्टोर हो गया, जैसे इवन आजकल तो लोग सब्जियां काटने के लिए भी कोल्ड सब सैलेड्स, कोल्ड सब कुछ आता है,
1: जी
0: उसका ही यूज़ करते हैं। रेडी टू कुक फूड में के नाम पर हम सब्जियां भी नहीं काट रहे हैं। तो ये एक बार सब्जी काट के अगर आप उसको स्टोर कर देते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, हफ्ते, 5 दिन, फिर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो खाने योग्य नहीं है। कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि
1: जी
0: बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है।

0: कि मेंटल, उनकी हेल्थ पे अगर हम उनको फ्रेश फूड दे रहे हैं, फ्रेश मिल्क दे रहे हैं, और खाना बनाने के बाद भी हम, जब मैं बोल रहा हूँ कि स्टोर करना है 4 घंटे बाद फ्रिज में, और स्टोर करने के बाद गर्म करना है, ऐसा नहीं करना है आज खाना बनाया कल खा रहे हैं, तो सोचो कि आप जो रेडी टू कुक फूड्स ले रहे हैं वो तो कितने घातक होंगे हमारे लिए। उनमें जो प्रिजर्वेटिव से हम हर प्रिजर्वेटिव का पता नहीं कर पाएंगे, हर प्रिजर्वेटिव पे स्टडी नहीं हुई है कि वो आगे जाके कितने कार्सिनोजेनिक हैं क्या
1: जी
0: नहीं है, तो जो चीज़ हमने स्टडी नहीं की है, जो एविडेंस बेस्ड नहीं है, उसको अवॉइड करने में ही आपका भला है।
1: जी चलते चलते बताएं कि फास्ट फूड का चलन है, और फास्ट फूड स्टॉल पे इतनी भीड़ रहती है जितनी मुझे लगता है कहीं नहीं दिखती है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है?
0: देखिए, फास्ट फूड आप लेते हैं, ठीक है, बच्चों का टेस्ट करता है, घर वाले होते हैं, कोई त्योहार है, हम जाते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, खरीदते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनी मेन डाइट को रिप्लेस कर देंगे,
1: जी
0: जो आप हेल्दी फ्रेश डाइट में बोल रहा हूँ कि जो हम घर का फ्रेश खाना खाते हैं, उसकी जगह हम फास्ट फूड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत जल्दी ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ यंग एज में स्टार्ट हो गया, इवन
1: जी
0: हार्ट अटैक भी काफ़ी यंग एज में आने लग गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी फूड हैबिट्स जो है, जो फ्रेश फूड से फास्ट फूड की तरफ जा रही हैं, उसकी वजह से ही है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जितना कम से कम हो सके फास्ट फूड का कंजप्शन करें और फ्रेश फूड को ज़्यादा तवज्जो दें, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और हमारे खासकर बच्चों को तो बिल्कुल ही ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को चलते चलते क्या कहेंगे?
0: मैं बस यही कहूँगा कि जो हमारा फूड है, न्यूट्रिशन है, वो हमारे हेल्थ का मेन पार्ट है, और हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है, तो आप अपने आसपास जो आप काम करते हैं वो अपने अपना 100% दे पाते हैं। तो सेफ फूड हैबिट्स को अगर आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप हर तरीके से, इकोनॉमिकली, फिजिकली, पर्सनली, इमोशनली, हर चीज़ में अच्छा कर पाएंगे, तो अपनी प्रोडक्टिविटी हर फील्ड में बढ़ा पाएंगे।
1: जी, और साथ ही साथ अगर हम हेल्दी रहेंगे तो अपने देश के लिए भी काम
0: बिल्कुल
1: कर
0: जी,
1: पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आपने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विशेष खेत से थाली तक खाना ना बन जाए स्वास्थ्य के लिए भारी, इस विषय पर असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा डॉक्टर उमंग शर्मा से संजय जोशी की बातचीत अभी आपने सुनी। इसी के साथ आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, कुछ क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

0: और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम

0: बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की

0: सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतविदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्ता की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति।

0: पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट, नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस, होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms, and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashvani.

0: century, while Rishabh Pant remained unbeaten with a brisk half century. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Saira. Newspapers have noticed a variety of stories today, including the flare-up in tensions in the West Asia conflict. Sunday Pioneer writes, PM reviews economic roadmap, adding India must continue its development agenda despite global challenges. While the Sunday Statesman headlines, PM reviews economic strategy amid West Asia uncertainty. Cockroach backers swarm Jantar Mantar as 100 Sikh Pradhan ouster over paper leak, writes the Sunday Tribune in its top headline. Telangana CM calls for federal balance to safeguard citizens, writes the Hindu. Wheeling rupee drags students abroad deeper into debt at home, writes the Economic Times. LPG price hiked by 29 rupees per 14.2 kg cylinder, writes Sunday Pioneer. US and Iran trade strikes near Strait of Hormuz as talks hit a wall, writes the Sunday Statesman. While another story headlines, UN Food Agency says millions are being pushed into hunger by Iran war. The Sunday Statesman, in its editorial titled Beyond Hormuz, writes the geopolitical shock created by the Iran conflict is forcing countries far beyond West Asia to confront an uncomfortable reality. Energy security can no longer be built around a single set of political assumptions. For India, the renewed importance of Venezuela is less a story about one oil supplier and more a reflection of a changing global energy map. And finally, Sunday Tribune confronts a grim reality. Silent killer on our plates. WHO links unsafe food to 1.5 million deaths worldwide. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. IATA says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record sixth time. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका।
3: जय हिंद बच्चों।
4: जय हिंद।
3: नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, लो आया है फिर एक नया रविवार, लेकर बच्चों की विविध सतरंगी प्रस्तुतियों की बहार। तो चलिए शुरू करें आज की बाल वाटिका, हम भी तुम भी और
5: ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम बम बम बम बम बम।
3: तो प्यारे बच्चों, आज की बाल वाटिका में मैं आपकी दीदी मेघा रावत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत सत्कार, और कीजिए स्वीकार मेरा स्नेह भरा नमस्कार। हाँ तो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम हर दिन जो भोजन करते हैं, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हमारी थाली में जो भी भोजन आता है, उसके पीछे किसानों, मजदूरों, परिवहन कर्मियों और कई अन्य लोगों का योगदान भी होता है, है ना प्यारे बच्चों? भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ये हमें ऊर्जा देता है, स्वस्थ रखता है और हमारे विकास में मदद करता है। यदि हमें अच्छा और पौष्टिक भोजन ना मिले तो हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, जिससे कि हम ठीक से पढ़ाई और खेल कूद भी नहीं कर पाएंगे, है ना? लेकिन बच्चों, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो वहीं दूसरी ओर हम लोग अन्न की बर्बादी भी करते हैं। जब भी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में या शादी ब्याह पार्टी इत्यादि में भोजन की बर्बादी होती है तो हम उसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे कि अनेक तरह की गंभीर बीमारियाँ तो होती ही हैं, साथ ही हम भोजन की बर्बादी भी करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम केवल उतना ही भोजन लें जितना हमें चाहिए तो भोजन की बर्बादी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, हम

समस्या को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं, है ना। जब भी हम भोजन करने बैठें, चाहे हम घर पर हो चाहे कहीं पार्टी में गए हो, याद रखें कि आपकी थाली में उतना ही भोजन होना चाहिए जितना आप खा सकते हैं, और जिससे कि अन्न की बर्बादी भी ना हो। और क्योंकि बच्चों, अन्न का हर एक दाना अनमोल होता है और इसे बचाना हम सभी का दायित्व तो भी बनता है। तभी तो बच्चों, भोजन के महत्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य है जन जन को सुरक्षित भोजन के महत्व को बताना और दूषित भोजन ग्रहण करने से होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना। और अगर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के इतिहास की बात की जाए तो बच्चों, साल 2017 जुलाई के महीने में खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन के 40वें सेशन में वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद 20 दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोहर लगाकर हर साल 7 जून को इसे मनाने की घोषणा की थी। प्यारे बच्चों, जंक फूड, दूषित भोजन करने से कई लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। ऐसे में लोगों को सही और सुरक्षित खानपान के प्रति जानकारी देने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाता है। प्यारे बच्चों, 7 जून यानी आज के दिन मनाए जाने वाला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस खाद्य जनित जोखिमों की रोकथाम, पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने जानी बहुत सी बातें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में, और अब बच्चों बारी है आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियां सुनने की। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस भक्ति वंदन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नन्नी सखियां।

तो प्यारे बच्चों, हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सदा खुश रहें और जीवन में नेकी के पथ पर चलने का प्रयास अवश्य करें। प्यारे बच्चों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सिर्फ एक जागरूकता दिवस ही नहीं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारियों की हमें याद भी दिलाता है।

0: के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए सुरक्षित भोजन से ही स्वस्थ जीवन संभव हो पाता है और स्वस्थ जीवन से ही एक मजबूत और उन्नत समाज का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, अन्न का हर दाना है कीमती, क्योंकि इसमें छुपी है परिश्रम, संघर्ष और मेहनत की कहानी। प्यारे बच्चों, विश्व खाद्य दिवस ये हमें याद दिलाते हैं कि भोजन केवल हमारी आवश्यकता ही नहीं बल्कि प्रकृति और मानव श्रम का अनमोल उपहार है और जिसका हमें सम्मान तो अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम भोजन का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये बात जानते हैं सारिका से।
1: भोजन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? भोजन हमारे जीवन का आधार है। यह हमें ऊर्जा, शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, इसलिए हमें भोजन का सदुपयोग करना चाहिए। भोजन हमेशा स्वच्छ, ताजा और पौष्टिक खाना चाहिए। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, ताकि भोजन की बर्बादी ना हो। भोजन को समय पर और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। संतुलित आहार में अनाज, दालें, फल, सब्जियां और दूध आदि शामिल होने चाहिए। बचा हुआ भोजन फेंकने के बजाय सुरक्षित रखकर बाद में उपयोग करना चाहिए या जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। इस प्रकार भोजन का सही उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अन्न की बर्बादी को रोक सकते हैं।
0: तो प्यारे बच्चों, इन्हें छोटी छोटी बातों को अपनाकर हम भोजन का सदुपयोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, है ना?

0: प्यारे बच्चों, ये तो हमने जानी भोजन के बारे में बहुत सी बातें। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस ग्रह में हम रहते हैं पृथ्वी, वहाँ का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसे कि हम महासागर कहते हैं, है ना। और ये महासागर हमारे जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये हमें स्वच्छ हवा, भोजन और वर्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही अनेक जीव जंतुओं का ये घर भी है। छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल मछली तक और सभी छोटे छोटे समुद्री पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु महासागर में ही रहते हैं। लेकिन बच्चों, आज प्रदूषण और प्लास्टिक के चलते महासागरों का अस्तित्व खतरे में आने लगा है। कई सारे समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, और बीमार हो जाने के कारण धीरे धीरे उनकी प्रजातियां भी खतरे में आने लगी है। तभी तो बच्चों, महासागरों के महत्व को देखते हुए ही प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। सन 1992 में रियो डी जेनेरिया में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद ये दिवस मनाया जाने लगा। प्यारे बच्चों, विश्व महासागर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व भर में जागरूकता फैलाना। प्यारे बच्चों, पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था, और इसके बाद प्रत्येक वर्ष हम 8 जून को विश्व भर में ये दिवस मनाते हैं। प्यारे बच्चों, जब महासागर सुरक्षित होंगे तभी तो जलीय जीव जंतु भी सुरक्षित रहेंगे, है ना। और अब बच्चों, इन्हीं महासागरों की क्या है पुकार, ये बात बता रही है अपनी कविता से नन्नी सोनल।
1: महासागर की पुकार। नीला नीला जल है मेरा, धरती का मैं हूँ गहना, लहरों की मीठी सरगम से सजता है हर एक कोना। मछली वेल और कछुए सारे रहते हैं मेरे आंगन में, जीवन का संदेश सुनाते खुशियाँ भरते हैं मन में। पर मत मुझ पे कचड़ा डालो, मुझको स्वच्छ बनाए रखना, प्लास्टिक से मुझको बचाकर मेरा सम्मान सदा करना। जल है जीवन, याद रहे यह, सबको यह समझना है, महासागर की रक्षा करके सुंदर कल को पाना है। आओ मिलकर शपथ ले,

0: प्रकृति का अम्मान बढ़ाएंगे, महासागर को स्वच्छ रखेंगे, हरा भरा जग बनाएंगे।
1: सच है बच्चों, जब महासागर स्वच्छ रहेंगे तभी तो जग को हम हरा भरा बना पाएंगे, है ना?

0: प्यारे बच्चों, हम सभी को अपना बचपन बेहद पसंद होता है ना। बचपन जीवन का सबसे सुंदर, निश्चिंत और आनंदमय समय होता है। ये वो समय होता है जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और नई नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, है ना। तो चलिए, इन्हीं भावों को अपनी कविता में लिए हमारे साथ हैं नन्ही प्रियांशी।
1: खिलौनों की दुनिया, सपनों का जहान, ना कोई फिक्र ना कोई गुमान। मिट्टी के घरौंदे, बारिश का गीत, हर पल में छिपी थी जादू की रीत। स्कूल का बस्ता, टेढ़ा सा टिफिन, दोस्तों के संग वो हंसी का दिन। कभी छुपन छुपाई, कभी पिट्ठू का खेल, हर शाम लगती थी जैसे कोई मेले में। ना चिंता कल की, ना डर किसी हार का, हर बात में मजा था, हर चीज में प्यार था। काश लौट आए वो दिन दोबारा, जहाँ दिल था सच्चा और मन था प्यारा।
0: सच है बच्चों, बचपन जिसमें हमें बेफिक्र होकर बस अपना बचपन जीना होता है ना। लेकिन बच्चों, वर्तमान समय में बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। अनेक बच्चों को तरह तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गरीब बच्चों का जीवन सबसे अधिक खतरे में आने लगा है। पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण ये नन्हे नन्हे मासूम छोटे बच्चे स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाल श्रम करने पर मजबूर हो जाते हैं। बाल श्रम तो मानवाधिकार का सुरक्षा का खुला उल्लंघन है। ये बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बच्चे आज के परिवेश में घरेलू मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उनका बचपन पूर्णतया प्रभावित हो रहा है। जिसके चलते प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। प्यारे बच्चों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है बाल श्रम की वैश्विक सीमा पर ध्यान केंद्रित करना और बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है। तो चलिए बच्चों, आज बाल श्रम क्या है इस विषय पर और विस्तार से जानते हैं अधिवक्ता दीपक कुमार से।
2: मनुष्य के जीवन में बचपन की अनगिनत यादें जुड़ी रहती है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो हर साल 12 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता पैदा करना है। बाल मजदूरी बच्चों से लिया जाने वाला कार्य है जो किसी भी क्षेत्र में उनके मालिकों द्वारा करवाया जाता है। यह एक दबावपूर्ण व्यवहार है। बचपन सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है जो माता पिता के प्यार और देखरेख में सभी को मिलना चाहिए। ये गैर कानूनी कृत्य बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर कर देता है। इसके कारण बच्चों के जीवन में कई सारी जरूरी चीजों की कमी हो जाती है, जैसे उचित शारीरिक एवं बौद्धिक विकास। सामाजिक और बौद्धिक रूप से बच्चों में हीनता की भावना का उत्पन्न होना और सबसे बड़ी बात है, बचपन का वह हसीन पल उनके जीवन से छिन जाता है। इसकी वजह से बच्चे बचपन के प्यारे लम्हों से दूर हो जाते हैं जो हर एक के जीवन का सबसे यादगार और खुशनुमा पल होता है। ये किसी

0: बच्चे के नियमित स्कूल जाने की क्षमता को बाधित करता है, जो इन्हें सामाजिक रूप से देश का खतरनाक और नुकसानदायक नागरिक बनाता है। बाल मजदूरी को पूरी तरह से रोकने के लिए अनेक नियम कानून बनाने के बावजूद भी ये गैर कानूनी कृत्य दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है तथा जो देश के विकास में बाधक बना हुआ है। बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने का, स्कूल जाने का, माता पिता के प्यार और परवरिश के एहसास करने का तथा प्रकृति की सौंदर्य का आनंद लेने का पूरा अधिकार है, जबकि केवल माता पिता की गलत समझ की वजह से बच्चों को बड़ों की तरह जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। माता पिता अपने बच्चों को परिवार के प्रति बचपन से ही जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि उनके बच्चों को प्यार और परवरिश की जरूरत होती है। उन्हें नियमित स्कूल जाने तथा अच्छी तरह से बड़ा होने के लिए दोस्तों के साथ खेलने की जरूरत है। वास्तव में हर माता पिता को ये समझना चाहिए कि देश के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें अपने बच्चों को हर तरह से स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। परिवार की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए तथा अपने बच्चों को उनका बचपन के प्यार और अच्छी परवरिश के साथ जीवन जीने देना चाहिए। पूरी दुनिया में बाल मजदूरी के लिए मुख्य कारण गरीबी, माता पिता और समाज की कम आय, बेरोजगारी, खराब जीवन शैली तथा समझ, सामाजिक न्याय और अप्रभावशाली कानून है जो देश के विकास को प्रत्यक्षतः प्रभावित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जागरूकता पैदा करने के लिए सन 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून 2019 तक पूरी दुनिया में लगभग 15.2 करोड़ बच्चे बाल श्रम के लिए मजबूर हैं। सामान्यतः बाल श्रम को ऐसे पेशे या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चे के लिए खतरनाक तथा नुकसानदायक हो, जो कार्य बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करता है या जिस कार्य में बच्चों को स्कूली शिक्षा और काम के दोहरे बोझ को संभालने की आवश्यकता होती है। इसमें वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित न्यूनतम कानूनी उम्र से पहले किसी व्यावसायिक कार्य में लगाया जाता है।
1: तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अधिवक्ता दीपक कुमार से बाल श्रम के बारे में कितना कुछ जाना, है ना?

0: और अब बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं, आज है जून माह का पहला रविवार, जिसमें कि हम लेकर आते हैं खेल खिलाड़ी अंक। तो चलिए आज खेल खिलाड़ी अंक में हॉकी खेल के बारे में जानते हैं हॉकी खिलाड़ी हेमंत सिंह से।
1: खेल मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यह न सिर्फ शरीर को शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रखता है। भारत विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न कल्चर का देश है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, पर हॉकी का स्थान सबसे ऊंचा है। हॉकी न सिर्फ भारत का राष्ट्रीय खेल बल्कि खेलों का राजा भी कहा जाता है। हॉकी एक टीम खेल है जिसमें स्पीड, स्टैमिना, डिसिप्लिन, सूझबूझ, समझदारी और सबसे जरूरी यूनिटी के बारे में जो हमें सिखाता है। हॉकी में एक समय में ग्राउंड में 22 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 2 गोलकीपर और 10

0: खिलाड़ी खेलते हैं, पर हॉकी की एक टीम में 18 प्लेयर्स एक टाइम पर मौजूद होते हैं। हॉकी का खेल केवल गोल करने के लिए नहीं खेला जाता, यह त्याग, समर्पण और टीम की भावना के का पाठ पढ़ाता है। मैदान में खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए नहीं और अपने देश के लिए खेलते हैं। इसलिए हम भारतीयों को हमेशा हॉकी के लिए एक खास जगह अपने दिल में बनानी चाहिए। आज जब क्रिकेट का दबदबा पूरी दुनिया में और भारत में सबसे ज्यादा बना हुआ है, तब भी हम हॉकी के सुनहरे इतिहास को याद करते हैं, क्योंकि एक समय था हॉकी ने पूरा दबदबा, जो कि आज भी कायम है, पूरी दुनिया में बनाया हुआ था। और ये जो शब्द है हॉकी, ये हॉकी एक शब्द हॉकेट, जिसका मतलब होता है चरवाहे की छड़ी, तो वहां से शुरुआत हुई थी, तो वहां से इसको हॉकी कहा गया। और हॉकी ज्यादातर हॉकी के मैचेस टर्फ मैदान में खेले जाते, क्योंकि पहले तो ये मैदानी घासी मैदान क्षेत्र में खेले जाते थे, पर अब ये टर्फ के मैदान में खेले जाते हैं। इसमें चार क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के, और इसमें कभी कभी बॉल की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलती है। और हॉकी के कई सारे इतिहास है जो हमें कहा गया है, पर अभी हम अपने भारत के इतिहास पर ध्यान देंगे, क्योंकि भारत का हॉकी से रिश्ता बहुत पुराना और गौरवशाली है। भारत ने हॉकी में विश्व स्तर पर कई ऊंचाइयां और कई ऊंचे और ऊंचाइयां छुएगा। शुरुआत में भारत हॉकी अंग्रेजों के साथ आई 1885 में कलकत्ता में पहला हॉकी का क्लब बना था। 1908 में बंगाल एसोसिएशन बनी। 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF की स्थापना हुई थी। इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कदम रखा। ओलंपिक में दबदबा बनाने के लिए भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक रहा, तो इसमें भारत का हॉकी का गोल्डन ईयर ऑफ हॉकी कहा जाता है, गोल्डन युग, जिसको इस दौरान भारत ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, इसलिए इसे विश्व रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है। 1928 में एम्स्टर्डम, 32 में लॉस एंजेलिस, 36 में बर्लिन, 48 में लंदन और 52 में हेलसिंकी। और इन सब में सबसे जरूरी मैच है 1932, जिसमें भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था, और उसके बाद 36 में 8-1 से। इस मैच में मेजर ध्यानचंद ने जादू दिखाया था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत की हॉकी का इतिहास मेजर ध्यानचंद के नाम से सबसे ऊपर जुड़ा हुआ है। उन्हें इंग्लिश में विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। यह उनकी स्टिक में चुंबक लगा था, क्योंकि बॉल स्टिक से चिपकी रहती थी। 1928 से 48 तक उन्होंने 400 से ज्यादा गोल किए, जो अभी तक एक इतिहास है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में उन्होंने 3 गोल किए। हिटलर ने उनका खेल देखे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने ध्यानचंद को जर्मन सेना में ऊंचा पद देने की पेशकश की थी। और उनका जन्मदिन होता है 19 अगस्त को, और उसी दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे।
1: तो प्यारे बच्चों, जाना ना आपने आज खेल खिलाड़ी अंक में हॉकी खेल के बारे में हेमंत सिंह से। तो बच्चों, आप भी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद अवश्य करें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और अब बच्चों, बारी है आपके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने की, है ना? तो चलिए आज विज्ञान की दुनिया से क्रम में जान लेते हैं मानव शरीर की हड्डियों के बारे में बहुत सी बातें। कृतिका सी,
2: मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जो हमारे पूरे शरीर के वजन का 12% हिस्सा होता है। हड्डियां मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बनी होती है, बोन मैट्रिक्स और सेल्स यानी की कोशिकाएं। मैट्रिक्स क्या है? कोशिकाओं के अलावा हमारी हड्डियों में जो भी पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 35% ऑस्टियोइड्स यानी कि अनमिनरलाइज्ड ऑर्गेनिक टिश्यूज और 65% खनिज तत्व पाए जाते हैं यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोइड्स मुख्य रूप से टाइप 1 कोलेजन के बने होते हैं और साथ ही साथ कुछ मात्रा में ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स और दूसरी तरह के कुछ प्रोटीन्स भी इसमें शामिल होते हैं। हड्डियों के मजबूत होने का कारण हड्डियों के मैट्रिक्स में पाया जाने वाला कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट है। पूरे शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम का 99% और पूरे शरीर में पाए जाने वाले फास्फोरस का 85% हिस्सा हमारी हड्डियों में हाइड्रोक्सीएपेटाइट के रूप में जमा होती है। एक वयस्क व्यक्ति जिनकी हड्डियां पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी है, मतलब जिनकी हड्डियों का ग्रोथ पूरा हो चुका है, उनमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है और साथ ही हड्डी को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: तो प्यारे बच्चों, आज हमने विज्ञान की दुनिया से क्रम में हड्डियों के बारे में कृतिका से कितना कुछ जाना, है ना? तो बच्चों, आप भी ज्ञान विज्ञान की बातें पढ़ते रहिए और दीदी के साथ साझा करते रहिए। प्यारे बच्चों, कहानियाँ, कथाएँ ये हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, है ना? तो चलिए आज सुनो कहानी क्रम में सुनते हैं ये कहानी, जिससे मिलती है सीख बड़ी सयानी।
3: मूर्ख बातूनी कछुए की कहानी। किसी तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस भी रहते थे, जिस कारण हंस और कछुए में दोस्ती हो गई थी। हंस दूर दूर तक उड़कर जाते और मुनियों ज्ञानियों की बातें सुनते और सारा ज्ञान कछुए को भी देते।

0: लेकिन कछुआ बहुत ही बोलता था। वह एक मिनट के लिए चुप नहीं रह पाता था। एक दिन हंसो ने सुना कि यहाँ अब सूखा पड़ने वाला है, तो यह बात तुरंत कछुए को भी बताई और कछुआ उनसे अपनी जान बचाने को बोला। हंस उसकी जान बचाने के लिए तैयार हो गए। फिर हंस एक लकड़ी की टहनी लेकर आया और बोला, दोनों किनारों से हम अपनी चोंच से पकड़ते हैं, तुम बीच में अपने दांतों से लकड़ी को पकड़ लेना, इस प्रकार उड़कर दूसरे दूर तालाब में चले जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बीच में कहीं भी नहीं बोलना है। कछुए ने हामी भर दी और हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में गाँव में यह नजारा बच्चों ने देखा तो वो चिल्लाने लगे कि देखो देखो कछुआ उड़ रहा है। कछुआ बच्चों की आवाज सुनकर चुप ना रह सका और बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया और जमीन पर गिर पड़ा, और जिससे उसकी मौत हो गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले वहाँ की परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, क्योंकि बिना किसी कारण के बार बार बोलना भी कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए अक्सर कहा भी जाता है, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी जहाँ जरूरत हो।
1: और अब बच्चों, वक्त हो चला है बालवाटिका कार्यक्रम से विदा लेने का। और भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो बालवाटिका कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, अपनी रचनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी balwatika1986@gmail.com। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9411001122। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका नन्नी पाती द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा। पिन कोड संख्या है 263601। और अब बच्चों, मैं आपकी दीदी मेघा रावत लेती हूँ आपसे विदा। अब बच्चों, मिलेंगे अगले रविवार एक नए अंक में आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियों के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,
2: जय हिंद।
3: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
4: हो क्या है आप लोगों?
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
6: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप

0: से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग के 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। भारत एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ न्यू चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन से आगे खेलेगी। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। साई सुदर्शन ने 81 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सरफी ने 2 और जियाउर रहमान ने 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला फ्लेवियो कोबोली से होगा। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल में एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिन्स्का को सीधे सेट में 6-3, 6-2 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9:05 हुए हैं। तीजे पेश है ईमेल, व्हाट्सएप और फरमाइशी खतों पर आधारित फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीत निर्झर।

आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम गीत नज़र लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत है और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। तेरे ही ख्वाबों में डूबा रहता है मेरा ये दिल, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहता है मेरा ये दिल। इस कदर तू बस गया है मेरी रग रग में कि बस तेरी ही बातें करता रहता है मेरा ये दिल। जी हाँ श्रोताओं, ऐसा ही होता है जब दो मोहब्बत भरे दिल किसी की उल्फत में डूबे हों, तब उनकी मोहब्बत हर किसी के लिए एक चलता फिरता अखबार बन जाती है जिसे हर कोई पढ़ता है। वो कहते हैं ना कि इश्क और मश्क छिपाए नहीं छिपते, बस कुछ यूं ही हो जाता है दो लोगों के बीच। मोहब्बत की उमंग तरंग से सराबोर हो जाते हैं दो मोहब्बत भरे दिल, कुछ इस शुरुआती गीत की तरह जिसे हमने लिया है हकीकत फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: सुनते हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम, जानकारी भरा कार्यक्रम,
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
3: भगत जी राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है, तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
4: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे, और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खोचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
3: सरपंच जी जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया, और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
4: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और

0: कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जनप्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
1: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
0: मेरा सहयोग दिए।
1: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
0: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग नुक्कड़ सभा जैसे हम लोग बोलते छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से। अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है। उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो होते हैं अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए अभी वाला बजोपुर से हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं नहाते धोते हैं उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी आया कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
1: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
0: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कुछ भी प्लास्टिक मुक्त है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये

0: कचरा प्रबंधन की जहां पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को। उसमें 11-12 धन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर, केड़ा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केड़ा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी,
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
1: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता।
0: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
1: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इसमें से उठता हूँ, बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर पे उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन अच्छा है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घर में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है।
0: यानी कि लगातार व्यस्त रहते हैं?
1: मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
0: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
1: जी सर।
0: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं ना, आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव पे बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
0: जी,
1: चाहे जिसे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी,

0: सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया, इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
0: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोताओं, इस विशेष कार्यक्रम से पहले गीत निझर प्रोग्राम में आपने सुना था हकीकत फिल्म का गीत। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत फायज अनवर का था, संगीत था दिलीप सेन समीर सेन का, और इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी श्रोताओं ने, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, करणवीर हाउस भटिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दीपिंदर, वीरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजोत ने। इस गीत की फरमाइश हमसे की थी वंदना नगर इंदौर से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा, विक्की, स्वाति, मालती, प्रयाग, गणेश, कार्तिक, संजना, ललिता और नारायण ने। इस गीत को सुनना चाहा था TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से सुपचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की थी फुटानी चौक नारायण स्ट्रीट से लल्लन मिश्रा, उदयकांत मिश्रा, अमन पराशर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित ने। यहीं से थे गुंजन पराशर, अमित, सुमित, छोटू और इनके ढेर सारे साथी। गीत निजर प्रोग्राम में अब हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश का गीत। इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल उत्तराखंड से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वानिया। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना। छत्तीसगढ़ से नागरकोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू और इनके परिवार के सभी लोग। अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज़ों में होटल फिल्म का ये नगमा। नगमा निगार है इंदी वर्मा, मौसीकार हैं उषा खन्ना।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
3: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
2: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit

0: your nearest Nexa showroom. TNC apply.
1: Nexa.
2: Work from home? High salary? Bas ek click mein. Arre wah!
3: Fancy!
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
6: अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से. प्रोग्राम है गीत नेचर. गीत नेचर प्रोग्राम में अब हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश का गीत. लाला बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड से बाबा फरहान, संजू सामिया, आफिया, मुमताज अमान, नीलोफर, शब्बो और शन्नो. तालुका उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं गंगाधर पोपलवाड़ और प्रियंका पोपलवाड़. कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर. पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश और दीपेश वर्मा. राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, जय और वीरू. अनारकली बाजार जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष गव्या, जयपाल यादव, सुच्चा पाठक, विनोद पुरी. अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं लैला मजनू फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में. नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, मौसिकार हैं मदन मोहन.

0: drive feels smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bands.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: गीत निज प्रोग्राम के अगले नगमे के मंतजर हमारे ये सभी श्रोता पटेल नगर मालौर पंजाब से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू जाजौरिया और गुड्डू। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। इसी नगमे को सुनना चाहा है मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान ने। खम्हरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं त्रिलोक बिष्ट, हिमांशु पांडे, नवीन गोस्वामी, जमन सिजवाली, दीपक जोशी, लक्षम नाथ, मोनिका, महेंद्र कुमार, कार्तिक गुंजन, भूमि रौतेला, वैभव कीर्ति, गर्विता, हर्षिता, सोनू ठाकुर रौतेला, नवीन रौतेला, धीरज, मयंक, हर्षित, लक्की और इनके परिवार के सभी लोग। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं येसुदास की आवाज़ में मान अभिमान फिल्म का ये खूबसूरत नगमा। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: के जी यसुदास के गाए इसी नगमे को सुनना चाहा था। ऊपरकोट मोहल्ला चौखनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने।
1: एक बुत से मोहब्बत करके
0: गीत निजी प्रोग्राम का अगला नगमा हम नजर कर रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की। तौफीक नगर आकोट महाराष्ट्र से हैं गुड्डन बानो, रुबीना, अंजुम, शहीन खान और इनके परिवार के सभी लोग। इस नगमे को सुनना चाहा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, चिना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बड़ौना। अदलापुरा गोगांव से हैं संजय बामनिया, माया, कान्हा और कृष्णा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया दुशानी, निमिता हुजा और इनके परिवार के सभी लोग। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक। अपने सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, इस गीत की धुन तैयार की है जतिन ललित ने।

डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा था देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, पूजा तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया ने। वन बगीरा राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश और अंजलि सारवा ने। इस गीत को सुनना चाहा था भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने।

सोनू निगम, अलका याग्निक और जसपिंदर नरूला से फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का ये नगमा भी आपने सुना। गीत निजे प्रोग्राम के अगले नगमे को हम शामिल कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अमर फिल्म से। नगमा निगार हैं इंदिवर, मौसीकार हैं कल्याण जी, आनंद जी इस नगमे के मुंतजिर हैं। बाटाबारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चामला, बानी चामला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दिनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी और वैदेही जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं जयवंती केवट, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, पप्पू और डब्बू, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो, छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, बनीता गंगराने, मोहम्मद हसनैन पवार। इसी गीत को सुनना चाहा था बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है राज बिराज नेपाल से श्याम कुमार हाकू, बाबू राजन हाकू, कल्पना राय हाकू, सुमनिमा हाकू, पिंकी खुशबू, श्रुति पूजा हाकू, सन्नी हाकू, पूर्णिमा, राधे श्याम खड़के और इनके ढेर सारे साथियों ने। अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में लीजिए पेश है अमर फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गीत नचे प्रोग्राम में लीजिए पेश है हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश का गीत। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातमा। रोहित दास चौक पंढरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज ऋषि और कृष्णा घोड़के। नवागढ़ कटई जिला बेमतेरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत शारदा, मयंक और जीत वर्मा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। इसी नगमे को सुनना चाहा है अस्तुपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबेर अंसारी ने। करगैना बरेली से हैं बेने सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह। अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं मैंने दिल तुझको दिया फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं फायज अनवर। इस नगमे को आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। मौसिकार हैं डब्बू मलिक। इस गीत को सुनना चाहा है पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजबी शेख, मोहम्मद फारूक शेख, मुनव्वर लल्ला, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम और इनके ढेर सारे साथियों ने।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए मैंने दिल तुझको दिया फिल्म के इसी नगमे के साथ आज की फरमाइशी फिल्मी नगमों के प्रोग्राम गीत निर्झर से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिरोड़ी को दीजिए इजाजत। कल चंद फरमाइशी फिल्मी नगमों के साथ आपसे फिर से इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: थोड़ा सा प्यार हुआ है।
0: गीत निर्झर भी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल

0: के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले दो ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालेंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रोग्राम सबरंग। सबरंग प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं मुमताज राशिद के कलाम के साथ। फनकार हैं ए हरिहरन।

0: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
0: दिस जून मेक एवरी ड्राइव फील स्मूदर एंड एवरी जर्नी स्पेशल।
1: प्रेजेंटिंग द बोल्ट बलेनो, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry! Offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
5: Sabrang program is what you are listening to from Akashwani's Almora Kendra. इस प्रोग्राम में लीजिए पेश है अहमद फराज का कलाम, गुलकार है गुलाम अली।

0: गुलाम अली से अभी आप सुन रहे थे अहमद फराज का कलाम।
1: Summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: Enjoy amazing benefits up to rupees 25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
0: सबरंग प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस प्रोग्राम में लीजिए पेश है सलीम कौसर का कलाम। फनकार हैं गुलाम अली।

गुलाम अली से सलीम कौसर का कलाम अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का सबरंग प्रोग्राम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 10:30 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने परिषद के सदस्यों के साथ वैश्विक उथल पुथल के दौर में जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के विभिन्न सुधारों पर विचार विमर्श किया। बैठक में सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन प्रस्तुत किया। इस दौरान भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा व्यापार सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कवि केवल शब्दों के सृजनकर्ता नहीं होते बल्कि समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। उनकी रचनाएं समाज को दिशा देने, जन चेतना जागृत करने तथा सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड सदियों से साहित्य, संस्कृति और सृजन की भूमि रही है। उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल, गिरीश तिवारी गिरदा, शैलेश मटियानी, गौरा पंथ शिवानी और मोहन उप्रेती जैसी साहित्यिक विभूतियों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की साहित्यिक परंपरा आज भी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे रही है। मुख्यमंत्री ने आयोजन में उपस्थित डॉ. कुमार विश्वास, पद्मश्री अशोक चक्रधर और डॉ. हरिओम पवार सहित विभिन्न साहित्यकारों और कवियों को सम्मानित भी किया। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कार्य में जुटे उत्तराखंड के प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर्स को मोबाइल डाटा रिचार्ज के लिए आयोग द्वारा ₹350 का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ के मोबाइल रिचार्ज भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है,

0: इस दौरान बीएलओ 8 जून से 7 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटेंगे। इस एक माह में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से प्राप्त भरे हुए गणना फॉर्म्स को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ को मोबाइल डाटा प्लान की कमी ना आए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएलओ को एक माह का मोबाइल रिचार्ज धनराशि देने का निर्णय लिया गया है। आगामी गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। देहरादून के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और संस्तुतियां ऑनलाइन आमंत्रित की हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं गृह मंत्रालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। नामांकन के साथ संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण, व्यक्तित्व व कृतित्व, उपलब्धियां, सेवाएं तथा अन्य आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत करनी होंगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद विभाग की ईमेल पर केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में भेजा जाना है। शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर आवेदन व संस्तुतियां 10 जून तक स्वीकार की जाएंगी। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सभी अटैचमेंट शीघ्र समाप्त किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न संस्थानों व विभागों में प्रतिनियुक्तियों पर गए कार्मिकों की भी वापसी कराई जाएगी। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि दोनों विभागों में बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थलों के बजाय अन्य विभागों में प्रतिनियुक्तियों पर कार्यरत हैं। इससे महाविद्यालयों व पॉलिटेक्निक संस्थाओं में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डॉ. रावत ने कहा कि विद्यालय शिक्षा विभाग की तर्ज पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भी अटैचमेंट व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वार्षिक स्थानांतरण से पहले सभी प्रकार की संबद्धताओं को समाप्त करते हुए संबंधित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उनके मूल तैनाती स्थलों पर भेजा जाए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 104.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

सभी श्रोताओं को रेखा सिलोरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का सुरबहार कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ और आज का ये सुरबहार होता है शास्त्रीय रागों पर आधारित चंद फिल्मी नगमों पर। श्रोताओं, प्रोग्राम का जो पहला नगमा है उसे हमने लिया है ज्वेल थीप फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने। श्रोताओं, संगीतकार सचिन देव बर्मन ने इस खूबसूरत गीत को राग पहाड़ी के सुरों से सजाया है। राग पहाड़ी मानो यूं लगता है जैसे कि दूर पहाड़ों से छन कर आती मधुर और शीतल धुन। राग पहाड़ी का प्रयोग हमेशा हल्के शास्त्रीय संगीत, भजन, लोकगीत, गजल और फिल्म संगीत में अधिक किया जाता है। इसकी धुन सुनने में अत्यंत सरल और मनमोहक लगती है, जो सुनने वाले की मन में शांति, प्रेम और प्रकृति के प्रति आकर्षण को उत्पन्न कर देती है। श्रोताओं, राग पहाड़ी बिलावल थाट से उत्पन्न एक खूबसूरत राग है जिसकी जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर है षड्ज, संवादी है पंचम। इसके आरोह में मध्यम और निषाद स्वर वर्जित हैं। इसका गायन समय है रात्रि। श्रोताओं, पहाड़ी का गायन समय रात्रि में होता है तो इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इसकी सरलता के कारण संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों को भी ये राग आसानी से समझ में आ जाता है। आइए सुनते हैं राग पहाड़ी पर केंद्रित ज्वेल थीप फिल्म का ये गीत।

0: June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
1: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
0: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: पार्टी चाहिए
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे
5: आइडिया यही करते हैं पार्टी
3: पिज्जा पार्टी ये चल अपना कार्ड और पिन दे
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें
3: बाय गर्ल्स कहां जा रही है सुना नहीं नो शेयरिंग
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: शास्त्रीय रागों पर आधारित सुरबहार कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से श्रोताओं इस प्रोग्राम में लीजिए अब पेश है राग मारू बिहाग पर आधारित सेहरा फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने श्रोताओं राग मारू बिहाग कल्याण ठाट से उत्पन्न एक मधुर राग है इसके आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 सुरों का प्रयोग होता है इस कारण इसकी जाति औड़व संपूर्ण है इसमें वादी रूप में पंचम को प्रयोग किया जाता है और संवादी रूप में षड्ज को इसकी कुछ बातें हम और जानेंगे उससे पहले आइए सुनते हैं मारू बिहाग राग पर आधारित संगीतकार रामलाल का निर्देशित सेहरा फिल्म का ये गीत

0: श्रुतम राग मारू बिहाग के सुरों से सजा सेहरा फिल्म का ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। मारू बिहाग के शास्त्रीय पक्ष को आगे और जानेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: Enjoy amazing benefits up to Rs 25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
0: श्रोताओं, राग मारू बिहाग का गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर है। इसके आरोह में ऋषभ और धैवत स्वर वर्जित हैं। इस राग की खासियत यह है कि इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। ये राग बिहाग और कल्याण अंग के मिश्रण से बना है। राग मारू बिहाग में छोटे ख्याल, बड़े ख्याल, तराना, सुगम संगीत गाए जाते हैं। इसके अलावा श्रोताओं, इसमें करुण रस और श्रृंगार रस भरपूर सुनने को मिलता है। आइए सुनते हैं महबूबा फिल्म का ये गीत, जिसे संगीतकार राहुल देव बर्मन ने राग मारू बिहाग के सुरों से सजाया है।

0: Bold June make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bands.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply. Thanks.
2: श्रोताओं, सुरबहार कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है राग यमन पर आधारित। इसके शास्त्रीय पक्ष को जान लेते हैं। ये कल्याण थाट से उत्पन्न एक मूलभूत राग है। श्रोताओं, यमन राग किसी भी विद्यार्थी के लिए एक मूलभूत राग इसलिए है क्योंकि जिसे संगीत सीखने के शुरुआती दौर में इस राग को सिखाया जाता है। इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। तीव्र मध्यम का प्रयोग इस राग में किया जाता है। वादी का अंधार संवादी निषाद है, रात्रि के प्रथम पहर में से गाते हैं और इसकी प्रकृति शांत भक्तिपूर्ण है। करुण रस से भरपूर राग यमन में पारसमणि फिल्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राग यमन के सुरों से सजाया है।

राग यमन के सुरों से सजे पारसमणि फिल्म के सिनखमे के साथ आज के शास्त्रीय संगीत के सुरबहार कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

सुरबहार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनी भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में दो बीघा जमीन से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सैनी भाइयों, कार्यक्रम के समापन में अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लीना चंद्रवलकर की आवाज़ों में मंचली फिल्म का गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी।

किशोर कुमार और लीना चंदावरकर के गाए मनचली फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: सैनिकों के लिए। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
3: Arey wah! पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
4: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
5: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।
6: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
7: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
6: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
7: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
6: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
7: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
0: Nexa. हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग देश। आपके साथ तबला संगत की है आनिंदू चटर्जी ने।

नमस्कार श्रोताओ, मेरी पसंद कार्यक्रम के साथ मैं हूं उर्मिला जोशी। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री अमृता राव पर। अपनी मासूम मुस्कान और सादगी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अमृता का जन्म 7 जून साल 1981 को मुंबई में हुआ। साल 2002 में फिल्म अब के बरस से उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें पहचान मिली साल 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क से। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी जोड़ी और रोमांस को दर्शकों ने खूब सराहा और अमृता को मिला फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड। और श्रोताओं, यही था उनके करियर का टर्निंग पॉइंट।

श्रुतो इश्क विश्क फिल्म के बाद साल 2004 में अमृता राव आईं फरहाख खान की फिल्म मैं हूं ना में। शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी और जायद खान के साथ इस फिल्म में अमृता ने एक अलग ही किरदार निभाया। उनका ये बिंदास अंदाज भी दर्शकों को लुभा गया। घुंघराले खुले बालों में उनकी खूबसूरती दर्शकों के दिल में बस गई और अपने करियर की शुरुआत में ही अमृता हिट फिल्मों का हिस्सा बन गईं। फिल्म मैं हूं ना बेहद सफल रही और अमृता राव पर फिल्माया ये जोशीला गीत हर युवा दिल में बिंदास गूंजने लगा।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। और श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री अमृता राव पर। श्रोताओं, साल 2006 में अमृता राव की वो फिल्म आई जिसने उन्हें हर दिल का चहेता बना दिया, सूरज बड़जात्या की फिल्म विवाह, जिसमें पूनम बनकर अमृता ने हर दिल को जीत लिया। सादगी, त्याग, प्रेम, समर्पण और भारतीय नारी की पहचान के रूप में अमृता इस फिल्म में ऐसी रच बस गई कि उनका नाम आते ही सबसे पहले यही फिल्म याद आती है। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बनी और एक बार फिर शाहिद कपूर के संग उनकी जोड़ी का जादू दर्शकों पर चल पड़ा।

श्रुतो, विवाह फिल्म के बाद अमृता राव की अन्य फिल्में आईं प्यारे मोहन, मस्ती, हे बेबी, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, शौर्य, वेलकम टू सज्जनपुर, विक्ट्री, शॉर्टकट, लव यू मिस्टर कलाकार, जॉली एलएलबी और सत्याग्रह। इन फिल्मों में अमृता राव ने अलग अलग किरदार निभाकर खुद की पहचान को बनाए रखा। भोली भाली लड़की का किरदार हो या उनका बिंदास अंदाज या फिर उनकी कॉमेडी, अमृता ने अपने हर भूमिका के साथ न्याय किया। उनकी खासियत रही है उनका स्वाभाविक अभिनय और उनकी मासूमियत। जब भी ये दो अंदाज पर्दे पर आए, अमृता के चेहरे से नजरें हटी ही नहीं।

शुतुल साल 2016 में परिणय सूत्र में बंध जाने के बाद अमृता ने फिल्मों से दूरी बना ली और फिर वो कम ही फिल्मों में नजर आईं। हिंदी सिनेमा के अपने सुनहरे सफर से अमृता ने साबित किया

0: कि प्रतिभा और सादगी से दिल जीते जा सकते हैं। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत कर जिस तरह उन्होंने हिंदी सिनेमा में खुद को स्थापित किया वो काफी सराहनीय रहा है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि उनके अभिनय का सफर यूं ही चलता रहे और वो पर्दे पर अपनी मासूमियत अपनी मुस्कान को यूं ही बिखेरती रहें।
1: मैं तेरी गली से गुजरूं तू छत पे कपड़े सुखाए, मैं सच्ची मैं तुझको ताड़ू तू नकली सा शर्माए। मैं तेरी गली से गुजरूं तू छत पे कपड़े सुखाए, मैं सच्ची मैं तुझको

श्रोतो, ये थी आज की मेरी पसंद, अपनी पसंद के चंद फिल्मी गीतों के साथ। कल इस कार्यक्रम में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी उर्मिला जोशी को दीजिए आज के मेरी पसंद कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

मेरी पसंद। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैनु आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी को आपकी रेडियो सखी हेमलता का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगी और इस समय हमारा कार्यक्रम घर संसार सुन रही होंगी। बहनों, आधे घंटे के इस खूबसूरत कार्यक्रम में आज हम करेंगे आपसे कुछ नए रोचक विषयों पर चर्चा और साथ ही करेंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ मधुर गीतों से। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों, हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और अच्छे स्वास्थ्य का आधार है सुरक्षित और पौष्टिक भोजन। यदि भोजन सुरक्षित नहीं है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खान पान की अच्छी आदतें अपनाना बहुत ही आवश्यक है। बहनों, प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और शुद्ध भोजन के प्रति जागरूक करना है। लोगों को प्रदूषित और अनसेफ फूड के उपयोग से हो रही बीमारियों से सावधान करना और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा सभी को सुरक्षित पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने पर जोर देना, भोजन की बर्बादी को रोकना, स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना भी इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। बहनों, खाद्य सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए कई बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे बहनों, रसोई घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन बनाने में इस्तेमाल करें, क्योंकि अधिकतर गंदगी खाद्य पदार्थों की सतह पर जमा होती है जो बीमारियों का कारण बन सकती है। बहनों, अगर आप पैक्ड फूड खरीदें तो इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि वो एक्सपायर ना हो और खरीदने के कितने दिनों बाद तक आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे ही बहनों, हमारी सेहत काफ़ी हद तक हमारे खान पान और व्यवस्थित जीवन शैली पर निर्भर करती है, इसलिए सही समय पर खाना खाएं, अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर आहार को शामिल करें, स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, मौसमी फल और सब्जियों को अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। इसके अलावा बहनों, खाना पकाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि खाना पूरी तरह से पक जाए, क्योंकि अधपका खाना खाने से बीमारी होने का खतरा रहता है। भोजन को हमेशा ढक कर रखें। हो सके तो बहनों, बाहर का खाना खाने से बचें और घर का बना ताज़ा खाना ही खाएं। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और अब बहनों, कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: चमक रहा है भाई,
2: नई नई लाइटें।
3: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
3: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
3: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
4: आज तो पार्टी चाहिए,
5: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनों, अन्न है तो जीवन है, अन्न के बिना जीवन जीना मुश्किल है। अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन का आधार।

आधार है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने, ऊर्जा प्रदान करने और जीवन को आगे बढ़ाने में अन्न की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए बहनों, अन्न का एक एक दाना अमूल्य है और उसका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। बहनों, आज हम भी आपसे चर्चा करेंगे अन्न का सम्मान सीखें और सिखाएं विषय पर। बहनों, जब भी हम अपनी थाली में भोजन देखते हैं, तब हम सभी को ये याद रखना होगा कि इस भोजन को हमारी थाली तक पहुंचाने में कई लोगों की कड़ी मेहनत होती है। किसान खेतों में तपती धूप, बारिश और सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात परिश्रम करते हैं। साथ ही कई मजदूर व्यापारी मिलकर अन्न को हमारे घर तक पहुंचाते हैं। इसलिए बहनों, अन्न का सम्मान करना उन सभी लोगों की मेहनत का सम्मान करना है। अन्न का सम्मान करके हम वास्तव में माता अन्नपूर्णा का सम्मान करने के साथ साथ उन लाखों किसानों के परिश्रम का सम्मान भी करते हैं। बहनों, हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना होगा कि अन्न की बर्बादी ना हो। इसके लिए बहनों, सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। अपने बच्चों को भोजन का महत्व समझाते हुए उनमें ये आदत डालनी होगी कि जितनी भूख हो उतना ही भोजन लेना चाहिए, थाली में भोजन ना छोड़ें। इसके अलावा बहनों, उतना ही खाना बनाएं जितनी ज़रूरत हो और बचे हुए खाने को सही तरह से सुरक्षित रखें, या अपने आसपास ज़रूरतमंद लोगों को भी आप बांट सकती हैं। बहनों, भोजन की सबसे अधिक बर्बादी विवाह, पार्टी या अन्य समारोह में होती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग शादी या पार्टियों में प्लेट में आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं। व्यंजनों की कई वैरायटी होने के कारण वो पूरा भोजन नहीं खा पाते और आधे से अधिक भोजन प्लेट पर ही छोड़ देते हैं। इस तरह बहुत अधिक मात्रा में भोजन की बर्बादी होती है। इसलिए बहनों, ये ज़रूरी है कि जब भी किसी समारोह में जाएं तो थाली में उतना ही भोजन परोसें जितना हमारे लिए पर्याप्त हो। बहनों, कई बार हम बहुत सारा सामान जैसे फल, सब्जियां, दालें एक साथ खरीद लेते हैं और समय पर उन्हें न बना पाने के कारण ये सब सामान खराब होने लगता है, जिससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है। इसलिए बहनों, एक सूची बनाकर थोड़ा थोड़ा करके सामान आप खरीद सकती हैं, जिससे अनावश्यक बर्बादी ना हो। इस तरह बहनों, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हम अन्न की बर्बादी होने से बचा सकते हैं। और बहनों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है गीत संगीत का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to Rs. 25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
0: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
4: स्वागत है बहनों, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम घर संसार में। बहनों, सुव्यवस्थित और सजा हुआ घर सभी को पसंद आता है। घर छोटा हो या बड़ा, सुव्यवस्थित ढंग से सजा हो तो वह मन को शांति देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बहनों, आज महिलाएं विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित उत्पाद बनाकर घर की सजावट तो कर ही रही हैं, साथ ही इन उत्पादों को रोजगार का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। तो बहनों, कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं घर की रौनक और आत्मनिर्भरता बढ़ाते हस्तनिर्मित उत्पाद विषय पर श्रीमती प्रियंका बुलाकोटी हल्द्वानी से की गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत। स्वागत है प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
5: धन्यवाद।
4: प्रियंका जी, आत्मनिर्भरता आज की आवश्यकता है। अगर महिला आत्मनिर्भर है तो वो अपने परिवार की स्थिति को मजबूत बनाने में एक स्तंभ का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम आपसे महिलाओं में बढ़ती आत्मनिर्भरता के बारे में बात करना चाहेंगे।
5: महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने के लिए केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि शिक्षा, कौशल, आत्मविश्वास और अवसरों का विकास भी जरूरी है। आत्मनिर्भर महिला अपने निर्णय स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में एक सम्मान प्राप्त कर सकती है।
4: प्रियंका जी, आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भरता के लिए आपके द्वारा कौन सा व्यवसाय किया जा रहा है।
5: हमारे संस्था

0: जो हमने नाम रखा है वो हमने यही सोच के रखा था कि हम किस तरीके से अपनी जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उसके लिए हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प आधारित व्यवसाय है उससे हम महिलाओं को कैसे जोड़ सकते हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला है ऐपनाद, जो कि आजकल काफी फेमस हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपनी पारंपरिक लोक कला के माध्यम से महिलाओं को कैसे रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो हमने उस दिशा में काम करने के लिए महिलाओं से अलग अलग विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित उत्पाद तैयार करवाते हैं।
1: जी मैम, तो मैम आपने जो रोजगार का साधन अपनाया है हैंडक्राफ्ट का, तो इसे बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया और कैसे आपने शुरुआत की?
0: मैं जब अपने MBA के बाद जॉब करने से बाहर गई तो मेरा जो भी काम था वहाँ पे मैं यही देखती थी कि देश और विदेश में हैंडीक्राफ्ट के लिए लोगों का कितना इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की इतनी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं पारंपरिक कला और कौशल में जो कि बहुत निपुण है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो उस रोजगार और पहचान से वंचित थी। तो इसीलिए क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ तो मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ अपना सहयोग करना चाहती थी, जिससे कि हमारा जो प्रदेश है हमारी जो कला है वो भी देश और विदेश में जानी जाए। इसी मिशन को मैंने ध्यान में रखते हुए ये महसूस किया कि जो हमारी पारंपरिक कला है उसको एक आधुनिक उत्पादों से जोड़ा जाए और हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनके लिए एक अच्छा स्रोत बन सके आत्मनिर्भरता के लिए। और इसमें हम लोगों ने महिलाओं को हस्त निर्मित उत्पाद तैयार करवाने की उनको ट्रेनिंग भी दी, जिसकी वजह से जो हमारे उत्पाद हैं वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और फेस्टिवल और ऑनलाइन बाजारों से धीरे धीरे जुड़ने लग गए और हमें वहाँ से ऑर्डर्स आने लग गए।
1: तो मैम हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि हस्तशिल्प से संबंधित क्या क्या सामान आपके द्वारा बनाए जाते हैं?
0: हमने पहले छोटे छोटे उत्पाद बनाना शुरू किया। जब हमारे उत्पाद मार्केट में आए तो लोगों ने उनको काफी प्रोत्साहित किया। हम गिफ्टिंग के उत्पाद बनाते थे, पूजा और त्योहारों में जैसे जुड़ी सजावटी सामान बनाते हैं, हस्त निर्मित होम डेकोर के आइटम्स हम लोग बनाते हैं, ऑर्गेनिक एवं पारंपरिक उपहार के अलग अलग बॉक्सेस हम लोग तैयार करते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे जैसे हाथ के दिए, थाल, फ्रेम, कोस्टर्स, बैग्स, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हमारे यहाँ ये सभी तरीके के उत्पाद बनाए जाते हैं जो कि पूरी तरह कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं। क्रोशिया आज के टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट हो गया है जो कि हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो इसी वजह से हमने अपनी महिलाओं को अलग अलग क्रोशिया के प्रोडक्ट बनाने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी हुई है। जैसे कि उसमें हमारा जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड आती है वो आती है कुशन कवर्स की, टेबल रनर की, हैंडमेड बैग और पर्सेस की। आप देखेंगे कि आजकल क्रोशिया से बने फूलों के बुके बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो हम फूल बनाते हैं। और कीचेन, मोबाइल पाउच, छोटे छोटे आइटम जो कि आजकल के बच्चे और युवा पीढ़ी भी पसंद करती हैं और उनको अपने लाइफ स्टाइल में यूज करना चाहती हैं। तो हमारी क्रोशिया से बहुत ही छोटे छोटे सजावटी खिलौने भी हम लोग बनाते हैं जो कि हमारे दिवाली पे और टीचर्स डे पे, चिल्ड्रंस डे पे काफी अच्छे निकलते हैं।
1: प्रियंका जी, क्या कुछ नया भी आपके द्वारा बनाया जा रहा है?
0: नए उत्पाद में हम लोग क्रोशिया के साथ साथ हमारी जो पारंपरिक कला है एपन आर्ट उसको मिला के उन दोनों का फ्यूजन करके हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम दोनों चीजों का एक समावेश करते हैं। क्रोशिया से उस उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाती है और हाथ के काम करने की वजह से वो एक बहुत ही सुंदर हस्त निर्मित प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो हम लोगों के वहाँ नया यही काम चल रहा है कि हम कैसे एपन आर्ट और क्रोशिया का फ्यूजन करके एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सके जो कि सभी को पसंद आए।
1: जी, तो मैम इसमें जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको किस तरह से बनाते हैं?
0: देखिए, क्रोशिया का जितना भी सामान होता है वो सारा हैंडमेड होता है, उसमें किसी भी मशीन या किसी अन्य उत्पाद की जरूरत नहीं होती। तो हम ये करते हैं कि जो क्रोशिया के लिए थ्रेड और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं, बल्क में उनको मंगाते हैं और फिर हम एक डिजाइन तैयार करते हैं कि हमें क्या डिजाइन तैयार करना है जो कि लोगों को पसंद आए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर होते हैं।

0: हैं पहले से ही, वो बोलते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो हम उनके हिसाब से वो ऑर्डर क्रिएट करते हैं। उसमें हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए, किस तरीके की स्टिचिंग उसमें करनी चाहिए, ताकि उसका जो पूरा स्वरूप है वो चेंज किया जा सके। तो इसमें जितना भी जो इसका क्रोशिया का प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा हैंडमेड होता है। आजकल क्रोशिया से बने कोस्टर्स की बहुत डिमांड है जो कि बाहर जाते हैं।
1: आपके द्वारा बनाए गए सामान का इस्तेमाल घर की सजावट में किस तरह से कर सकते हैं?
0: मैम, घर की सजावट के लिए हमने बहुत तरीके के कुशन कवर्स बनाए हुए हैं, बेडशीट्स, टेबल रनर्स, नैपकिन्स बनाए हुए हैं, और दीवारों को सजावट से भरने के लिए भी हमने बहुत बड़े बड़े वॉल डेकोर्स बनाए हुए हैं एपन और क्रोशिया के फ्यूजन से, जिसमें एक पारंपरिक छवि निखर के आती है। होम डेकोर से रिलेटेड हम लोग कोस्टर्स बनाते हैं जो कि आप डेली यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप उसको रख सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल में, किचन में। हमने फ्रिज के लिए मैग्नेट्स क्रोशिया के बनाए हुए हैं। आजकल लोगों का अधिकतर रुझान इस तरफ रहता है कि कैसे हम लोग प्राकृतिक चीजों का यूज कर सके, प्लास्टिक और जो भी अन्य सामान होता है उसमें लोगों की रुचि कम होती है और हस्त निर्मित उत्पाद पे ज्यादा होती है। तो हम छोटे छोटे जो डेकोरेटिव आइटम है, जो जैसे कि आपके फ्रिज मैग्नेट हो गए, फोटो फ्रेम हो गए, आजकल लोगों को कस्टमाइज और हैंडमेड आइटम्स ज्यादा पसंद आते हैं।
1: बहुत बढ़िया मैम। तो प्रियंका जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे संबंधित आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया और महिलाओं को प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था है?
0: सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मैं पहले खुद ऑनलाइन लेती हूँ, ट्रेनर से या इंस्टीट्यूट से जो उन चीजों को बनाने में निपुण होते हैं। जब मैं ये ट्रेनिंग ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी महिलाओं को जो उस काम को करने में रुचि रखती हैं, उनको फिर वो ट्रेनिंग के बारे में बताती हूँ और उनको अपने लेवल पे ट्रेनिंग देती हूँ। मैं महिलाओं का जो ग्रुप होता है, SHG ग्रुप होता है, उन सबकी मीटिंग करके उनको उस प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ।
1: प्रियंका जी, अभी आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं?
0: हमारे साथ अभी 40 महिलाओं का ग्रुप जुड़ा हुआ है।
1: प्रियंका जी, विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो आप बनाते हैं, तो इन सबकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं?
0: मार्केटिंग आजकल के दौर में एक सबसे बड़ा चैलेंज आप कह सकते हैं। तो हम अपनी महिलाओं को तभी सशक्त कर पाएंगे जब हम उनके बने हुए प्रोडक्ट को एक सही मार्केट दे पाए। हम लोग बड़ी बड़े शहरों में जाके एग्जीबिशंस करते हैं और कंपनीज के साथ हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि वो हमारे महिलाओं के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज करें। आजकल ई कॉमर्स का टाइम है, तो हमारा यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे उत्पाद हैं वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। उसके लिए हमारी खुद की वेबसाइट है, लोग वहां पे जाके भी हमारे उत्पाद खरीद सकते हैं।
1: तो मैम, रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको?
0: रिस्पॉन्स कई बार बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने वाला होता है और कई बार ऐसा फीडबैक होता है जिससे कि हमें और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आजकल हाथ से निर्मित प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है।
1: प्रियंका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी आप सामान बनाते हैं, तो इसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आप कहाँ से उपलब्ध कराते हैं?
0: जो भी प्रोडक्ट बनते हैं सबका रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से आता है। जैसे कि क्रोशिया में जो धागे लगते हैं, वो धागे हम लोग लुधियाना है, दिल्ली है, वहाँ से खरीदते हैं। लोकल अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाती है। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो बहुत कॉस्टली आता है। तो इसलिए हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रॉ मटेरियल एट प्रॉपर कॉस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए हम हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल जहाँ से वो बनता है हम वहीं से ही प्रोक्योर करते हैं, ताकि हमारे उत्पाद की जो भी कॉस्ट है वो एक नॉमिनल रेंज में रहे, बहुत हाई कॉस्ट ना चले।
1: जी, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, हमारी श्रोता बहने जो काम की व्यस्तता के बीच समय निकालकर अपना कुछ काम करना चाहें, तो आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगी?
0: मैं सभी श्रोता बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आजकल का दौर जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का दौर है। इससे आप लोगों को एक सम्मान और खुद के लिए निर्णय लेने के लिए साहस मिलता है। तो आत्मनिर्भर अगर महिला होगी तो वो अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख सकती है। महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, तो अगर महिला कुछ करना चाहती है तो उसके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बस महिलाओं को आगे आके अपना हुनर जान के उस काम को शुरू करने की देरी है।
1: प्रियंका जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे कार्यक्रम घर संसार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे घर की रौनक और आत्मनिर्भरता बढ़ाते हस्तनिर्मित उत्पाद विषय पर श्रीमती प्रियंका बुलाकोटी हल्द्वानी से की गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत। और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत गीत।

बहनों, इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। बहनों, जल्द ही आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हिमलता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मणि समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं और इसके साथ ही ये

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बद्रीनाथ धाम को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की जिलाधिकारी गौरव कुमार ने समीक्षा की। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है और देहरादून में अवैध निर्माणों, नियम विरुद्ध भवन निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने दायित्वों से जुड़े कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला राज्य की प्रतिष्ठा और आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है, इसलिए सभी विभागों को योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा। आनंद स्वरूप ने बताया कि तैयारियों की नियमित निगरानी के लिए प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, साथ ही आगामी बैठकों में विभागों के नामित नोडल अधिकारियों की ही भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कार्यों की प्रगति की प्रभावी समीक्षा हो सके।
3: रोड का चौड़ीकरण का काम है, ब्रिजेज का काम है और जो का घाटों का काम है, ये काम अभी किए जा रहे हैं और बाकी जो टेम्पररी काम होने हैं ये सब मानसून के बाद ही होते हैं, तो उनका भी प्लान आप लोगों ने तैयार कर लिया है। विभिन्न विभागों के साथ किस तरह से समन्वय करना है इसका भी पूरा प्लान तैयार है, तो उसके आधार पर फिर हम लोग समय समय पर इसको समीक्षा करते रहेंगे जिसे काम अपनी गति से हो और कुंभ से पहले संपन्न।
2: बद्रीनाथ धाम को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी गौरव कुमार ने की। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सभी निर्माण और विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में यातायात व्यवस्था, तीर्थयात्रियों की पैदल आवाजाही, पथ प्रकाश, पार्किंग, सीवर निस्तारण, नदी तटों की सुरक्षा तथा अन्य यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए धाम को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान के तीसरे चरण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की योजना और अध्ययन कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। देहरादून में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति, हस्तांतरण की स्थिति तथा संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्वीकृत 22 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें से 10 परियोजनाओं को संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष पूर्ण परियोजनाओं के हस्तांतरण की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में ये बताया गया कि ग्रीन बिल्डिंग परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। परियोजना की प्रगति लगभग 40% होने पर जिलाधिकारी ने कार्यों में तेजी

जिला ने पर्याप्त श्रमिकों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना में हुई देरी के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी

0: राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने और संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी को पहले 4 रिफिल पर सालाना 300 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलने के बाद 14 किलो 200 ग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 642 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में एक आम उपभोक्ता के लिए खुदरा मूल्य 942 रुपये है। देहरादून में अवैध निर्माणों, नियम विरुद्ध भवन निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टरवार टीमें गठित कर नियमित निरीक्षण अभियान चला रहा है। MDDA की ओर से शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है। देहरादून में कई स्थानों पर निर्माण कार्यों को सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। वहीं अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी तरह के अवैध निर्माण में शामिल न हों।
2: इसमें दो तरह की दिक्कतें हैं, पारिवारिक स्तर पर भी विवाद हैं और एक दूसरे की जमीन कब्जाने के भी मामले लगातार आते रहते हैं। जो भी अवैध निर्माण है हम लोग सख्ती से उसको निपट रहे हैं। जो अवैध प्लाटिंग है या अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भी अनुरोध करना चाहूंगा जो स्वीकृत मानचित्र और स्वीकृत लेआउट है उसी में सभी लोग खरीदारी करें।
0: हरिद्वार जिले में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ व्यापक स्वच्छता अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित क्षेत्रों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेदारी पंचायतों और स्थानीय निकायों की होगी। गौरतलब है कि अभियान के चौथे दिन तक लगभग 1000 टन कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को प्रतिदिन सफाई कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नोडल अधिकारियों को भी दैनिक निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं स्वच्छता कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं बल्कि जिले के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। इसके लिए लगातार निगरानी, जन सहभागिता और विभागीय समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर नशे के खिलाफ पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच यात्रा शुरू होने से अब तक आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 18 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें पुलिस द्वारा 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार अवैध ड्रग्स पर चरस तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के अंतर्गत 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा के लिए हरिद्वार में गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन। बद्रीनाथ धाम को विश्व स्तरीय तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों की जिलाधिकारी गौरव कुमार ने समीक्षा की। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है और देहरादून में अवैध निर्माणों, नियम विरुद्ध भवन निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

0: लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बाबू सुप्रियो के गाए इस नगमे के साथ, जिसे लिखा है मनोहर अय्यर ने।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। लीजिए पेश है अहमद फराज की लिखी ये गजल, आवाज है मेहंदी हसन की।

0: मेहदी हसन की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रूपक एक नई मुस्कान। प्रस्तुत करता है डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
1: प्रस्तुत है असहाय बच्चों के कल्याण हेतु उठाए जा रहे समेकित प्रयासों के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक एक नई मुस्कान। आलेख अभिजीत क्रिस्टोफर लॉरेंच। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
2: घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली।
3: बचपन का पन्ना निसंदेह जीवन का सबसे सुनहरा पन्ना होता है, जिसमें होती हैं लोरियां, परियों की कहानियां, संगी साथी, भाई बहन, चाहने और चिंता करने वाले माँ पिता, ढेर सारे खेल खिलौने और सपने। लेकिन हर बचपन की राह ऐसी नहीं होती। ये बच्चे जी रहे हैं इस भीड़ भरी दुनिया में एक तनहा और बेरंग जिंदगी, एक शापित पहचान के दायरे में।
4: इनकी सुबह होती है किसी ठोकर से, रात को बिस्तर की जगह इनको मिलता है फर्श, और होते हैं आंसू इनकी नन्ही नन्ही आंखों में।

0: ए बच्चे, अरे ओ बच्चे, जान देना है क्या? चलो पीछे हटो, ट्रेन की चपेट में आते देर नहीं लगेगी। अरे भाई, किसके साथ है ये बच्चा? कौन है तुम्हारे साथ? इधर आओ, मैं पूछ रहा हूँ किसके साथ हो तुम? माँ बाप, भाई बहन, कोई तुम्हारे साथ है?
1: नहीं।
0: नहीं? क्या मतलब?
1: हम तो अकेले हैं।
0: समझ नहीं आता, 4-5 साल के बच्चे को रेलवे प्लेटफार्म पर कैसे अकेला छोड़ देते हैं? अरे भाई, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं?
1: वो तो मर गए।
0: हे भगवान, इधर आओ बेटा, इधर आओ। रहते कहाँ हो?
1: वहाँ, वहाँ सोता हूँ।
0: सोता हूँ? घर नहीं है तुम्हारा?
1: नहीं बाबूजी, भूख लगी है, रोटी दे दो।
2: हाँ हाँ बेटा।
3: लीजिए भाई साहब, मेरे पास टिफिन है, ये खाना दे दीजिए। लो बेटा, लो ये रोटी लो।
0: ये कौन सा रंग है भगवान तेरी दुनिया का? 4-5 साल का अकेला बच्चा, माँ बाप नहीं, घर नहीं, ना स्कूल, ना पढ़ाई, भीख मांगना।
3: भाई साहब, आप परेशान ना हो, ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, उनको फोन कर दीजिए, वो सब संभाल लेंगे।
0: चाइल्ड हेल्पलाइन? लेकिन उसका नंबर तो मेरे पास नहीं है।
3: बिल्कुल आसान टोल फ्री नंबर है ये, 1098। रुको रुको, मैं ही लगाता हूँ।
4: वन जीरो नाइन एट चाइल्ड लाइन सेवा एक ऐसा जरिया है जो कि इन असहाय बच्चों के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है, जिसकी मदद से वो अपनी मौजूदा दयनीय स्थिति से निकल बाहर आ सकते हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दे रही हैं अपर निदेशक महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश सीमा ठाकुर।
5: जैसा आपने खासकर देखा होगा कि कोई बच्चा आपको रोड पर मिल गया और उसके साथ मारपीट हो रही है या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, यदि कोई बच्चा अकेला है, बीमार है या रोता हुआ आपको मिल गया, ऐसे बच्चे जिनसे काम करवा

0: लिया गया हो, उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही हो, तो ऐसे बच्चों के लिए ये चाइल्ड लाइन सेवा है जो कि 24 घंटे उपलब्ध होती है।
1: असहाय बचपन को सक्षम बनाने हेतु अनेक स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं, जो सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर कर रही हैं।
2: भारत सरकार ने बच्चों के अधिकारों को कार्यान्वित करने और उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना की है। ये आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। इस आयोग का काम है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनको अमल में लाना।
1: मौजूदा कानूनों के तहत बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में जांच और कार्यवाही करना भी इसके प्रमुख कार्य हैं।
2: बाल अधिकारों में गुणवत्ता पूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित पानी, स्वच्छता, शिक्षा का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं, जो आज 18 वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड या यूनिसेफ जैसी संस्था भी इनके संरक्षण के लिए 1946 से कार्यरत है।
1: भारत सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम कानून 2015 भी पारित किया है। इस बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता निश्चित कुमार।
3: देयर आर टू कंपोनेंट्स टू इट। पहला ये है जहां पर कि वो बालक जो है, जुवेनाइल जो है, वो कानून के खिलाफ उसने कुछ काम किया है, वो पहला है। और दूसरा है कि ऐसा बालक जिसे कि कानून के संरक्षण की जरूरत है किसी भी वजह से, या तो वो अबैंडन्ड चाइल्ड है, या फिर ऑर्फन चाइल्ड है, या फिर ऐसा भी है कि जहाँ पर डेस्टिट्यूट्स है, जहाँ पर कोई नहीं है आगे पीछे, तो कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके मद्देनज़र दो तीन चीज़ें जो सामने निकल कर आईं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाया गया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक न्यायालय है, अब वो न्यायालय है सिर्फ बालकों के लिए, जुवेनाइल्स के लिए है। वो जे एक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लगभग हर जिले में ये गठित किया गया है देश के। इसमें वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, और एक चीज़ और बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है उस जिले का, उसे आप मानकर चलें कि वो एक तरह से उसका डिफैक्टो अध्यक्ष होता है। एक जो मेंबर है वो महिला का होना बहुत ज़रूरी होता है।
2: कोरोना महामारी में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को कोरोना में खो दिया। ये बच्चे रातों रात अनाथ हो गए। भारत सरकार ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी।
4: शायद ही किसी का ध्यान इस बात की ओर गया हो कि देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय गत एक वर्ष से देश में 4,345 बच्चों का संरक्षण स्वयं कर रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खोया। हर महीने ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता हो, उन्हें शिक्षा मिले, वे स्वस्थ रहें, ये चिंता स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने की।
5: ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अंत्योदय योजना

0: क्यों रे, तेरे से एक काम ठीक से नहीं होता? हाँ, 10 बार बोले हैं आराम से काम करो, लेकिन नहीं पता, नहीं पता किस बात की जल्दी रहती है तेरे को? तेरी तेरी ट्रेन छूट रही है क्या? नुकसान पे नुकसान कराती रहती है।
1: अरे क्या हुआ शीला जी, ये कैसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है?
0: आपको क्या करना है, हाँ आप अपने काम से काम रखिए ना।
1: सुनो जी।
2: हाँ क्या हुआ?
1: ये जो अपने पड़ोसन शीला है ना,
2: हाँ,
1: उसके बारे में कुछ पता है आपको?
2: अब क्या किया है उसने?
1: अरे उसके यहाँ जो बच्ची काम करती है,
2: हाँ?
1: उसके बारे में मुझे कुछ कहना है आपसे।
2: हाँ तो क्या हुआ उसको?
1: हुआ कुछ नहीं, बस शीला उसे बहुत मारती पीटती है और आज भी उसे बहुत मार रही थी।
2: ओहो, हाँ ये तो मैंने भी कई बार देखा है। क्यों, कुछ हुआ क्या आज?
1: अरे होना क्या है, उस बच्ची ने गलती से दही की हांडी तोड़ दी तो बस, इस बात पे शीला ने उस बच्ची को बुरी तरीके से मारा।
2: ओहो।
1: मुझे तो लगता है कि वो लोग उसे ठीक से पैसे भी नहीं देते, घर का काम करवाते हैं और मारते पीटते भी हैं। भाई मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कई बार सोचा कि शीला को बोलूं कि बच्ची को इस तरीके से ना मारा पीटा करे, भाई छोटी सी बच्ची है, इतना काम करवाती हूँ तो ऐसे।
2: पुष्पा पुष्पा देखो, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बुरे शोषण का शिकार होते हैं, हम किस किस की मदद कर सकते हैं?
1: देखिए इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे, हमें यही तो सोच बदलनी है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा उस बच्ची की मदद?
2: बिल्कुल ठीक कह रही हो वैसे तो।
1: और भाई सुनिए, हम सिर्फ इस देश के नागरिक ही नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक भी है। तो भाई हमें तो उस बच्ची की मदद करनी ही पड़ेगी, और पड़ोसी होने के नाते हमारा धर्म भी है। तो अब आप कुछ करेंगे या मुझे ही को सब कुछ करना है?
2: देखो पुष्पा, तुम्हें जो ठीक लगता है, तुम जो उचित समझो वो करो। हाँ
1: ये अच्छी बात है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँ। तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ।
2: ठीक है ठीक है,
1: मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ।
2: हाँ ठीक है ठीक है, पुलिस को फोन करो।
1: हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन।
3: इस प्रकार के असहाय बच्चों की मदद के लिए आप पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में उपाधीक्षक नवल सिसोदिया।
4: जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे प्रत्येक यूनिट में किशोर इकाई होती है, प्रत्येक थाने में, तो अपने सिविल ड्रेस में जाते हैं, उनको लेके आते हैं और वो उसको सीधे उसमें CWC के समक्ष पेश करते हैं। पेश करने के बाद में वो उनका काउंसलिंग करती CWC और उसको देखती है कि इसका परिवार है नहीं है, लावारिस है, तो उसको आगे की जो भी देखरेख की जरूरत है या शिक्षा की जरूरत है तो वो CWC देखती है, उसकी व्यवस्था पूरी देखती है, उसको विधिक प्राधिकरण को भेजती है और उसके जो भी आर्थिक सहायता होती है वो उसको प्रोवाइड कराती है। कोरोना काल में जिनके माँ बाप खत्म हो गए हैं, शासन ने गोद लिए हैं कुछ बच्चों को, हमारे यहाँ जिले में भी करीब 100-150 लोगों को लिया है, तो उनकी मंथली जैसे कोई परिवार उसको देखरेख करना चाहता है तो उनको दे करके उनको आर्थिक सहायता दी जाती है और उसी में उनका खर्चा चलता है, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनका रहन सहन का खर्चा पूरा, और 18 साल तक ये देखभाल की जाती है।
5: जहां भारत सरकार इन असहाय बच्चों की मदद के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, वहीं इस बात को भी समझने की जरूरत है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में ये नेक काम सरकार के लिए अकेले कर पाना असंभव है। इसलिए ऐसी अनेक गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो कि इसी दिशा में कई प्रकार के काम कर रही हैं, और ये सभी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं।
3: ऐसी ही एक संस्था है SOS Children's Village, जो कि ऐसे असहाय बच्चों को

0: एक परिवार का प्यार देने की कोशिश कर रही है। SOS विलेज के महासचिव सुमंत कार।
1: SOS चिल्ड्रेंस विलेज पिछले 58 साल से बाल विकास के लिए कार्यरत है और खास करके बच्चे जो पिता माता का छत्र छाए से वंचित है उन्हीं बच्चों के साथ SOS काम करता रहता है। और आज के दिन में हम 32 लोकेशन में और 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और लगभग 6,800 बच्चे हैं जो कि हमारे फैमिली लाइक केयर माध्यम से उनको केयर किया जाता है। यहाँ जो घर होता है हर घर 3 से 4 कमरा होता है और लाइक साधारण परिवार की तरह एक लिविंग रूम होता है, वॉश एरिया होता है, किचन होता है, सामने एक छोटा सा एक गार्डन भी होता है। एक माँ होती है जो कि 8 बच्चों को उनके लड़के लड़की उनको परवरिश करती रहती है और ये बच्चे जहाँ पर चिल्ड्रंस विलेज है उसी के आसपास स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हमारे ओर से कोशिश होता है कि हर बच्चा कम से कम 12वीं तक पास करे और उनके पास एक एम्प्लॉयबल स्किल हो जो कि उनको नौकरी में मदद मिल पाए।

0: ये स्वर है इसी संस्था के विलेज बवाना में रह रही बच्ची का।
1: अपने बचपन को निखारते
2: चिल्ड्रंस
1: विलेज बवाना के बच्चे और उनकी केयर टेकर माँ बहुत खुश हैं। कुछ स्वर।
3: हाँ जी बिल्कुल, एक माँ की ही जवाबदारी है। मेरा नाम कृष्णा चौरसिया। माँ की तरह जैसे सुबह उठना, बच्चों के लिए लंच बनाना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, फिर स्कूल से आते हैं वो तो लंच करते हैं, फिर शाम को हमारी प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद फिर बच्चे कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, छोटे बच्चे पढ़ने बैठते हमारे साथ ही एक लिविंग रूम में, और बड़े बच्चे अपने कमरे में बैठते पढ़ने के लिए। और अभी एक बेटी मेरी 12th क्लास में है, एक बेटा मेरा होटल मैनेजमेंट करके जॉब कर रहा है जो जीरो से पाला, एक बेटी की मैंने शादी कर दी।
4: स्कूल से आने के बाद एक घंटा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 2 घंटे की ट्यूशन होती है, फिर सेल्फ स्टडी होती है। भाई बहन है और फ्रेंड्स भी है, हम लोग सारे मिलके रहते हैं, और थोड़ी अनबन हो जाती है तो मम्मियाँ हैं हमारी संभाल लेती हैं।
5: यहाँ अगर मेरा बेस मजबूत हो गया तो मैं कंप्यूटर की लाइन में फ्यूचर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर लाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, कंप्यूटर चलाना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: गैर सरकारी क्षेत्र की इसी संस्था ने गरीब बस्ती के कुछ असमर्थ परिवारों के बच्चों को कंप्यूटर और अन्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। ट्यूटर मोहम्मद जिब्राइल।
6: यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हैं कि यहाँ डिजिटल लर्निंग सेंटर है, डिजिटल पाठशाला। इसमें 60 बच्चे, जो बच्चे 8वीं से ऊपर क्लास के बच्चे हैं, तो उनके स्कूल के बाद में यहाँ 1 घंटे के लिए उन लोग का बैच वाइज इन लोग का कंप्यूटर सीखने आते हैं।
7: यहाँ पे हम कंप्यूटर सीखने आते हैं, उसमें हमने पेंटिंग, एक्सेल और MS वर्ड और कंप्यूटर के बारे में जाना सीखा, कैसे चलाते हैं, इन सब के बारे में।

0: इन बच्चों में से कुछ को एक बाल पंचायत के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में भी लगाया गया है। पता है, यहाँ के बच्चों ने हमें ये भी बताया कि SOS के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे सामाजिक काम भी किए हैं, जिससे वो दूसरों की मदद कर सके।
1: मेरा नाम रुखसार। हमारे यहाँ पे एक छोटे बच्चों का बाल पंचायत है, जिसमें 18 साल से नीचे तक के बच्चे अपनी सब मीटिंग करते और सब बैठते और सब अपनी अपनी राय बताते। जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई में ना सब बच्चे एजुकेशन में बहुत ही कमजोर है। यहाँ पे ज्यादातर की बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो पढ़ते नहीं है, खेलते रहते। तो हम सब ने एक मीटिंग करके और एक राय निकाला कि इनके पेरेंट्स के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे।
2: मेरा नाम अंकुश है, मैं बाल पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ। तो बाल पंचायत हर अलग अलग मुद्दों पर काम करती है। कौन से बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं

उनको मजदूरी से निकाल कर बाहर लाना और यहाँ पे ट्यूशन लगवाना, स्कूल में जाके उनका एडमिशन करवाना, कोविड टाइम में घर घर जाके उनको खाना बांटना, उनको समझाना कि कोविड टाइम में हाथ धोना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। लोगों के अंदर एक गलत थिंक थी कि वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं, उसको हमने अच्छे से दर्शाते हुए लोगों को नाटक के माध्यम से समझाया कि कोविड टाइम में जो वैक्सीनेशन है वो सबसे जरूरी है।

0: जहां सरकार और गैर सरकारी क्षेत्र की अनेक संस्थाएं ऐसे असहाय बच्चों के साथ काम कर रही हैं, वैसी ही कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि गरीब तबके के बच्चों के साथ काम कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। इनमें से एक ऐसी ही संस्था है दिल्ली के मंडोली गांव में स्थित सेवा धाम विद्या मंदिर। अपनी संस्था के बारे में हमें बता रहे हैं अध्यक्ष ओंकार नाथ मिश्र।
1: इस संस्थान में अभावग्रस्त परिवारों के मेधावी बच्चों को छठी से और बारहवीं तक आवासीय सुविधा के साथ पढ़ाया जाता है। घुमंतु समाज, शरणार्थी परिवार जो अपना घर द्वार छोड़ के आ गए, उनके परिवार का कोई बच्चा है, भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों के परिवार में अगर कोई बच्चा दिख जाए हमें तो छठी से फिर हम उनको ले करके उनके टेस्ट करते हैं। इस वर्ष दिल्ली के भी छात्र लिए गए हैं जिनके माँ बाप कोविड की बीमारी में दोनों या उनमें से कोई एक चला गया और परिवार की स्थिति दयनीय हो गई, लेकिन कंडीशन यही है कि वो अभावग्रस्त परिवारों से ही हम लेते हैं और उस समाज में जाके जब वो अपनी बात कहता है वो ज्यादा प्रभावी होती है। और इसका परिणाम हम पूर्वोत्तर में हम देख रहे हैं। प्रोफेसर हुए हमारे, हिंदी का अखबार असम में दो अखबार चल रहे हैं, दैनिक अखबार, वो चलाने वाले हमारे यहीं के विद्यार्थी हैं सेवाधाम के।
2: हम सेवाधाम विद्या मंदिर गए और वहां के छात्रों से मुलाकात कर उनसे बात कर ये जानने की कोशिश की कि इस संस्थान में आने के बाद उनके जीवन में कैसा बदलाव आया है।
3: बुलसोंड्रिल रंगुल, असम से हूँ। मेरा पापा असम में चाय पट्टी बगान में काम करते हैं। वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल कम है, प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा लेने के कारण यहाँ में निःशुल्क पढ़ाई करते हैं और यहाँ में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन सिखाते हैं। यहाँ बारहवीं के बाद मैं असम राइफल में ट्राई करूंगा, ट्राई नहीं बल्कि मैं बनूंगा।
4: मेरा नाम आयुष देवर्मा है और मैं त्रिपुरा से हूँ, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। मेरे पिताजी का जो ऑक्यूपेशन है, हमारा एक छोटा सा बगान है जिससे बस घर का खाना पीना हो सकता है उससे, बाकी हमें पढ़ाया नहीं जा सकता। सेवाधाम में जो मुझे यहाँ मेरा इस स्कूल में जो दिल्ली में मुझे चांस मिला, ये मुझे एक नया दिशा देगी। और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ जैसे नाना पाटेकर, इसका मैं छोटा सा डायलॉग बोल सकता हूँ।
5: अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऊंचे मकान भरे पकवान जब नादान जी के हाथों को ले गई थी उसकी जान, औरत का पेट भरा है तो क्या बच्चा है।
0: इन सभी बातों के बीच एक बहुत ही अहम बात है बच्चों के अधिकारों की, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की है। अधिकतर बच्चे अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं। हमारे देश में भला कैलाश सत्यार्थी जी के नाम से कौन अपरिचित होगा। बाल श्रम के विरोध और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आपने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। इनके सदप्रयासों को देखते हुए इन्हें इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हेतु 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया।
6: जिस वक्त हमने ये शुरू किया उस वक्त ये कोई मुद्दा नहीं था, ना हमारे देश में ना दुनिया में इस तरह की कोई सोच नहीं थी। लोग सोचते हैं गरीब के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, कोई अजूबी बात नहीं है, नई बात नहीं है। लेकिन मैंने विनम्रता पूर्वक ये महसूस किया कि ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें मानवीय गरिमा, मानवीय आज़ादी, मानवीय सम्मान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके साथ मजाक हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे इस मुद्दे को हमने उठाया, लेकिन हमारे मुद्दे को उठाने के तरीके का असर ज़्यादा गहरा पड़ा, क्योंकि हम उस पर न केवल लोक जागरण की बातें कर रहे थे या नीतिगत परिवर्तन की बात कर रहे थे, बल्कि हमारी कोशिश थी कि हम सीधी कार्रवाई के द्वारा बच्चों को आज़ाद करा

0: सकें। और हमने करीब 85,000 बच्चों को गुलामी से आज़ाद कराया भारत में। विश्व में ये संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ दूसरे संगठनों के माध्यम से हम ये काम करते हैं, लेकिन हमारे बड़े अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल मार्च है उसके तहत, और अब कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन है उसके तहत काम करते हैं बहुत सारे संगठन। तो स्कूल जाने की आज़ादी, आगे बढ़ने की आज़ादी हर बच्चे को मिले, इसके लिए बाल मजदूरी और गुलामी का अंत हो, और अगर अच्छी पढ़ाई सबको मुहैया कराई जाए तो निश्चित तौर पर बाल मजदूरी का भी अंत होगा।
1: 9 is Mine जैसी कुछ संस्थाएं भी इस प्रकार के बच्चों के माध्यम से बाल संसद का निर्माण कर अन्य बच्चों को इस क्षेत्र में जागरूक कर रही हैं। इस संस्था की कार्यक्रम प्रबंधक एमा मिश्रा।
2: 9 is Mine एक चाइल्ड लेड एडवोकेसी कैंपेन है जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे अपने लिए कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑर्फन बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम सारे ही बच्चों को ट्रेन करते हैं चाइल्ड राइट्स के सारे आर्टिकल्स पे कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। तो अगर हम डेस्टिट्यूट बच्चों की बात कर रहे हैं, ऑर्फन या डिजेबल्ड बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हम उन तक पहुँच के भी उनको उनके अधिकारों से वाकिफ कराते हैं, ताकि अगर उनको कभी एहसास होता है कि उनका कोई अधिकार वायलेट हो रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको पता हो कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो कहाँ जा सकते हैं, किससे मदद मांग सकते हैं।
1: तो आइए जानते हैं इन्हीं बच्चों के माध्यम से ही कि उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में क्या कुछ सीखा है और इससे उनके जीवन में कैसे बेहतरी आई है।
3: मेरा नाम रुखसार रहमान है और मेरे एनजीओ के पास ही स्लम कम्युनिटीज है, ज़्यादातर बच्चे वहीं से आते हैं और मैं भी वहीं से आती हूँ। हमें सब चीज़ की नॉलेज है, पार्लियामेंट क्या होता है और बाकी सब, और हमारे पास तो खुद का चिल्ड्रंस पार्लियामेंट भी है जिसका नाम है यश चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, और यश की फुल फॉर्म है यंग एडवोकेट्स फॉर सोशल हार्मनी। हम सभी एडवोकेट्स हैं और हमें एडवोकेसी करना अच्छा लगता है क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है।
4: आज सरकार, पुलिस प्रशासन और स्वयं सेवी संस्थाएं इन बच्चों की बेहतरी के लिए प्रबंध कर रही हैं, पर जब हम आसपास निगाह दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी काफी कुछ किया जाना शेष है।

0: जरा देखिए नाइन इज माइन की इस नन्ही बच्ची आस्था को, जिसे अपनी जिम्मेदारी बखूबी मालूम है, और सुनिए कैसे वो अपने साथियों को संबल दे रही हैं।
1: तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और सरकार है, सरकार आपके लिए काम कर रही है, बहुत सारे संगठन है जो कि आप ही के लिए ही काम कर रही है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने आप को बिल्कुल आशायित मत समझो, आप एक बच्चे हो और बच्चों का हर कोई साथ देता है, आपको सिर्फ एक हेल्प मांगनी है किसी बड़े से और वो आपकी हेल्प जरूर करेगा।
2: एक नई मुस्कान, असहाय बच्चों के कल्याण हेतु उठाए जा रहे समेकित प्रयासों के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित यह रूपक अभी आपने सुना। आलेख अभिजीत क्रिस्टोफर लॉरेंज, वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और अभिनय श्रीवास्तव, नाट्यांश स्वर नवोदिता मिश्रा, सतीश साहू, अमजद खान, नौमान शौक, मधुलिका श्रीवास्तव, कमल किशोर और बेबी समीक्षा। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। विशेष सहयोग दीपक कुमार निषाद। विशेष आभार SOS चिल्ड्रंस विलेज, सेवाधाम, नाइन इज माइन और वे सभी बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। प्रस्तुति सहायक धीरज कुमार सोनी और हरदीप सिंह। संयोजन और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।
0: ये रूपक आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। आइए सुनते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। श्रोताओं कार्य

उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कुमावनी लोकगीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अर्जुन कुमार का गाया ये लोकगीत।

अर्जुन कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ ही उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन।

0: आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में

0: सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। किसान भाइयों, आज की जानकारी का विषय है कृषि में सूक्ष्म जैविकी और उपयोगिता। जानकारी दे रहे हैं श्री पंकज कुमार मिश्रा।
2: किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौर से की जाती रही है और 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ साथ नया दौर आया। सन 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित कार्यों जैसे वानिकी का सरल घरेलू

उत्पाद जीडीपी में 16.6% हिस्सा था। उस समय संपूर्ण कार्य करने वालों का 52% कृषि में लगा हुआ था। अगर भारत में देखें तो भारत में कृषि में 1960 के दशक के मध्य तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर आदि का प्रयोग करते थे। 1960 के बाद से फसल के उच्च उपज बीजों का प्रयोग शुरू हुआ। इससे सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा, जो कि पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को तो धीरे धीरे कम कर ही रहे थे, साथ ही साथ वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। फसलों में अधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग करने के बाद भी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अतः आज हमें रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों यानी कि जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आज मैं अपने किसान भाई और बहनों को इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी दूंगा कि किस प्रकार ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ कृषि विकास में सहायक हैं। जैसे कि किसान भाइयों, सूक्ष्म जैविकी उन सजीवों का अध्ययन है जो कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जैविकी में तत्पर शोध होते रहते हैं एवं यह क्षेत्र अनवरत प्रगति पर अग्रसर है। अभी तक हमने शायद पूरी पृथ्वी पर के सूक्ष्म जीवों में से केवल 1% का ही अध्ययन किया है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें जीवाणु प्रमुख हैं। जीवाणु एक कोश के जीव हैं जिनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। ये मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं जो प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर मिट्टी में, अम्लीय गलम जलधाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूमि पपड़ी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। साधारणतः 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु तथा 1 मिलीमीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर अगिनत जीवाणु पाए जाते हैं जो संसार के बायोमास का एक बहुत बड़ा भाग है। ये कई तत्वों के चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ साथ पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जो कि पौधों को आवश्यक मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लौह, जस्ता आदि उपलब्ध कराते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं जो कि पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे पदार्थ भी छोड़ते हैं जो कि फसलों में होने वाले रोगों से बचाते हैं और इनके प्रयोग का भूमि पर कोई दुष्परिणाम भी नहीं पड़ता है, बल्कि ये भूमि के भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार कर उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई और बहन जानते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों पर जो ग्रंथियां या गांठें पाई जाती हैं उनमें बड़े लाभ देने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल की आण्विक नाइट्रोजन जिसका पौधे सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं को पौधों के लिए सुलभ अमोनिया रूप में परिवर्तित कर देते हैं और कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, जैसे पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व सुलभ कराने वाले सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के हैं। पहले, पौधों को के साथ सहजीवी रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जैसे कि राइजोबियम, मेसोराइजोबियम, सिनोराइजोबियम एवं एजोराइजोबियम। अलग अलग दलहनी फसलों में अलग अलग जाति या प्रजाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए फसल के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग विभिन्न दलहनी फसलों जैसे फ्रेंच बीन, मटर, मसूर, सोयाबीन, गहत, अरहर, मूंगफली, राजमा इत्यादि में किया जा सकता है। इनके प्रयोग से विभिन्न दलहनों की उपज में 10-15% तक की वृद्धि पाई गई है एवं किसान भाई और बहनों, इनके प्रयोग से फसलों को 50-150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो विभिन्न दलहनों की जड़ों पर गांठों का निर्माण करने वाला राइजोबियम जीवाणु भूमि में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होता है, परंतु कई स्थानों पर मिट्टी में इनकी पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण अथवा प्राकृतिक रूप से विद्यमान राइजोबियम जीवाणु की कम सक्रियता एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता कम होने के कारण इस जीवाणु का दलहनी फसलों में प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जड़ ग्रंथियों का निर्माण हो सके और दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु के उपयोग का लाभ अगली बोई जाने वाली फसल में भी देखा गया है। दूसरे जो आते हैं वो हैं दूसरे स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर जीवाणु, जो कि पूर्ण स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय आण्विक नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करते हैं, जिसका

उपयोग पौधे सीधे कर पाते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न धान्य फसलों जैसे कि गेहूँ, जौ, मक्का, मड़ुआ, मादेरा, इसके अलावा सब्जियों में जैसे टमाटर, गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च इत्यादि में किया जा सकता है। इस जीवाणु के प्रयोग से फसलों को प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है एवं इसकी उपज में 10 से 15% तक की वृद्धि करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त इस जीवाणु से बीज की जमाव क्षमता में भी वृद्धि देखी गई है एवं पौधों में रोगों का प्रकोप भी कम होता है, परंतु यह फसलों को संपूर्ण नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं है। अतः अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए शेष नाइट्रोजन का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों द्वारा करना चाहिए। इसी क्रम में दूसरे जीवाणु बिजरिंकिया, एजोमोनास, ड्रेक्सिया, जो कि स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। एजो स्पाइरलम जीवाणु आंशिक स्वतंत्र रूप से रहते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर फसलों को लाभ पहुँचाते हैं। इस जीवाणु द्वारा फसलों को 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन के बराबर लाभ प्राप्त होता है और जीवाणु का प्रयोग कर फसलों की उपज में 6 से 10% तक की वृद्धि देखी गई है। इसका प्रयोग विभिन्न धान फसलों में किया जा सकता है जैसे कि, परंतु धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलों में इस जीवाणु का लाभ अधिक देखा गया है क्योंकि इन फसलों के साथ इस जीवाणु की विशेषता पाई गई है। इस जीवाणु का प्रयोग धान की फसल में भी किया जा सकता है। उर्वरक नाइट्रोजन के साथ ही एजोस्पाइरलम उपयोग का लाभ फसल को प्राप्त होता है। ये भी देखा गया है कि एजोस्पाइरलम के प्रयोग करने से जड़ों का अधिक विकास होता है जिससे कि वह भूमि से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकती हैं। इससे पौधों को अतिरिक्त लाभ होता है। इसी प्रकार कुछ सूक्ष्मजीव अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर इसे पौधों के उपयोग योग्य बना देते हैं। इन्हें फॉस्फेट विलयकारी सूक्ष्मजीव या PSB के नाम से जाना जाता है। जीवाणुओं में बैसिलस, स्यूडोमोनास, राइजोबियम इत्यादि और कवकों या फफूंदों में एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा इत्यादि उदाहरण हैं। इन जीवाणुओं का उपयोग सभी धान्य, तलहनी, तिलहनी फसलों में किया जा सकता है। भूमि में विद्यमान घुलनशील फॉस्फोरस के प्रकार के आधार पर इन फसलों को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक फॉस्फोरस के बराबर लाभ पहुँचाते हैं। रॉक फॉस्फोरेट के साथ इनके प्रयोग से 30 से 35 किलोग्राम फॉस्फोरस के बराबर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फॉस्फोरस के उर्वरक अपेक्षाकृत महंगे होते हैं एवं इन उर्वरकों की प्रयोग क्षमता भी कम होती है। अतः फॉस्फेट विलयकारी जीवाणु का प्रयोग फसलों में फॉस्फोरस तत्व को उपलब्ध कराने के लिए करना चाहिए। इनका उपयोग नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पर्लम के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। अब किसान भाई सवाल यह होता है कि इन सूक्ष्म जीवों या जैव उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार करें। इसके लिए इन विशेष जीवाणुओं की निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारक धूलीय पदार्थ जैसे चारकोल, लिग्नाइट, टैल्क पाउडर आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं जिन्हें प्राय कल्चर, बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के नाम से जाना जाता है और ये बाजार में भी उपलब्ध हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग दलहनी फसलों में अलग अलग जाति या प्रजाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों पर गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए फसल के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः किसी भी फसल के 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरक पर्याप्त होता है। सबसे पहले किसी छायादार जगह पर साफ बोरी, अखबार, पॉलिथीन बिछाकर उस पर बीजों की एक ढेरी बना लें और हाथ में दस्ताने पहनकर 200 से 250 ग्राम गुड़, चीनी या CMC के ठंडे घोल में जैव उर्वरक की निर्धारित मात्रा को अच्छी प्रकार मिलाकर बीजों के ऊपर उड़ेलकर उसे बीजों के साथ इस प्रकार मिलाएं कि प्रत्येक बीज के ऊपर जैव उर्वरक की एक समान परत चिपक जाए। इस प्रकार उपचारित बीज को 20 से 25 मिनट छाया में सुखाकर बुआई कर देनी चाहिए। दो या अधिक जैव उर्वरकों को एक साथ प्रयोग करने के लिए इनकी आवश्यक मात्रा का एक साथ घोल बनाकर बीजों का उपचार करना चाहिए। अब बात करते हैं धान और सब्जियों की फसलें जिनकी रुपाई की जाती है उनमें जैव उर्वरक का प्रयोग करने के लिए जैव उर्वरकों की 250 ग्राम मात्रा का 25 से 30 मिलीलीटर पानी में घोल बना लिया जाता है। पहले जड़ों को बहते हुए पानी में धो लें और धोने के पश्चात जड़ों को इस घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखने के पश्चात उसकी रुपाई कर दें। ये तो बात हुई कि जो हमारे सूक्ष्मजीव हैं वो किस तरीके से लाभ पहुँचाते हैं। अब इन सूक्ष्मजीवों का को प्रयोग करते समय हमारे किसान भाई और बहन किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि वो अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है अतः इनका प्रयोग का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को कुछ सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला है, राइजोबियम कल्चर से मिलने वाला लाभ बहुत हद तक उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, अतः किसी सरकारी या विश्वसनीय स्रोत से ही अच्छी गुणवत्ता का जैव उर्वरक ही क्रय करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग इनकी लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व

0: भी कर लेना चाहिए। राइजोबियम कल्चर को सीधे रासायनिक उर्वरकों एवं खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों जैसे कीटनाशी, खरपतवार नाशी आदि के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार किसी साफ फर्श, अखबार, पॉलिथीन या बोरे पर ही करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से उपचारित बीजों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। जैव उर्वरकों से उपचारित बीजों को किसी साफ फर्श, पॉलिथीन या बोरे पर ही करें। इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई और बहन इन कृषि उपयोगी सूक्ष्म बीजों का प्रयोग अपनी फसलों में करेंगे तो निश्चित ही अधिक फसलोत्पादन कर कृषि विकास में सहायक होने के साथ साथ पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा सकेंगे।
1: कृषि में सूक्ष्म जैविकी और उपयोगिता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा की वार्ता। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रूपरेखा। हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर प्रसारित होगा शाम 5:05 पर। आज के कलाकार होंगे विमला बोरा और साथी। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा अन्न का करें सम्मान। उत्तरायण कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:45 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कुमावनी एवं गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुराश। साथ ही इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा 6:41 पर। आज हम आपको सुनवाएंगे अनुपमा देश पांडे और शर्मा बंधु के गाये गीत। प्रादेशिक संगीत का समय रहेगा 7 बजे। 7:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि प्रसारित किया जाएगा। आज की जानकारी का विषय होगा कंपोस्ट निर्माण की उन्नत तकनीकी। जानकारी देंगे डॉक्टर अमित कुमार। संचालन होगा श्री देवेंद्र सिंह कार्की का। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस प्रसारित होगा रात्रि 8 बजे। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा आबिदा परवीन, कुमार सानू और भूपेंद्र सिंह के गाए गीत और गजल। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे 7:40 पर। कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, आज के फनकार हैं फिल्म निर्माता एकता कपूर। ये नाम छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक का वो सफर है जिसकी मेहनत की दाद हर कोई देता है। टीवी क्वीन के नाम से मशहूर एकता कपूर अभिनेता जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी हैं, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने बनाई है अपने काम से। 7 जून साल 1975 को इनका जन्म हुआ। 1994 में बालाजी टेलीफिल्म्स की शुरुआत कर इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल्स के जरिए एकता घर घर की कहानी सी बन गई। छोटे पर्दे पर सफलता का परचम लहराने के बाद साल 2001 में क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म के जरिए इन्होंने बतौर निर्माता बड़े पर्दे का रुख किया और श्रोता उसके बाद एक से बढ़कर एक

शुतो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्मों के अलावा, एकता कपूर ने कृष्णा कॉटेज, द डर्टी पिक्चर, लुटेरा, उड़ता पंजाब, वीरे दी वेडिंग, जजमेंटल है क्या, जबरिया जोड़ी और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों का निर्माण किया, और ये सभी फिल्में दर्शकों द्वारा सराही गईं। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी निर्मित फिल्म लुटेरा से।

श्रोतो, एकता कपूर की खासियत रही है रिश्तों की भावनाओं को पर्दे पर जीवंत करना, उन किरदारों को गढ़ना जो कहानी बनकर दिल में बस जाए, आंखों में बसे सपनों को जिस तरह उन्होंने पर्दे पर साकार किया, उसने मनोरंजन की दुनिया में तहलका सा मचा दिया। और आज अपनी मेहनत के बूते उन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और आइए कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं उनके निर्मित फिल्म द डर्टी पिक्चर का ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार अब संपन्न हुआ। आज की फनकार थी फिल्म निर्माता एकता कपूर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्मिला जोशी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आई हूं ऐसे सदाबहार गीत जो याद दिलाते हैं 50 और 60 के दशक की उस खूबसूरत अदाकारा की, जिसकी अदाओं और अभिनय ने उस दौर में दर्शकों के दिलों पर राज किया। श्रोताओं, ये अभिनेत्री हैं श्यामा। खूबसूरत, आकर्षक, जीवंत और भावपूर्ण अभिनय के साथ ही साथ उनकी मुस्कान में गजब की ताजगी थी। असली नाम था खुर्शीद।

दफ्तर और पर्दे पर उन्होंने राज किया श्यामा नाम से, और श्रोताओ ये नाम उन्हें दिया था गुरुदत्त ने। आज इनका जन्मदिन है तो उन्हें याद करते हुए आइए सुनते हैं उन पर फिल्माए 50 और 60 के दशक के खूबसूरत सदाबहार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत भाभी फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें ही लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है, संगीत है चित्रगुप्त का।

श्रोताओं, बाल कलाकार के तौर पर श्यामा ने अपने करियर का आगाज किया और फिर उस दौर में कई फिल्मों में अपने अभिनय से रंग बिखेरा। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी फिल्म भाई भाई से। श्रोताओं, इस गीत में श्यामा ने प्रेम

के एहसास को बड़ी ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया। उनकी चमकती दमकती भावपूर्ण आंखों में बसे सपने और खुशी को इस तरह उन्होंने इस गीत के साथ जिया कि ये गीत आज भी प्रेम के एहसास की तरह तरोताजा लगता है। और साथ में गीता दत्त की आवाज उनके अभिनय से इस तरह मेल खाई कि ये दोनों मिलकर एक सुनाई पड़ते हैं।

श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं अभिनेत्री श्यामा की फिल्म शर्त का ये खूबसूरत दो गाना, जिसे आवाज दी है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत लिखा है SH बिहारी ने, संगीत है हेमंत कुमार का। श्रोताओ, चांदनी रात में श्यामा और अभिनेता दीपक पर फिल्माया प्रेम का इजहार करता हुआ ये गीत प्रेम की उस अनुभूति को बयां करता है जहां सुकून और कोमलता का एहसास होता है मधुर संगीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साल 1957 में प्रदर्शित फिल्म शारदा से। इस फिल्म में अभिनेत्री शारदा को अपनी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। श्रोताओं, अभिनेत्री श्यामा ने गीत की लय के साथ जिस तरह से अपनी नृत्य कला को पर्दे पर प्रस्तुत किया है, वो ऐसा लगता है मानो गीत के संग संग खुद बहती चली जा रही हूँ। उमंग, खुशी और ताजगी की खनक सी झलकती है उनके गीतों में। आइए आनंद लेते हैं शारदा फिल्म के इस सदाबहार गीत का, जिसे फिल्माया गया है अभिनेत्री मीना कुमारी और शारदा पर। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत है सी रामचंद्र का।

श्रुतो, एक तरफ जहां शारदा ने अपने अभिनय से उमंग और ताजगी बिखेरी, तो वहीं भावुक दृश्यों में भी उनका अभिनय निखर कर आया। गीत के भावों को उन्होंने समझकर ऐसे पेश किया कि गीतों के बोल संग उनका अभिनय आंखों में जीवंत हो जाता है। ऐसा ही ये गीत अब आपको सुनवा रही हूँ जबक फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, गीतकार हैं प्रेम धवन, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

श्रोतो, पर्दे पर जब भी प्रेमी प्रेमिका के रूठने मनाने के दृश्य का फिल्मांकन किया गया तो उन दृश्यों ने दर्शकों को हमेशा रोमांचित किया। प्यार भरी नोक झोंक, रूठना मनाना, ये हमेशा ही फिल्मों की जान रहे और ऐसी दृश्यों में अभिनेत्री श्यामा के चेहरे की मासूमियत और आंखों के नटखट अंदाज ने वो चार चांद लगाए कि उन पर फिल्माए ये दृश्य आज भी दर्शकों की यादों में बसे हुए हैं। आर पार फिल्म का ऐसा ही एक खूबसूरत गीत आइए अब सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोलों को सुरों में पिरोया है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं मिर्जा साहिबान फिल्म का ये मधुर गीत। ये गीत कई भावों को समेटे हुए है, मन की बेबसी, प्यार की तड़प और एक झलक के दीदार को तरसती आंखों से श्यामा ने इस गीत को यादगार बना दिया। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये मधुर गीत।

श्रोताओ, मिर्जा साहिबान फिल्म के इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी उर्मिला जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी सायंकालीन सभा के सभी प्रसारण मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी बागेश्वर के FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर भी रिले किए जा रहे हैं। संध्या के ठीक 5 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में LPG सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है।

0: कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विमला बोरा और साथियों का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

विमला भोरा और साथियों के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10:00 रविवासरी संगीत सभा, ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ देर पश्चात संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय है अन्न का करें सम्मान। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर और प्रादेशिक लोक संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:00। संध्या 7:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस होगा रात्रि 8:00। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:25 पर। उसके पश्चात विचार बिंदु और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज की बात ये कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर। कार्यक्रम विविधा आप सुनेंगे प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर, जो हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे प्रहलाद सिंह मेहरा और नंदी आर्या। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे प्रातः

8:30 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जर आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे सबरंग कार्यक्रम में प्रातः 10:05 पर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे आशा भोसले और गुलाम अली। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरभार आप सुनेंगे प्रातः 10:35 पर।

कल प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे प्रातः 11:30 पर, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद होगा दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। कल इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे लैंगिक समानता सुदृढ़ समाज विषय पर श्रीमती नीमा बिनवाल से, अल्मोड़ा से हेमलता नयाल की क्षेत्र संकलित बातचीत। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:05 पर हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। सुगम संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर।

सर, कल इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे लैंगिक समानता सुदृढ़ समाज विषय पर श्रीमती नीमा बिनवाल से अल्मोड़ा से हेमलता नयाल की क्षेत्र संकलित बातचीत। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:05 पर हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। सुगम संगीत आप सुनेंगे 1:15 पर। 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे 2:00। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे 2:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे एक ही फनकार कार्यक्रम में 2:45 पर। और सभा के अंत में अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। हमारी सायंकालीन सभा रोजाना की तरह आरंभ होती है 5:00। 5:05 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर। कल 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले के जाएंगे। 5:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण और युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे 5:15 पर। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे 6:41 पर और ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्राम जगत सुनेंगे 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:40 पर और 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत और 10:30 पर। मिले जुले गीत गजनों का प्रोग्राम सबरस होगा 8:00 और सुगम संगीत आप सुनेंगे 10:00। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ये वाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी प्रिय श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र पवन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, नई नई बातें और कुछ खास पेशकश। तो साथियों, आज के इस अंक में हम सर्वप्रथम आज की बात में बातचीत करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे अन्न का करें सम्मान विषय पर हमारी युवा श्रोता सुरभि पालनी के साथ हमारी भेंट वार्ता। उसके बाद अंक विशेष के अंतर्गत घटनाक्रम और अंत में इतिहास के पन्नों से आप जानेंगे आज का इतिहास। और बातचीत व जानकारी के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला भी चलता रहेगा, जहां हम आपको सुनवाएंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात के साथ। दोस्तों, हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना और खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष इसकी थीम है बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। यह विषय हमें याद दिलाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। यदि भोजन दूषित हो तो वह अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए खेत से लेकर थाली तक हर स्तर पर भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असुरक्षित भोजन आज भी विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि सामाजिक और

0: और आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी कुछ सरल आदतें अपनाकर खाद्य सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं, जैसे कि भोजन बनाने और खाने से पहले हाथ धोना, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह साफ करना, भोजन को ढक कर रखना तथा स्वच्छ पानी का उपयोग करना। श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा केवल सरकारों या खाद्य उद्योग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें यह संदेश भी देता है कि सुरक्षित भोजन कोई विकल्प नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। जब भोजन सुरक्षित होगा, तभी समाज स्वस्थ होगा और राष्ट्र प्रगति करेगा। और साथियों, अब इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा और अन्न के सम्मान के संबंध में आज का हमारा युवा अपने क्या विचार रखता है, इसे जानने के लिए आइए सुनते हैं हमारे एक युवा श्रोता से हमारी ये खास बातचीत। साथियों, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे युवा श्रोता सुरभि पालनी। तो सुरभि, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो सुरभि, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपके अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?
1: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए भोजन का उपलब्ध होना ही नहीं, बल्कि उसका सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होना भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल। तो सुरभि, अक्सर हम जैसे बात करते हैं कि हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए, तो आपके अनुसार ये बात वर्तमान समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
1: क्योंकि अन्न हमारे जीवन का आधार है। किसान महीनों की मेहनत के बाद फसल तैयार करता है।
0: जी,
1: जब हम भोजन की बर्बादी करते हैं तो केवल अन्न का ही नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत, पानी, ऊर्जा और अन्य संसाधनों को भी व्यर्थ करते हैं। इसलिए अन्न का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सुरभि, यह बहुत ही जरूरी बात आपने हमसे साझा की। अक्सर हम देखते हैं कि समारोहों और आयोजनों में काफी भोजन बर्बाद हो जाता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
1: हाँ जी, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन लेना चाहिए।
0: जी,
1: यदि भोजन बच जाता है तो उसे हमें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: भोजन की बर्बादी रोकना सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय भी है।
0: निश्चित रूप से सुरभि, यह वास्तव में मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय भी है। अगर हम बात करें हमारे युवाओं की, तो इस दिशा में हमारे युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
1: युवा जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने परिवार, मित्रों और समाज को भोजन की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न अभियानों के माध्यम से भी यह संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल। और अगर हम बात करें हमारे विद्यालयों की या फिर हमारे महाविद्यालयों की, तो आपके अनुसार विद्यालयों में या फिर महाविद्यालयों में इस विषय पर जागरूकता हम कैसे बढ़ा सकते हैं?
1: जी, विद्यालय और महाविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं। इससे बच्चों और युवाओं में भोजन के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी।
0: बिल्कुल। और अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा और अन्न के सम्मान की, तो आपके अनुसार इनके बीच क्या संबंध है?
1: जी, जब हम भोजन का सम्मान करते हैं और उसकी बर्बादी रोकते हैं, तो खाद्य संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। इससे अधिक लोगों तक भोजन पहुंचाने में मदद मिलती है और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान मिलता है।
0: बिल्कुल। और सुरभि, अगर हम बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अन्न के सम्मान का संदेश कितना महत्वपूर्ण है?
1: जी, भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में अन्न का सम्मान करना किसान के परिश्रम का सम्मान करना भी है। यह संदेश हमें कृषि और किसान दोनों के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है।
0: निश्चित रूप से सुरभि, यह बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई। और अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: जी, मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि थाली में उतना ही भोजन ले जितनी उसकी आवश्यकता हो। अन्य का सम्मान करें और भोजन

0: बर्बादी ना करें और दूसरों को इसके प्रति जागरूक करें। याद रखिए, अन्न का प्रत्येक दाना किसान की मेहनत और प्रकृति के अमूल्य संसाधनों का प्रतीक है।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि आप सभी अन्न का सम्मान करें और भोजन की बर्बादी को रोकने का संकल्प लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और सुरभि, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर युवा श्रोता सुरभि पालनी से हमारी भेंट वार्ता। और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और गीत के उस पार घटनाक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब चलते हैं अंक विशेष की ओर, जिसमें घटनाक्रम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं हालिया महत्वपूर्ण खबरों की। साथियों, हाल ही में IFS अधिकारी विपुल को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर सुहेल एजाज खान का स्थान लेंगे, जो 2023 से रियाद में सेवारत हैं। विपुल वर्तमान में कतर में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अगली खबर की बात करें तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दी है। उनका विस्तारित कार्यकाल 10 जून 2026 से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। साथियों, बता दें कि उन्हें पहली बार 2 मई 2022 को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था। दोस्तों, 8 बार विधायक रहे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 30 मई 2026 को कांग्रेस विधायक दल ने अपना नेता चुना था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। यह आर्द्रभूमि पक्षी विविधता के मामले में असाधारण रूप से समृद्ध है, जो कई प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को आकर्षित करती है। अगली खबर की बात करें तो हाल ही में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में बाबेसिया बीमारी के प्रकोप के कारण 8 एशियाई शेर के बच्चों की मृत्यु हो गई और 17 अन्य संक्रमित हो गए हैं। साथियों, बाबेसिया रोग एक टिक जनित रोग है, जो बेबेसिया जाति के प्रोटोजोअन परजीवियों के कारण होता है, जो कि एक स्थानिक परजीवी है। तो साथियों, अंक विशेष में फिलहाल इतना ही, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे लेकर आज का इतिहास।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी अल्मोड़ा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी अपने रेडियो मित्र पवन के साथ। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं आज यानी 7 जून का इतिहास। दोस्तों, 7 मई सन 1893 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। साल 1989 में 7 मई को ही भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। 7 मई वर्ष 1654 में आज ही के दिन लुई 14 फ्रांस के राजा बने। साथियों, वह एक ऐसा सम्राट था जो अपनी मृत्यु तक फ्रांस का राजा बना रहा। और 7 मई साल 1997 में महेश भूपति ग्रैंड स्लैम टेनिस जीतने वाले पहले भारतीय बने। दोस्तों, इसी के साथ इतिहास में आज के दिन कुछ महान हस्तियों का निधन भी हुआ था, आइए जानते हैं। साल 2011 में 7 जून के दिन भारत के नृत्य गुरु नटराज रामकृष्ण का निधन हुआ था। 7 मई सन 1954 में अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलेन ट्यूरिंग का निधन हुआ था। अब एक नज़र आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर प्रसिद्धि हासिल की। 7 मई सन 1998 में सुमित अंतिल का जन्म हुआ था, जो भारत के भाला फेंक पैरा एथलीट हैं। साल 1974 में 7 मई को ही भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ था। और 7 मई सन 1914 में आज ही के दिन प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ था। तो साथियों, ये थी देश और दुनिया के इतिहास से जुड़ी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। कार्यक्रम में आगे बारी होगी आज के प्रश्न की, लेकिन उससे पहले ये खासम खास गीत आप सबके लिए।

तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आज के प्रश्न का। जी हाँ साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं कार्यक्रम से जुड़ा आज का प्रश्न। लेकिन उससे पहले कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और सही उत्तर बताने वाले श्रोता साथियों के नाम हम साझा कर रहे हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था, टेट्रिस गेम को पहली बार कब लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 जून 1984 में। जी हाँ साथियों, आज से करीब 42 साल पहले इस गेम को पहली बार लॉन्च किया गया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा ने, और गुमला झारखंड से हमें सही उत्तर भेजा है SM जावेद ने। और साथियों, इसी के साथ अब प्रस्तुत है हमारा आज का प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। प्रश्न एक बार फिर से, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हम अपने कल के संस्करण में आपको बताएंगे। तब तक आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर हमें ज़रूर भेजें हमारे कार्य

कार्यक्रम के व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर। जी हाँ साथियों, नंबर है 9411001122। और इसी के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। अभी अपने दोस्त पवन को दीजिए अनुमति, कल फिर आपसे होगी मुलाकात युववाणी कार्यक्रम के एक और नए संस्करण के साथ। और दोस्तों, चलते चलते आप सभी से कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सभी श्रोताओं के मैं नीरू गोस्वामी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छो अब सब लोगों का हमारे आज उत्तरायण कार्यक्रम में। श्रोताओं, भोजन मानव जीवनक मूलभूत आवश्यकता छो या हमारे शरीर के ऊर्जा प्रदान करें जैल हम दैनिक कार्य कर सकनों। श्रोताओं, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमार शरीरक विकास, ऊतकों की मरम्मत और रोगों हबे रक्षा करने और संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर के स्वस्थ धरणक दगड़ दगड़ ही मानसिक विकास में ले महत्वपूर्ण भूमिका निभोने या हमार रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ोनी जैल हम विभिन्न बीमारियों हबेर बच सकनों। श्रोताओं, नांतिनों शारीरिक और बौद्धिक वृद्धि के लिजी लय उचित भोजन अत्यंत आवश्यक छो। तो भोजन केवल भूख मिटोनक साधन नहीं छू बल्कि स्वस्थ सक्रिय और खुशहाल जीवनक आधार छो। यह के लिजी हमन के हमेशा स्वच्छ सुरक्षित और संतुलित भोजनक सेवन करण चे। श्रोताओं, भोजनक बात हम किले करण लागरी किले की आज मनाई जानो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 7 जून के यह मनाई जा एक उद्देश्य लोगों के सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजनक महत्वक प्रति जागरूक करण छो। और भोजन केवल पेट भरणक साधन नहीं छो बल्कि यह हमारे स्वस्थ विकास और जीवनक गुणवत्ता हवेल जुड़ी हुई छो। श्रोताओं, यदि भोजन सुरक्षित न हो तो वो अनेक गंभीर बीमारियों कारण बन सकूं। तो श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा का अर्थ चूंकि भोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपभोग प्रत्येक चरण में स्वच्छ, पौष्टिक और स्वास्थ्यक लिजी सुरक्षित हो। और दूषित भोजन में श्रोताओं, बैक्टीरिया, वायरस

रासायनिक या अन्य हानिकारक तत्व है सकनी जो फूड पॉइजनिंग या दस्त या टाइफाइड या अन्य रोगों के जन्म देनी। तो यह कह लीजिए खाद्य सुरक्षा स्वस्थ समाजक आधारशिला छू। श्रोताओं, यह दिवसक मुख्य उद्देश्य लोगों, किसानों, खाद्य उद्योगों और सरकारों के खाद्य सुरक्षा प्रति जागरूकरण छू और यह दिन सुरक्षित भोजनक उत्पादन और उपभोग के बढ़ावा देन, खाद्य जनित बीमारियों के रोकण और जन स्वास्थ्य रक्षा करणक संदेश दियो। श्रोताओं, भोजन के हम विभिन्न प्रकार सुरक्षित धर सकनू जो कि हमारे स्वस्थ शरीर रख लीजिए बहुत उपयोगी है सकूं। तो श्रोताओं, भोजन बनून है बेर पहली और बाद में अपन हाथों के भली प्रकार साफ कर लियो और फल एवं सागों के भली प्रकार धोबेर काटो और वीक उपयोग करण चे और भोजन के उचित तापमान पर पकाई जान चे और सुनिश्चित ढंगर संग्रहित करण चे यानी कि भर ढंगर उके धरण चे और एक्सपायरी डेट वाल खाद्य पदार्थों जांच कर बेर ही उनर सेवन करण चे और स्वच्छ पेयजलक उपयोग करण चे यानी कि पानी जो छू उप साफ और स्वच्छ हो जे और खाद्य पदार्थों के जनन में मख और अन्य कीट भैरनी और खुली जो चीज छिन उन्हें सेवन करण हबेर बचन चे यानी कि उन्हें बिल्कुल नहीं खान चन। तो श्रोताओं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमन के यह याद दिलो कि सुरक्षित भोजन प्रत्येक मनखीक अधिकार छू और इके सुनिश्चित करण हम सबक जिम्मेदारी छू और स्वच्छता, जागरूकता और सही खाद्य प्रबंधन अपने बेर हम स्वयं के और समाज के अनेक बीमारियों हवे बचे सकनू। तो आओ यह अवसर पर सुरक्षित भोजन अपनोने और दुहर कह ले यह प्रति जागरूक करने हम संकल्प लेने। तो श्रोताओ, यह तो छी आप लोगों दगर कुछ बातचीत और कार्यक्रम में आगे कह सुनू योर लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्ले आप लोगों सुनो ज्योति उप्रेतिक स्वर में गाई यो लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगिल के वर्णन और कार्यक्रम के शुरुआत करनू हमारे आज के फरमाइशी कार्यक्रम बुरा सक्तगढ़। और श्रोताओं, यह कार्यक्रम छू आप लोगों द्वारा भेजी गई फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम। तो इमें हम आप लोगों को सुन कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत आप लोगों की फरमाइश पर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करनू पहली मैसेज दगर। और श्रोताओं, वी हवे पहली मैं आप लोगों को बता दिन कि अगर आप लोग ले अपन मनपसंद कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत सुनन चाहा तो हमन के हमारे व्हाट्सएप नंबर में हमन के मैसेज कर सकता। तो हमार व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लियो। हमार व्हाट्सएप नंबर छू 9411101122। और हमार व्हाट्सएप नंबर एक बार आप लोग आई नोट कर लियो 9411101122। तो श्रोताओ, पहली मैसेज या हम अपन कार्यक्रम में शामिल करनू और यह हमन के अरो ग्राम सुयालगढ़ जिला नैनीताल बटिक। और यह हमारे श्रोता हमन के भेजन लागरी मैसेज। और यछिन गीता जोशी, ब्रिजमोहन जोशी, पवन जोशी और नेहा जोशी। तो श्रोता, यह लोग सुनन चाहनी समूह स्वर में गाई और लोकगीत। तो आओ सुनो इनर फरमाइश पर यह लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता, कार्यक्रम में यह अंतरालक बाद बुरांश कार्यक्रम में हम शामिल करनो हमार अगल मैसेज या हमन कह रहो ग्राम मोना जिला नैनीताल बटीक और यह हमारे श्रोता छिन नेहा मेहरा, राकेश राणा और राजेंद्र नयाल जी। तो श्रोता यह लोग या लोगों सुनन चाहनी गोकुल सिंह बेस्ट और उन दगड़ियों के स्वर में गाई यह लोकगीत। तो श्रोताओ आओ सुनो इनर फरमाइसी लोकगीत।

0: श्रोताओं अल्ले आप लोगों सुनो फरमाइसी लोकगीत गोकुल सिंह बिष्ट और ओनर दगड़ियों स्वर में।
1: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें, बिल अवश्य लें और जांच लें।

0: कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें pis.gov.in पर।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में हम शामिल करनो अगिल मैसेज या हमन कह रहे ग्राम पाखुड़ा जिला अल्मोड़ा बटी और यह हमारे श्रोता फरमाइश भेजन लाग रही यह छिन आशुतोष रावत, रंजना रावत और नेहा रावत और इनर सबे दगड़ी। तो श्रोताओ, यह लोग सुनन चाहनी किशन चंद्र सिराड़ी और उनर दगड़ियों स्वर में गाई यह लोकगीत। तो आओ सुनो इनर फरमाइश पर यह लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम बुरांश में अल्ले आप लोगों सुनो किशन चंद्र सिराड़ी और उनर दगड़ियों स्वर में गाई योई लोकगीत। तो श्रोताओं, अगर आप लोग ले अपन फरमाइशी लोकगीत हमारे कार्यक्रम में सुनन चाचा तो हमन के व्हाट्सएप कर सकता। हमारे व्हाट्सएप नंबर छू 94111011 22 और हमारे नंबर एक बार आई नोट कर लो 94111011 22। और श्रोताओ, कार्यक्रम में हम अगिल के शामिल करनू एक आई मैसेज और। तो यह मैसेज हमन कह रहा बरेली रोड हल्द्वानी बटीक और यह हमारे श्रोता छिन्न आशा खोलिया, कृष्ण कुमार खोलिया और इनर सबे दगड़ी। और यह लोग सुनन चाहनी गोपाल चम्यालक स्वर में गाई यह लोकगीत। तो आओ सुनो इनर फरमाइश पर यह लोकगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्ले आप लोगों सुनो यह फरमाइशी लोकगीत गोपाल चम्याल और ओनर दगड़ियों स्वर में।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता, कार्यक्रम में अगिल के शामिल करनो हम यो मैसेज और यह हम इनके रहो ब्लॉक चौखुटिया जिला अल्मोड़ा बैठे और यह हमारे श्रोता छिन मोनिका नेलवाल, चेतन नैनवाल और इनर परिवार हक सब सदस्य। तो श्रोता, यह लोग सुनन चाहनी अनीसा गोसाई स्वर में गाई यो लोकगीत, तो आओ सुनो इनर फरमाइश पर यह लोकगीत।

श्रोता कार्यक्रम बुरांस में अल्ले अपोलोगन सुनो या फरमाइसी लोक गीत अनिसा गुसाई स्वर में और श्रोताओ अगिल के शामिल करनो यह मैसेज यह हमन के एरो जिला चंपावत बटिक और यह हमारे श्रोता छिन नीता भट्ट मीनू भट्ट दमयंती भट्ट और इनर परिवारक सबत सदस्य और श्रोताओ यह लोग सुनन चाहनी चंद्रदत्त शिवालक सर में गाई यह लोकगीत। तो आओ सुनो इनर फरमाइश पर यह लोकगीत।

श्रोताओ, चंद्रदत्त सुयालक स्वर में गई और फरमाइसी लोकगीत अगर हमारे आजक भोरांश कार्यक्रम इति के संपन्न हो। उत्तरायण कार्यक्रम में भोल अपुदगर फिर भेट होल। एल नीरू गोस्वामी के आज्ञा दियो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अद
1: हाँ यार।
2: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
2: और दूसरा
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से रोजगार परक विषय टूरिज्म की क्लास से शुरू की जाएंगी। और चंपावत जिले में साइकिल पखवाड़े के तहत आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री धामी ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के वार्षिक सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना सुशासन की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन की थीम समावेशिता, न्याय तक आसान पहुंच तथा न्यायिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है, जो विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से भी जुड़ी हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जज एसोसिएशन की कल्याण निधि के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा भी की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत और नवीन तकनीकों को अपनाने की सोच ही कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। श्री जोशी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के संतुलन एवं कम से कम उपयोग का आग्रह करते हुए कहा कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए नियमित मृदा परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों, आधुनिक कृषि पद्धतियों एवं जैविक उपायों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए प्रेरित किया। श्री जोशी ने कहा कि मिट्टी का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना समय की आवश्यकता है।
9: जो उपजाऊ क्षमता है वो समाप्त होती जा रही है, कई प्रकार के असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोग उससे हो रहे हैं। किसानों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चल रहा है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड में मैंने देहरादून से की थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्मोड़ा में इसकी शुरुआत की, आज सुबह मैंने काशीपुर में किया है, कल मैं टिहरी जाऊंगा। क्योंकि देखने में आ रहा है कि ज़्यादा फसल लेने के उसमें, और दूसरा जो एक भ्रांति उनके अंदर है कि हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो उपज कम होगी, एक भ्रांति किसानों के अंदर है, उसको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है।
8: राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने 2 दिवसीय पिथौरागढ़ जिले भ्रमण के दौरान कल मुनस्यारी में जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में संचालित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने राज्यपाल को मुनस्यारी, धारचूला

0: एवं जिले के अन्य क्षेत्रों में संचालित महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों, सड़क संपर्क परियोजनाओं आदि, कैलाश यात्रा की व्यवस्थाओं, होमस्टे विकास कार्यक्रमों, सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन संवर्धन, वाइब्रेंट विलेज योजना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। जिले में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अल्मोड़ा के युवा सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए। कल शाम ऑपरेशन शेरावाली के दौरान वे तलाशी दल का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में संतुलन बिगड़ने से वे गहरी खाई में गिर गए थे। साथ ही जवानों ने तत्काल बचाव अभियान चलाया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनका निधन हो गया। अथर्बनी पांडेखोला निवासी और मूल रूप से बाड़ी बगवाली पोखर के रहने वाले बीरेश्वर गोस्वामी 5 असम रेजिमेंट में तैनात थे। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने देश सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कल से प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के समस्त मतदाताओं से बूथ लेवल एजेंट्स को सहयोग करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ के पास गणना फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी 7 जुलाई तक एक माह के समय में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के गणना फॉर्मों को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा।
1: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने टिहरी के बादशाही थौल में स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में करीब 21 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रांजिट हॉस्टल, मुख्य द्वार एवं आवासों का लोकार्पण किया। साथ ही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 3 करोड़ की लागत से निर्मित आईटी लैब का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से रोजगार परक विषय टूरिज्म की क्लासें शुरू की जाएंगी।
2: विद्यालय का जो हमारा यहाँ पे एक हमने ट्रांजिस्ट हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है। दूसरा जो हमारे आवासीय कैंपस है वहाँ पे, चाहे पूर्व सचिव का आवास हो, हमारे रजिस्ट्रार का आवास हो, हमारे वित्त अधिकारी का आवास था, उसका भी आज यहाँ पे लोकार्पण किया गया। साथ में इंटर कॉलेज का भवन का भी हमने उद्घाटन किया है। और आज हमारे विधायक जी ने एक डिमांड की थी कि यहाँ पे बच्चे टूरिज्म करना चाहते हैं विश्वविद्यालय, तो इसी साल से हम वहाँ पे टूरिज्म की क्लासेस भी शुरू करेंगे।
0: चंपावत जिले में साइकिल पखवाड़े के तहत आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसबी, बीआरओ और खेल विभाग के सहयोग से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। लोहाघाट स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान साइकिल रैली, पदयात्रा, जन जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण और दैनिक जीवन में साइकिल के अधिकाधिक उपयोग का संकल्प लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रभारी एवं एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा ने कहा कि संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण तथा साइकिल उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
3: संडे ऑन साइकिल के तहत खेलो इंडिया सेंटर छमिन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मेघा जनजागरण साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमने लगभग 2 किलोमीटर का साइकिल रैली निकाली। आज बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ पे प्रतिभागी भी आई, हमारे लोहाघाट के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय से, स्कूलों से, कॉलेजों से।
0: कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और बच्चों ने भाग लिया और उन्होंने आम जन से सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल का उपयोग करने की अपील की।
4: मैं खेलो इंडिया साइकिल सेंटर का एथलीट हूँ। हमने 2 किलोमीटर की रैली भी करी और हमने लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि हमें साइकिल से क्या क्या फायदे होते हैं। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग और सम्मानित लोग भी आए थे।
5: मंत्रालय आज हम संडे ट्रिप के तहत हम खेतीकान से लोहाघाट गए थे। हमारा कहना है कि देश के हर नागरिक को हर हफ्ते में एक बार साइकिलिंग करनी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

0: मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर एस एन पांडे ने अपने दो दिवसीय पिथौरागढ़ जिले के भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों, आधारभूत संरचना परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का गहन परीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से रोजगार परक विषय टूरिज्म की क्लास शुरू की जाएंगी और चंपावत जिले में साइकिल पखवाड़े के तहत आज संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 14.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। आज के भक्ति संगीत कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अनुपमा देशपांडे के गाए इस भक्ति गीत के साथ।

अनुपमा देशपांडे के स्वर में अभी आपने भक्ति वंदन सुना। भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आइए भक्ति संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भक्ति वंदन।

शर्मा बंधुओं के गाए इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 14.8 MHz पर हम आकाशवाणी कर्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 वहीं कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटिन गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी संजना अवस्थी। पहली मुख्य समाचार। देहरादून मा उत्तराखंड न्यायाधीश संघ का वार्षिक सम्मेलन को आयोजन वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोल प्रत्येक नागरिक ते त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुंचाउन सरकार की प्राथमिकता छ। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों ते बेहतर बनौने का वास्ता सभी शिक्षकों ते गंभीरता से काम करने को आह्वान करी। चंपावत में साइकिल पखवाड़ा का तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजन हुए पर्यावरण संरक्षण ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को संदेश दिने और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का अवसर पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जानकारी दी गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोल की प्रत्येक नागरिक ते त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुंचाणु सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल छ। उन बोल की न्याय व्यवस्था ते अधिक समावेशी सुलभ पारदर्शी और प्रभावी बनौन सुशासन की मूल भावना छ। उन आज देहरादून का एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तराखंड न्यायाधीश संघ को वार्षिक सम्मेलन जुडिशियम 2.0 इंक्लूजन एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग ते संबोधित करी। मुख्यमंत्री बोल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश की न्यायिक व्यवस्था ते आधुनिक और तकनीक सक्षम बनौन का वास्ता अनेक कदम उठाए गई। यहाँ से प्रेरित हुए कि राज्य सरकार भी न्यायालयों को आधारभूत ढांचा ते मजबूत कन और व्यवस्थाओं ते सुदृढ़ बनौन का वास्ता लगातार कार्य करने छ।
1: न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए पारदर्शी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ एक ओर अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को समाप्त कर देश में भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। यही नहीं, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने न्याय मिलने की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। हम राज्य के अंदर भी न्याय व्यवस्था को मजबूत आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम न केवल न्यायालयों के बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहे हैं बल्कि राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई की प्रणालियों को भी बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं।
0: ये अवसर में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जज एसोसिएशन के कल्याण निधि का वास्ता 5 करोड़ रुपयों की धनराशि देने की घोषणा भी करी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों ते बेहतर बनौने का वास्ता सभी शिक्षकों ते गंभीरता से काम करने को आह्वान करी। उन बोल की विद्यार्थियों ते बेहतर भविष्य का वास्ता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनो आवश्यक छ। टिहरी जिला का बादशाही थौल स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. रावत ने महाविद्यालय का प्राचार्य और शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को बोल। उन ई बात पर

0: जोर दिनी कि शिक्षण संस्थानों को उद्देश्य विद्यार्थियों ते बेहतर शिक्षा प्रदान करी ते तवे विभिन्न प्रतिस्पर्धी और अन्य क्षेत्रों में सफल बनाणो वयूं चेंदू। ये अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री ने लगभग 21 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित ट्रांजिट हॉस्टल मुख्य द्वार और आवासों को लोकार्पण करी। ये का अलावा उन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 3 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार आईटी लैब को भी उद्घाटन करी। डॉक्टर रावत ने बताई कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में ये वर्ष से रोजगार परक विषय पर्यटन अध्ययन की कक्षा शुरू की जाएगी, जैसे विद्यार्थियों ते रोजगार को बेहतर अवसर मिल सकलू। देहरादून मसूरी और चारधाम यात्रा का दौरान यातायात व्यवस्था तय सुचारू बनाओ रखना का वास्ता पुलिस ने व्यापक प्रबंधन कराया छ। देहरादून का सर्किल अधिकारी ट्रैफिक अंकित कंडारी ने बताई कि बढ़दू यातायात दबाव तय देखते हुए पूरा देहरादून तय 4 सुपर जोन में विभाजित किए गए।
1: समर वेकेशन से ऊपर से वीकेंड का टाइम भी है, तो पहले वीकेंड में भी देखा गया कि जब से छुट्टियां पड़ी हैं तो मसूरी में काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में देहरादून और मसूरी का ट्रैफिक प्लस चारधाम का ट्रैफिक को देखते हुए पूरे देहरादून को हमने 4 सुपर जोन, 10 जोन तथा 19 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें सभी जोन सुपर जोन पर COs, इंस्पेक्टर्स और SIs प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं तथा सभी मुख्य चौराहों, तिराहों तथा मुख्य कटों पर हमारे द्वारा ड्यूटीज़ को लगाया गया है, जिसमें सुबह तथा शाम की शिफ्ट में 2 शिफ्ट में लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं और तथा पार्किंग व्यवस्था है तो पार्किंग स्थल चेक किए गए हैं तथा भीड़ के दबाव देखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत डाइवर्जन मार्ग भी देखे गए हैं।
0: श्री कंडारी ने पर्यटकों और आम नागरिकों से अपील करी कि वो अपना गाड़ी तय निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करी और यातायात नियमों को पालन करी। उन बताई कि यातायात के निगरानी और प्रबंधक का वास्ता देहरादून तथा मसूरी में ड्रोन टीमों तय भी तैनात किए गए, जैसे भीड़भाड़ वाला क्षेत्रों में लगातार नजर रखी जा सके।
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: चंपावत जिला में साइकिल पखवाड़ा का तहत आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजन हुए। ये दौरान SSB, BRO और खेल विभाग का सहयोग से लोगों ते पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का वास्ता प्रेरित किए गए। लोहाघाट स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का दौरान साइकिल रैली, पदयात्रा, जन जागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करी। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण और दैनिक जीवन में साइकिल का अधिकाधिक उपयोग को संकल्प लिनी। स्पोर्ट्स स्टेडियम का प्रभारी और एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा बॉयल की संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का माध्यम से लोगों ते पर्यावरण संरक्षण और साइकिल उपयोग का प्रति जागरूक किए जाणु छ।
3: संडे ऑन साइकिल के तहत खेलो इंडिया सेंटर छमिन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मेघा जनजागरण साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमने लगभग 2 किलोमीटर का साइकिल रैली निकाली। आज बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ पे प्रतिभागी भी आए हमारे लोहाघाट के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय से, स्कूलों से, कॉलेजों से।
0: कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और बच्चों ने भाग लेने और उन आम जनसी सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल को उपयोग करने की अपील करी।
4: यशदेव है, मैं खेलो इंडिया साइंस सेंटर का एथलीट हूँ। हमने 2 किलोमीटर की रैली भी करी और हमने लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि हमें साइकिल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग और सम्मानित लोग भी आए थे।
5: मंत्रालय आज हम संडे ट्रिप के तहत हम खेतीकान से लोहाघाट गए थे। हमारा यह कहना है कि देश के हर नागरिक को हर हफ्ते में एक बार साइकिलिंग करनी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
0: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का अवसर पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर को आयोजन हुए। कार्यक्रम में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और खाद्य व्यवसाय से जुड़िया संचालकों तय खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जानकारी दी गई। ये दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग का अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गिन बॉयल की सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त भोजन लोगों का स्वास्थ्य लिए बेहद जरूरी छ। उन खाद्य पदार्थों को निर्माण, भंडारण और वितरण में निर्धारित स्वच्छता मानकों को पालन करने पर जोर देनी।
6: सबको ये बताया गया है कि सभी को हाइजेनिक फूड प्रोवाइड किया जाए और वर्कशॉप के तहत हम चाहते हैं कि जितने भी वेंडर्स हैं सभी को हाइजेनिक खाना परोसें, क्योंकि खाना ही जो है आपके दवाई का काम भी करता है और इसको अगर जब तक शुद्ध खाना नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी जो है आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसके लिए हमने एक संदेश इनको भी दिया है कि आप लोग जो भी परोसें वो स्वच्छ और सही परोसें।

0: कार्यक्रममा होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से स्वच्छ वातावरणमा भोजन तैयार करी ग्राहकों तय उपलब्ध कराना की अपील भी करी। ये दौरान विभाग का अधिकारियों ने स्पष्ट करी कि खाद्य सुरक्षा मानकों को उल्लंघन करने वालों प्रतिष्ठानों का खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाली। साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने को आग्रह भी करी। रुद्रप्रयाग जिला में मॉनसून का दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा का बाटा में संभावित भूस्खलन की घटनाओं से निपटने का वास्ता प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाओं करी छ। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताई कि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम तैनात छ और कैमरा का माध्यम से लगातार निगरानी होनी छ। अंत में मुख्य समाचार एकदम फिर। देहरादून में उत्तराखंड न्यायाधीश संघ का वार्षिक सम्मेलन को आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोल प्रत्येक नागरिक तय त्वरित और निष्पक्ष न्याय पहुंचाउन सरकार की प्राथमिकता छ। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों तय बेहतर बनौन का वास्ता सभी शिक्षकों तय गंभीरता से काम करने को आह्वान करी। चंपावत में साइकिल पखवाड़ा का तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजन वे पर्यावरण संरक्षण ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को संदेश दिनी और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का अवसर पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की जानकारी दिए गए। ये का साथ है गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: FM 14.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नेपाली लोकगीत और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं गोरेशा शंकर के गाए इस नेपाली लोकगीत के साथ।

प्रादेशिक लोकगीतों का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नेपाली लोकगीत। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मंगल सिंह घिमरी का गाया ये नेपाली लोकगीत।

0: मंगल सिंह घिमरी के गाए इसी नेपाली लोकगीत के साथ आज का प्रादेशिक लोकगीतों का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा।
2: कृषक भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कार्की कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कंपोस्ट निर्माण की उन्नत तकनीकी। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार। डॉक्टर साहब, कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, फसलों के लिए पोषक तत्व जैसे कि काफ़ी जरूरी होते हैं, कृपया इस विषय पर एक थोड़ा सा प्रकाश यदि आप डालना चाहें।
3: पोषक तत्वों की फसलों में के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है
2: जी।
3: अगर हम पोषक तत्वों को देखें, अगर हम पौधों को देखें या फसलों को देखें
2: जी,
3: तो फसलें भूमि से पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं और ये पोषक तत्व भूमि से पानी के अवशोषण के साथ पौधे में जाते हैं और पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश में अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं
2: जी।
3: पौधे की जो आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों को हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं
2: जी।
3: जैसे हम जिन्हें हम तीन मुख्यतः वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे कि मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व वो तो पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को ज़्यादा होती है, जिसमें नाइट्रोजन, जिसे हम नाइट्रोजन भी कहते हैं, फॉस्फोरस और पोटाश यानी पोटेशियम
2: जी,
3: ये तीन पोषक तत्व आते हैं। इसके उपरांत कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी थोड़ा सा इससे कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसे हम गौण पोषक तत्व कहते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर यानी कि गंधक
2: जी,
3: तो ये पोषक तत्व इसके अंतर्गत आते हैं
2: जी।
3: और अंत में जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें कि पौधों को जिनकी आवश्यकता थोड़ा सा कम होती है, सबसे कम इन्हीं की आवश्यकता होती है, हालांकि इनका जो पौधों में कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है
2: जी।
3: और इनमें जो जो तत्वों की बात करें तो जैसे कि लोहा, जिसे हम आयरन बोलते हैं
2: जी,
3: जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेन और निकल इत्यादि जो होते हैं ये आते हैं, बोरॉन भी इन्हीं में सम्मिलित होता है।
2: डॉक्टर साहब, जैविक खाद से क्या अभिप्राय है और इसका जो महत्व भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा आजकल खेत बचाओ अभियान जारी किया जा रहा है और उसके अंतर्गत जैविक खादों का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है
2: जी।
3: जैविक खाद से या कंपोस्ट से हम जो अगर तात्पर्य देखें तो इन्हें परिभाषित करें तो ये एक प्रकार की खाद बनाने की प्रक्रिया है, जिससे हम कृषक अपने ही जो प्रक्षेत्र है वहाँ उपस्थित जो जैविक जो अवशेष हैं उनके माध्यम से खाद बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसे जीवांश खाद भी कहते हैं, कंपोस्ट खाद भी कहते हैं, कार्बनिक खाद भी कहा जाता है
2: जी।
3: और ये जो अपघटन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है, इसमें जैसे कि विभिन्न प्रकार के अवशेषों को है तो उन्हें जलाने या वेस्ट ऐसे ही रखने के बजाय उनका उपयोग करके एक परिमार्जित खाद के रूप में इसे बनाया जाता है, तो इसे ही हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। और इसका महत्व जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि खादों का जो खासकर जो जैविक जो जो उर्वरक हैं उनका असंतुलित प्रयोग होता जा रहा है किसानों के द्वारा, और ये एक समस्या भी बनी हुई है। और भारत के अगर हम देखें तो विदेशों से ही ज़्यादातर हमारी खाद आती है और वो खाद अभी आ नहीं रही है, और आ भी रही है तो हमें उसे दुगना मूल्य देके उसको लाना पड़ रहा है
2: जी।
3: तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारा जो है जैविक खादों का जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे हो सकती है, और इसका महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का स्रोत रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन जैसे कि मैंने बताया जो मुख्य पोषक तत्व वो भी होते हैं, गौण पोषक तत्व भी होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व, तीनों ही प्रकार के पोषक तत्व एक साथ ही होते हैं
2: जी।
3: इसके विपरीत जो अगर हम जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनमें कुछ ही पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि अगर हम यूरिया की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन ही रहता है
2: जी।
3: डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक डाई करके एक जो फर्टिलाइजर आता है उसमें दो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, और MOP जैसे कि म्यूरेट ऑफ पोटास होता है तो उसमें एक ही पोषक तत्व होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो तीन पोषक तत्व होते हैं। तो जो जैविक खाद है ये एक भरपूर जो स्रोत है, कंपोस्ट है,

0: पोषक तत्वों का एक भरपूर स्रोत के रूप में इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। और ये पौधे के जो है विधि विकास में सहायक है और मृदा के भी भौतिक और रासायनिक जैविक गुणों को ही को ये सुधार करता है।
1: डॉक्टर साहब, अपघटन प्रक्रिया की प्रकृति के अनुसार जो जैविक खाद है की जो श्रेणिया है उसके विषय में भी यदि थोड़ा प्रकाश आप डालना चाहें।
0: देखिए, कंपोस्टिंग या जैविक खाद बनाने की जो प्रक्रिया है दो प्रकार से संपन्न की जा सकती है। एक प्रक्रिया में जैसे की अवायवी कंपोस्टिंग और दूसरी प्रक्रिया है वायवी कंपोस्टिंग। अवायवी कंपोस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो अपघटन की प्रक्रिया है वो है वायु यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपूर्ण की जाती है।
1: जी,
0: इस पद्धति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो अवायवी सूक्ष्म जीव होते हैं और वही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके जो विपरीत है एरोबिक कंपोस्टिंग यानी कि वायवी कंपोस्टिंग, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है पर्याप्त होनी आवश्यक होती है। इस प्रक्रिया में जो एरोबिक सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको अपनी गतिविधि करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है वो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके कंपोस्टिंग का निर्माण करते हैं, कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार बनी हुई जो वायु जो प्रक्रिया से बनी कंपोस्ट होती है वह कृषि उत्पादन के लिए थोड़ा सा अधिक उपयोगी मानी जाती है।
1: डॉक्टर, कंपोस्ट की जो विभिन्न विधियां हैं उसके बारे में भी यदि आप हमारे खासकर बंधुओं को जानकारी दें तो।
0: देखिए, कंपोस्टिंग की प्रक्रिया जो है विभिन्न प्रकार की इसमें तरीके हैं, विधियां हैं और किसान अपनी सुविधा के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण है किसान अपनी सुविधा के अनुसार इन विधियों को अपनाए
1: जी
0: और उनका उपयोग करें। अगर हम विभिन्न विधियों की बात करें, किसानों की बात करें, तो गड्ढे की खाद जैसे की है जिसे हम अवायवी खाद कहते हैं वो हो सकती है, और इसकी बनाने की जो कोयम्बटूर विधि है वो हो सकती है, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, एक नाडेप कंपोस्टिंग होती है, एनरिच्ड कंपोस्टिंग होती है, और इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्टिंग, ये कुछ उसकी जो विधियां हैं वो होती हैं जिनके द्वारा कंपोस्ट बनाया जा सके। अगर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को किसानों को अगर थोड़ा बड़े स्तर पे करना है तो उसके लिए जो होती है विंड्रो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग यानी कि जिसमें लंबी लंबी विंड्रोस बनाई जाती हैं तो उसका उपयोग इसमें किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, गड्ढे की खाद या अवायवी खाद या कंपोस्ट के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा जानकारी दीजिए।
0: जैसे गड्ढे की खाद जैसे है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान आमतौर पर इसी विधि से खाद बनाते हैं। इसे जो पिट मेथड यानी कि गड्ढे की खाद बनाने की जो तरीका है इसे पिट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग भी कहा जाता है
1: जी।
0: और ये मुख्यतः अवायवी प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम एक बार गड्ढे में जो हमारा कोई भी जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे खेतों में अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं जैसे कि फसलों के अवशेष हैं
1: जी,
0: हमारे जो खरपतवार हैं उनके अवशेष हैं, उनका भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसमें ध्यान ये देना चाहिए कि जो हमारे खरपतवार हैं उसमें जो पौधों बीजों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर हम बीजों का निर्माण हुए खरपतवारों का इस्तेमाल इसमें करते हैं तो जो हमारा जो खाद है उसमें जो खरपतवार के बीज है वो सम्मिलित हो जाएंगे और उनको अगर हम खेतों में डालते हैं तो वहीं से वो सीधे खेतों में जाकर हमारे खेतों में खरपतवारों के द्वारा हानि को बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही जैसे अन्य अवशिष्ट पदार्थ जैसे गाय का गोबर है या बकरी का जो गोबर है या मैनन है उसको लेके भी किए जा सकती है। तो जो गड्ढे की प्रक्रिया है तो इसमें किसान भाई जैसे कुछ क्षेत्रों में गड्ढा बनाने की प्रक्रिया लेते हैं तो इसमें गड्ढे की जो अगर रखनी है गहराई तो करीबन वो अपना 75.75 यानी कि 1 मीटर के आसपास की वो गहराई रख सकते हैं या 1 मीटर, आधा मीटर से 1 मीटर के मध्य जो होगा इतनी गहराई रख सकते हैं और ज़्यादा गहराई इसमें ना रखें तो ठीक है। और इसमें जो लंबाई और चौड़ाई है वो अपनी आवश्यकता अनुसार यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार किसान भाई रख सकते हैं। और गड्ढा भरने की प्रक्रिया जो है इसमें भी किसान, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारे जो किसान हैं इसमें पहले गड्ढे में लेयरिंग के माध्यम से यानी कि उन्हें क्या करना है कि लेयर करनी है यानी कि जो परत दर परत जो आपके अवशेष हैं उसको भरना है और उसके उपरांत डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो इसमें होती है।
1: डॉक्टर साहब, यदि हमारे काशकार बंधु नाडे विधि के द्वारा कोई खाद का निर्माण करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं?
0: नाडे विधि एक वायवी विधि है जिसके माध्यम से कंपोस्टिंग की जा सकती है
1: जी।
0: यह एक विधि जो है ये किसान जिनका नाम था एनडी पंडारी पांडे
1: जी,
0: ये महाराष्ट्र में किसान थे जिन्होंने अपनी विधि से इसे निर्मित किया था। तो ये एक तरीके से जो वायवी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है इसमें एक विशेष रूप से टंके यानी कि एक संरचना का निर्माण किया जाता है जो आयताकार संरचना होती है और इस संरचना का निर्माण जो है पक्की ईंटों के माध्यम से भी किया जा सकता है, पक्की ईंट, सीमेंट इत्यादि के माध्यम से या फिर जो कच्ची जो ईंटें हैं, पत्थर या मिट्टी है उसके माध्यम से भी इसको बनाया जा सकता है। हालांकि जो टैंक है, जो टंके का निर्माण है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस

0: का जो अनुपात है कम से कम जो है तो उसके लिए करीबन 3 मीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई करीबन 1.5 से 2 मीटर के आसपास होनी चाहिए और करीबन 1 मीटर के आसपास इसकी जो है ऊंचाई ये होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक स्थायी और अस्थायी और स्थायी संरचना बनाकर इसका निर्माण किया जा सकता है। और जो इसकी भरने की जो प्रक्रिया भी है वो भी मैं एक साथ आपको बताता हूँ। तो भरने की प्रक्रिया जो है इसमें जो हमारी जो विभिन्न प्रकार के अवशेष है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1400 से लेके 1500 किलोग्राम जो मैंने इस टंके का आकार बताया तो उसमें इतनी मात्रा जो हमारी जो भी हमारा अवशिष्ट है जैसे कि घास हैं, पत्ते हैं, खरपतवार हैं, फसलों के अवशेष हैं, कोई भी हरी खाद वाली फसल के अवशेष हैं, कुछ भी अवशेष हमें मिल रहे हैं तो इतनी मात्रा ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गोबर की मात्रा जो 100 केजी के आसपास इसमें रखी जाती है और सूखी छनी हुई मिट्टी की लगभग 1500 केजी की मात्रा और लगभग 1500 से 2000 लीटर पानी इसमें रखा जाता है। तो ये इसकी जो प्रक्रिया है इसपे किया जा सकता है। और इसमें जो मुख्य बात यह है कि इसको गड्ढा भरने की प्रक्रिया है तो उसमें भी जैसे मैंने जितने भी अवशेष बताए तो इन अवशेषों की लगभग 15 सेंटीमीटर की परत लगाई जाती है
1: जी।
0: तो सबसे जो पहली परत लगाई जाती है उसमें जैसे कि मैंने पहले जो होती है फसल अवशेषों की जो पौधों के अवशेषों की है उनकी 15 सेंटीमीटर मोटाई की परत बिछाई जाती है
1: जी।
0: उसके बाद गोबर के घोल की जैसे कि 100 की गोबर घोल आपको 150 लीटर पानी में मिला के उसको घोल बना के उसकी परत लगाई जाती है। और इसी प्रकार से उसके बाद सूखी मिट्टी की जैसे कि 50 से 60 किलोग्राम की मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार से परत चढ़ाते चढ़ाते चलाते जब ये गड्ढे से 1 फीट ऊपर जाती है तो इसको सील कर दिया जाता है गोबर और पानी के मिक्सचर जिसे हम लिपाई कहते हैं लिपाई कर दी जाती है ताकि ये बंद हो जाए। इस प्रकार से इसमें एक प्रक्रिया कंपोस्टिंग की जाती है। और इसमें जो गड्ढे का निर्माण जो होता है या फिर टंकी का निर्माण होता है इसमें नीचे की साइड में कुछ कुछ छिद्र बने होते हैं जैसे कि 5-5 इंच के या 4-4 इंच या इस प्रकार से, तो जिसके माध्यम से जो होता है जो वायु का जो है लगातार मूवमेंट इसमें होता रहता है और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया होती है और करीबन 5 से 7 महीने में ये प्रक्रिया पूरी होती है
1: जी। डॉक्टर, वर्मी कंपोस्ट के लिए जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विषय में भी हमारे खासकर बंधु आपसे थोड़ा जानकारी जानना चाहेंगे।
0: ये वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया जो है ये मुख्यतः जो केंचुए हैं उनके माध्यम से संपन्न की जाती है
1: जी।
0: तो हालांकि जो इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जैसे कि रेड वॉर्म जिसे हम बोलते हैं, इस आइसिनिया फोटीडा इस प्रजाति का उपयोग किया जाता है, यूरेलिस यूजेनी का प्रयोग किया जाता है। तो जो मुख्य प्रक्रिया है जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वर्मी कंपोस्टिंग की, इसको हम गड्ढे में भी कर सकते हैं या फिर एक जो हमारा जो सतह है भूमि की सतह है उस पर भी किया जा सकता है
1: जी।
0: तो इसमें भी जैसे कि जो मैं पहले बताया था कि हमें जो बायोमास है जो भी हमारा अवशेष है उसके साथ गोबर को मिलाया जाता है, तो सर्वप्रथम जो हमारी जो 15 से 20 सेंटीमीटर जो परत जो होती है जो भी हमारे पास अवशेष हैं चाहे हमारी फसलों के अवशेष हैं खरपतवारों के अवशेष हैं या हमारी किचन जो रसोई घर से जो कचरा आता है उसको मिला भी सकते हैं
1: जी।
0: तो उसकी 10 से 15 सेंटीमीटर की लेयर बनानी है। उसके बाद इसका लगभग 2 से 3 गुना जो भी हमने भार लिया हमने अवशेषों का जो भी हम भार लेंगे उसका 2 से 3 गुना हमने गोबर की स्लरी डालनी है यानी कि गोबर की जो मात्रा है जैसे हमने 50 केजी लिया तो उसका करीबन 2 गुना या 3 गुना 150 केजी या 100 केजी 50-100 केजी के आसपास जो हम इसमें गोबर की मात्रा लेते हैं और इसको मिला के इसमें स्लरी बना के उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है और साथ ही साथ पानी का भी इसमें छिड़काव किया जाता है। इसी प्रकार से लेयरिंग इसकी कर ली जाती है करीबन 1 मीटर की के आसपास अगर इसकी लेयरिंग बनानी है तो ये इस पर आप कर सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ इसको 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ढक के, यानी कि पहले हमने लेयर बना ली एक ढेरी टाइप की बना ली कंपोस्टिंग पाइल बना लिया उसके बाद उसके ऊपर जो हमारी जो कोई भी अवशेष है उसको जैसे कि फसल अवशेष है या फिर पॉलीथीन है तो उससे इसको ढक लेते हैं और उसको 15 दिन बाद इसकी पलटाई कर ली जाती है। पलटाई करने के बाद 15 से 20 दिन जब होते हैं तो इसमें फिर वर्मी कंपोस्ट जो वर्म होते हैं 1 टन में लगभग 100 केजी के आसपास हम इसे मिलाते हैं और वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होकर रहती है। और इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो मॉइस्चर है यानी कि नमी की मात्रा है ये उपयुक्त होनी चाहिए। नमी की मात्रा का किसान भाई हमारे अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे कि कंपोस्टिंग मिक्सर को अपने हाथ में लें और उससे 2-4 बूंदें पानी की रिसावट हो तो वो एक ठीक अनुपात माना जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कंपोस्टिंग मिक्सर में पानी कम होता है तो कंपोस्टिंग का तापमान बढ़ जाएगा और उसमें केंचुए भी हैं और केंचुए को भी थोड़ा सा मॉइस्चर और नमी चाहिए होती है। तो इन चीज़ों का किसानों को बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें 1-2 बार पलटाई हल्के हाथों से करके और करीबन ये हमारी जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है 90 से 120 दिन में पूरी हो जाती है और किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमारे पास संस्थान के पास वर्मी कंपोस्ट स्टेनर भी है किसान भाई इसका

0: इस्तेमाल करके कंपोस्ट को छान सकते हैं और जो हमारे जो केंचुए हैं उनको अलग कर सकते हैं।
1: कृषक बंधु, यदि आपको कृषि से संबंधित किसी भी अन्य विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से सायं 5:30 तक संस्थान की निःशुल्क दूरभाष संख्या 1800-1800-2311 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि समृद्धि कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन संख्या 2636-01 उत्तराखंड। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार जो हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उपदगड़ में योगिता बिष्ट। मुख्य समाचार। देहरादून उत्तराखंड न्यायाधीश संघक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को हर नागरिक तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पुजान सरकारक प्राथमिकता। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतन उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के भल बढ़ा लीजिए सभी शिक्षकों के गंभीरताल काम करनक लीजिए को। चंपावतम साइकिल पखवाड़क तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित। पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना दी गौ संदेश। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसक मौके पर हरिद्वारम खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविरम खाद्य सुरक्षा और सफाई नियमों जानकारी दी गई। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को कि हर नागरिक तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पुजान सरकारक प्राथमिकताओं में शामिल छू। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था के ज्यादा समावेशी सुलभ पारदर्शी और प्रभावी बना सुशासनक मूल भावना छो। वो आज देहरादून में एक निजी विश्वविद्यालय में हई उत्तराखंड न्यायाधीश संघक वार्षिक सम्मेलन जुडिशियल 2.0 इंक्लूजन एक्सेस एंड स्ट्रेंथनिंग के संबोधित कर छी। मुख्यमंत्री कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देशक न्यायिक व्यवस्था के आधुनिक और तकनीक सक्षम बनाने लीजिए बहुत कदम उठाए जा रही। यह प्रेरित है भी राज्य सरकार ले न्यायालयों के आधारभूत ढांचे के मजबूत करण और व्यवस्थाओं के भल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे।
4: आज देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ एक ओर अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को समाप्त कर देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। यही नहीं, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने न्याय मिलने की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। हम राज्य के अंदर भी न्याय व्यवस्था को मजबूत आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम न केवल न्यायालयों के बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहे हैं बल्कि राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई की प्रणालियों को भी बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं।
3: यह मौके पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड जज एसोसिएशन कल्याण निधि के लिए 5 करोड़ रुपए धनराशि देने की घोषणा ले करी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता और परिणामों के आय भल बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों के गंभीरताल काम करने के लिए को। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भल भविष्य लीजिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जान जरूरी छू। टिहरी जिला बादशाही थौलक श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में हई कार्यक्रम डॉ. रावतल महाविद्यालय प्राचार्य और शिक्षकों हेते शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने लीजिए को। उन्होंने यह बात पर जोर दियो कि शिक्षण संस्थानों को उद्देश्य विद्यार्थियों के भल शिक्षा दिबेर उनके विभिन्न प्रतिस्पर्धी और अन्य क्षेत्रों में सफल बनान होन चैन। यह मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री लगभग 21 करोड़ रुपए लागतल बनी ट्रांजिस हॉस्टल, मुख्य द्वार और आवासों का लोकार्पण करो। यह के अलावा उन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 3 करोड़ रुपए लागतल तैयार IT लैबक लय उद्घाटन करो। डॉक्टर रावतल बता कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में यही साल बटी रोजगार परक विषय पर्यटन अध्ययनक कक्षाएं शुरू करी जाए जैल विद्यार्थियों के रोजगारक बेहतर मौक मिल सको। देहरादून मसूरी और चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था के सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिसल व्यापक प्रबंध कर रही। देहरादूनक सर्किल अधिकारी ट्रैफिक अंकित कंडारील बता कि बढ़ते यातायात दबाव के देखते हुए पूर्व देहरादून के 4

0: सुपर जोनम बाटी जेरो।
1: ऊपर से वीकेंड का टाइम भी है, तो पहले वीकेंड में भी देखा गया कि जब से छुट्टियां पड़ी हैं तो मसूरी में काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में देहरादून और मसूरी का ट्रैफिक प्लस चारधाम का ट्रैफिक को देखते हुए पूरे देहरादून को हमने 4 सुपर जोन, 10 जोन तथा 19 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें सभी जोन सुपर जोन पर सीओज, इंस्पेक्टर्स और एसआई प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं तथा सभी मुख्य चौराहों, तिराहों तथा मुख्य कटों पर हमारे द्वारा ड्यूटीज को लगाया गया है, जिसमें सुबह तथा शाम की शिफ्ट में 2 शिफ्ट में लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं और तथा पार्किंग व्यवस्था हेतु पार्किंग स्थल चेक किए गए हैं तथा भीड़ के दबाव देखते हुए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत डायवर्जन मार्ग भी देखे गए हैं।
0: श्री कंडारिल पर्यटकों और आम नागरिकों हेते अपील करी कि अपन गाड़ियों के सिर्फ निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ठाड़ करो और यातायात नियमों का पालन करो। उन्होंने बताया कि यातायातक निगरानी और प्रबंधनक लीजी देहरादून और मसूरी में ड्रोन टीमों के लिए तैनात करी जेरो, जेल भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर लगातार नजर रखी जा सको।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन अपू लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुन लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपू लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: चंपावत जिले में साइकिल पखवाड़क तहत आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन करी गो। एक दौरान एसएसबी, बीआरओ और खेल विभागक सहयोग लोगों के पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना के लिए प्रेरित करी गो। लोहाघाट स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम हई कार्यक्रम दौरान साइकिल रैली, पदयात्रा, जनजागरूकता रैली और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करी गई। प्रतिभागियों पर्यावरण संरक्षण और दैनिक जीवन में साइकिलक ज्यादा है भी ज्यादा उपयोग करना संकल्प लियो। स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रभारी और एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणाल को की संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम माध्यमल मैसू के पर्यावरण संरक्षण और साइकिलक इस्तेमालक लीजिए जागरूक करी जा रो।
3: संडे ऑन साइकिल के तहत खेलो इंडिया सेंटर छमिन्या स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज मेघा जनजागरण साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमने लगभग 2 किलोमीटर का साइकिल रैली निकाली। आज बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ पे प्रतिभागी भी आए, हमारे लोहाघाट के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय से, स्कूलों से, कॉलेजों से।
0: कार्यक्रम में बहुत संख्या में स्थानीय लोगों और नांतिनुल भाग लियो और उन्होंने आम जनों हेते हफ्तम कम से कम एक दिन साइकिल का उपयोग करने का अपील करी।
4: मैं खेलो इंडिया साइकिल सेंटर का एथलीट हूँ। हमने 2 किलोमीटर की रैली भी करी और हमने लोगों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि हमें साइकिल से क्या क्या फायदे होते हैं। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग और सम्मानित लोग भी आए थे।
5: मंत्रालय आज हम संडे ट्रिप के तहत हम खेतिकान से लोहाघाट गए थे। हमारा यह कहना है कि देश के हर नागरिक को हर हफ्ते में एक बार साइकिलिंग करनी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
0: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसक मौक पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन करी गो। कार्यक्रम में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और खाद्य व्यवसाय हेबे जुड़ी संचालकों के खाद्य सुरक्षा और सफाई नियमों की जानकारी दी गई। एक दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गील को की सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त भोजन मैसू को स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी छू। उन्होंने खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और वितरण निर्धारित सफाई नियमों के पालन करण पर जोर दियो।
6: सभी ऑफिसर्स हैं, सबको ये बताया गया है कि सभी को हाइजेनिक फूड प्रोवाइड किया जाए और वर्कशॉप के तहत हम चाहते हैं कि जितने भी वेंडर्स हैं सभी को हाइजेनिक खाना परोसे, क्योंकि खाना ही जो है आपके दवाई का काम भी करता है और इसको अगर जब तक शुद्ध खाना नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी जो है आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसके लिए हमने एक संदेश इनको भी दिया है कि आप लोग जो भी परोसें वो स्वच्छ और सही परोसें।
0: कार्यक्रम होटल और रेस्टोरेंट संचालकों हेते साफ वातावरण में खाना तैयार कर बेर ग्राहकों के उपलब्ध कराने का अपील करी गई। विभागक अधिकारियों ने स्पष्ट करो कि खाद्य सुरक्षा मानकों को उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करी जाए। एक दगड़ सभी खाद्य कारोबारियों हेते खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य रूपल कराने के लिए आग्रह कर रो। रुद्रप्रयाग जिले में मानसून के दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा मार्ग पर संभावित भूस्खलन घटनाओं हेते निपटने के लिए प्रशासनल व्यापक व्यवस्थाएं कर रही। जिलाधिकारी विशाल मिश्राल बता कि संवेदनशील इलाकों में प्रशासन और आपदा प्रबंधनक टीम तैनात छी और कैमरों के माध्यम लगातार निगरानी करी जा रही।
7: हमारी टीमें तैनात है, कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। जब कहीं किसी प्रकार की किसी लैंडस्लाइड की स्थिति होती है लोगों को आगाह करके सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। भारी बारिश का अलर्ट आता है तो एडवांस में लोगों को अवगत करा दिया जाता है हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स तैनात हैं किसी भी तरीके की चीज़ें से निपटने के लिए।

0: और जो डेंजर जोन है वहाँ पर हम लोगों ने साइनेजेस और बैनर भी लगाए हैं लोगों को आगाह करने के लिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पर कुछ लोग अनजान रास्तों पर चले जाते हैं, उन रास्तों पर बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाई जा रही है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है।
1: प्रशासन यात्रियों हते मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करण और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रा करने का अपील कर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। देहरादून में उत्तराखंड न्यायाधीश संघक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को हर नागरिक तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय पुजान सरकारक प्राथमिकता। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के भल बनाना के लिए सभी शिक्षकों के गंभीरताल काम करने के लिए को चंपावतम साइकिल पखवाड़क तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित। पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने दी गो संदेश और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर में खाद्य सुरक्षा और सफाई नियमों की जानकारी दी गई। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह अंक समाप्त हो। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं पिया का घर फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: It's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your fronts today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
2: आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया महबूबा फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

महबूबा फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे लीजिए पेश है मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सबरस प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू का गाया ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: Enjoy amazing benefits up to Rs. 25,000. Offer valid till 30th June.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry! Offers for a limited time only. TNC applies.

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
4: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
6: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to ₹80,000. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena.
7: सबरस प्रोग्राम के समापन में आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का कलाम। फनकार है उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की गाई इसी गज़ल के साथ आज का सबरस प्रोग्राम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 14.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओ। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों में जो खास खबरें रखी हैं उनके बारे में हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताएंगे। तो जो आज की हेडलाइंस हैं उन पर नजर डालते हैं। अलेक्जेंडर ज़वरेव और फ्लेवियो कोबोली के बीच फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स फाइनल जारी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। भारत ने उलान बटोर ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल खिताब जीता। फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से पराजित किया। भारत ने अफगानिस्तान के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पकड़ और मजबूत की। पहली पारी के आधार पर भारत अब भी 451 रन आगे। और संडे ऑन साइकिल के 77वें संस्करण का देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजन। खेल, सिनेमा और राजनीति की दिग्गज हस्तियां शामिल। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ज़वरेव अपने करियर का 4th और कोबोली अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे हैं। ताजा समाचार मिलने तक ज़वरेव ने पहला सेट 6-1 से जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चवालिंस्का को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
1: 19 वर्षीय मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में माया चवालिंस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसी के साथ 8वीं वरीयता प्राप्त रूस की खिलाड़ी साल 1992 में मोनिका सेलेस के लगातार 3रा खिताब जीतने के बाद से पेरिस में सबसे युवा महिला सिंगल्स चैंपियन बन गई हैं। स्टेड रोलैंड गैरोस में 1 घंटे 22 मिनट तक चले मुकाबले में इस युवा खिलाड़ी ने 6-3, 6-2 से बाजी मारी। एंड्रीवा ने पूरे खेल में शानदार संयम दिखाया जो उनके खेल की पहचान बन गया। उन्होंने लगातार 9 गेम जीतकर मैच पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया। कड़े मुकाबले वाले शुरुआती सेट से आगे बढ़कर उन्होंने 6-3, 5-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने युवा करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता और फ्रेंच ओपन के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जीत के बाद एंड्रीवा ने कहा कि इस टूर्नामेंट को जीतना हमेशा से उनका सपना रहा है।
2: Congrats to Maya for these amazing 3 weeks, passing through qualis, winning so many matches, beating so many great players. Congrats to your team as well. You're a very tricky opponent. I wouldn't want to play against you one more time. So I wish you the best of luck for the rest of the season and hope we play many, many more finals together in the future. I want to thank myself for believing in myself, always giving my 100%, even when it's tough.
1: जीत के बाद भावुक एंड्रीवा जश्न में कोर्ट पर गिर पड़ी और फिर अपनी कोच कोंचिता मार्टिनेज को गले लगाया। पूर्व वर्ल्ड नंबर 2 और 1994 की विंबलडन चैंपियन मार्टिनेज ने एंड्रीवा के खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात करते हैं कुश्ती की। मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के ओसिम जान दस्तान बेक और विक्की ने 97 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया के गंग खुयान गन बटेर को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारत ने 7 वर्ष बाद सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। गोवा के मडगांव में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर 6ठी बार इस खिताब पर कब्जा किया। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
3: भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 7 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में

0: हुए फाइनल में भारतीय टीम ने आत्मविश्वास से भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को खेल के हर मोर्चे पर शिकस्त दी। मैच के 42वें मिनट में प्यारी खाखा ने पहला गोल करते हुए भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ के अंतिम क्षणों में बांग्लादेश की ऋतुपूर्णा चकमा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ के शुरू होने के सिर्फ 40 सेकंड ही हुए थे कि भारत की सनफीदा नोंगरम ने ब्लू टाइग्रेस को फिर से बढ़त पर ला दिया। इसके बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लिंडा कॉम सर्टो ने 82वें मिनट में गोल करके मेजबान भारत की जीत पक्की कर दी। इसके बाद जैसे ही खेल समाप्ति की सीटी बजी, भारतीय टीम और उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। पूरे टूर्नामेंट में प्रमुख भूमिका निभाने वाली सनफीदा नोंगरम घुटनों के बल बैठ गई और अपनी साथी खिलाड़ी डैंगमी ग्रेस को गले लगाया, जिन्होंने मैच के बाद संन्यास की घोषणा की। साल 2013 में अपने करियर की शुरुआत के बाद से भारतीय महिला फुटबॉल की इस दिग्गज खिलाड़ी ग्रेस ने 95 बार देश का प्रतिनिधित्व किया और अपना तीसरा सैफ खिताब जीतकर शानदार अंदाज में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा। ये जीत मेजबान टीम के लिए एक शानदार अभियान का समापन थी, जिसने अपने चारों मैच जीते। इस दौरान 18 गोल किए, अविका सिंह 4 गोल के साथ प्रतियोगिता की शीर्ष स्कोरर रहीं। सनफीदा नोंगरम को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, जबकि पंथोई चानू इलांगबम को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला। नेपाल की टीम ने फेयर प्ले पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई नेताओं तथा खेल प्रेमियों ने भारतीय महिला टीम को एक ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और श्रोताओं, फुटबॉल के बाद अब आप लोग ले चलते हैं एथलेटिक्स के मैदान में। न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20

0: पारी में 564 रन के जवाब में अफगानिस्तान ने आज 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। तो सुनते हैं मैच के दूसरे दिन का हाल।
1: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी मेजबान भारत के नाम रहा। भारत ने अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 368 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत को दिन का पहला झटका अपना शतक पूरा कर चुके कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा, जो 177 गेंद में 126 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने भी 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 81 रन की पारी खेली, जबकि वाशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाने के बाद अपनी पारी घोषित कर दी। इससे पहले मैच के पहले दिन केएल राहुल ने शानदार 100 रन की पारी खेली थी। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सैफी ने 6 विकेट, जबकि जियाउर रहमान और हशमतुल्ला साहिदी ने 1-1 विकेट लिया। इसके बाद भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अभी भी भारत से 451 रन पीछे है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बात रविवार के दिन साइकिल पर फिटनेस की सवारी की। आज देश भर के विभिन्न शहरों में संडे ऑन साइकिल के आयोजन में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर फिट रहने का संदेश दिया।
2: विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में किया गया। इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया, अभिनेता विक्रांत मैसी, मुक्केबाज नुपुर शोराण और एक्टर मॉडल रागनी द्विवेदी शामिल हुई, जिन्होंने साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दिया। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज संडे ऑन साइकिल का 77वां संस्करण है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एक पहल से शुरू हुई यह मुहिम आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।
3: संडे ऑन साइकिल का आज 77 एडिशन है। जो पहली बार संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ हुआ था, तब 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। आज देश में 10,000 स्थान पर हुई। देश के नागरिकों को एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आसानी से उपलब्ध होती है और कई समस्या का समाधान हो? ये साइकिल है। साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप मेंटली फिट रहते हैं, फ्यूल का बचत होता है, प्लेनेट शुद्ध रहती है। तो इतनी सारी चीजें एक साइकिलिंग करने से समाधान देती है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें।
2: फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा कि रविवार की यह सुबह उन्हें अपने बचपन के दिनों की याद दिला गई। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों का फिट रहना बेहद आवश्यक है।
4: 1.5 साल से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है संडे को साइकिल का, हर हफ्ते होता है, कई शहरों में होता है। आज के दिन अगर आप पूछे तो कम से कम 400 शहरों में चल रहा है। तो देखिए, सेहत के बारे में सब जानते हैं कि रियल सक्सेस इज गुड हेल्थ, और सक्सेस के महीने बदलते रहते हैं, पर ये एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलेगी। प्लीज फिट रहें, और फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे।
2: इस अवसर पर मुक्केबाज नुपुर शोराण ने भी साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। नुपुर ने कहा कि सभी लोगों को अच्छी सेहत के लिए समय निकालकर 10 से 15 मिनट साइकिल जरूर चलानी चाहिए।
5: संडे और साइकिल जो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जो मैंने आज यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी, उससे पता चलता है कि लोग कितने जागरूक है आज के टाइम पे फिजिकल फिटनेस के लिए। और साइकिलिंग तो मैं कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी और प्यारी चीज है, फिजिकल भी फिट रहते हैं और मेंटली भी बहुत पीस मिलती है। तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तो निकालनी चाहिए साइकिलिंग के लिए।
2: दिल्ली के अलावा मुंबई, भोपाल, जम्मू और बीकानेर में भी लोगों ने सुबह साइकिल की सवारी करते हुए फिटनेस का संदेश दिया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब चर्चा योगासन की। गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के बारे में हमारे संवाददाता ने बताया है कि सबसे अधिक पदक जीतकर भारत तालिका में शीर्ष पर है।
6: पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने कुल 30 मेडल जीतकर मेडल टैली में अपना दबदबा बनाए रखा है। इसमें कुल 24 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, जबकि सिंगापुर 6

0: मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। योग में जबरदस्त स्किल, डिसिप्लिन और बेहतरीन प्रदर्शन करके भारतीय योगा खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया और इस खेल में ग्लोबल लीडर के तौर पर देश का रुतबा मजबूत किया। इस चैंपियनशिप में 75 देशों के 500 से अधिक योगा खिलाड़ियों हिस्सा ले रहे हैं। 4 जून से शुरू हुए इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप का कल आखिरी दिन है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: और इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 254 रन का लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 138 रन पर ही सिमट गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम हैरी ब्रुक के 56 रन की पारी के बावजूद पहली पारी में 140 रन बना सकी थी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड पहली पारी में 113 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 27 रन की बढ़त मिली थी और इंग्लैंड ने दूसरी पारी में एमिलो गे के 57 रन की मदद से 256 रन बनाए थे। और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स फाइनल खेला जा रहा है और इस प्रतियोगिता में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव और इटली के फेवियो कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। तो श्रोताओं, अब समय समाप्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्पोर्ट्स कैन इसी तरह आप सुनते रहें और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो sportscan@sportscan.air@gmail.com पर भेजें। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक

0: लोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bands.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: इंद्रधनुष कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले और साथियों का गाया जानी दुश्मन फिल्म का गीत। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर के गाए ब्लैकमेल फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला आली।

एक आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक, आकाशवाणी जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूँगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज़ और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अब भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे

0: हैं, देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट, मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज़ रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज़ रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है। हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
3: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
2: This gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले, बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
4: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
5: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज़ के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा, पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूँगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफ़ी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात ये थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
4: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
6: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
7: हर हसी ख्वाब की ताबीर हसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
6: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
8: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
9: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
4: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
10: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरि से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुँच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयजी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहाँ रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे प्रोग्रामर हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहाँ से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहाँ बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुँचते थे तो एकाएक वहाँ पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला दे के उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गया।

0: गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ, जहां पे वो चौकर ने वहां पे पहुंच गया। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
1: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए, या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए, या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूँ कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेत

0: की हर किसान है उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण ही। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500-500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुँचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तमपुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल।

0: फाइनल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक। आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
1: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
2: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
0: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी।

0: evening, listeners. Welcome to Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
1: Sri M.V. Subbarayadu aur Srimati M. Jarajakshi ke putr Sri M.S.N. Murthy Sangeet ke pariwesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jarajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
0: श्री एम एस एन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगैन अर्ली। हिज मदर श्रीमती एम जलजाक्षी इज अ वेटरन वोकलिस्ट। रेकग्नाइज्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, श्री एम एस एन मूर्ति ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ संगीत साहित्य कलानिधि श्री एन सी एच कृष्णमाचार्यलु। He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M.S.N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M.S.N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M.S.N. Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M.S.N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkataramana Murthy on the mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
1: Vidwan Sri M.S.N. Murthy aaj ke karyakram ka aarambh kar rahe hain. Athana raag mein Purandar Das ki rachna Sakala Graha Vala Neene se, jo ki Khanda Chapu Taal mein nibaddh hai.
0: Sri M.S.N. Murthy begins this evening's concert with a kriti of Purandar Dasa. It is an Athana Ragam Khanda Chapu Taalam.

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनि राजमार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। He is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkatramana Murthy on the mridangam and Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam. Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायोलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायोलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।